एफएम बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर और साथ ही ओटीटी वेव्स पर। आज है मंगलवार, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 17वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 8 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है इस मंगल धुन के साथ।

0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक हैं। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई

0: नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा। वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से।

आज का चिंतन। संत कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। अर्थ है, बड़ी बड़ी पुस्तकें किताबें पढ़कर दुनिया में कितने ही लोग चले गए, लेकिन कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया। वास्तव में ज्ञानी वही है जो प्रेम, सौहार्द, मानवता, परोपकार की भाषा पढ़ सके। अप्रस्तुत है भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 305। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना भाग 8। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक के। भूले बिसरे गीत 7 से हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम 7:30 से 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक, 9:30 पर आज के फनकार। आज का सुबह का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा 9:30 पर पार्श्व गायिका डॉक्टर भूपेन हजारिका, आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर का है, प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। सुबह 10 पिटारा में सेहतनामा पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की है। सुबह रंग तरंग 12:05 पर यादों की महफिल, 1 सुरीला सफर, 2 त्रिवेणी। पर सदाबहार नाग में 3 सखी सहेली, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत सुनेगा, प्रस्तुत करता है जुबैर खान। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर संध्या रंजन भक्ति संगीत का कार्यक्रम है। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम, आपको फिर से बता दें श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा सुनिएगा किराना घराना भाग 8। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। फौजी साथियों का कार्यक्रम

जयमाला सुनिएगा शाम 7 बजे से 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में आज सुनिएगा झलक की नया तजुर्बा लेखन हरीश दीक्षित का निर्देशन अनुराधा शर्मा का 8:15 पर चित्रलोक 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 पर सुने पार्श्व गायिका आशा भोसले पर केंद्रित होगा आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर का प्रस्तुत करता है मनीषा जैन 10 बजे छाएगी 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे सुनिए रंग तरंग आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत

अपने पुत्र प्रहस्थ से नीति की बात तथा श्री राम से प्रीति करने का अनुरोध सुनकर रावण उसे झिड़क देता है। प्रहस्थ को प्रतीति होती है कि मृत्यु के वशीभूत रोगी पर औषधि का कोई प्रभाव नहीं होता। रावण लंका की चोटी पर निर्मित अपने रंग महल में किन्नरों के गान तथा अप्सराओं के नृत्य का आनंद उठाने चल देता है। उधर सुबेल पर्वत पर श्री राम सुग्रीव की गोद में सिर रखे अपने प्रियजनों विभीषण हनुमान लक्ष्मण आदि से मंत्रणा कर रहे हैं। पूर्वी क्षितिज पर चंद्रमा उदित हो रहा है जिसकी शोभा से सभी मुग्ध हैं। अनंत आकाश पर बिखरे तारों से मानो रात्रि रूपी सुंदरी ने अपना श्रृंगार किया है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। गाना आज आपने सुना भाग 305।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है।

0: श्रोताओ नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं आज इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में। डॉक्टर शकुंतला भरणे जी हमारे साथ हैं। शकुंतला जी, किराना घराने में प्रस्तुतीकरण को लेकर जो बातें बताई गई हैं, उसकी जो विशेषता है वो कौन सी है?
2: बहुत सारी विशेषता है, अभी तक हमने चर्चा तो की है।
1: जी जी जी।
2: विलंबित लय, स्वर प्रधानता, मिंड गायकी, सूक्ष्म लगाव। अभी जो महत्वपूर्ण जो है, हाँ, जो सब घराने में रहते हैं लेकिन हमारे घर में भी, घराने में भी है,
1: जी,
2: वो राग का स्वरूप, उसका व्याकरण,
1: हाँ,
2: उसकी शुद्धता, उसके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए भी हम जो राग चुनते हैं वो थाट वाले राग चुनते हैं ज्यादातर। और राग के मूल स्वरूप का संरक्षण तो हमें करना है। ज्यादातर थाट प्रधान राग अथवा संपूर्ण राग लेने की जो प्रथा है वो हमारे घराने में है।
1: अच्छा।
2: प्रत्येक राग को उसके मूल स्वरूप और पारंपरिक पहचान के साथ प्रस्तुत करने पर विशेष बल दिया जाता है।
1: जी, जी।
2: राग के स्वरों पर, चलन पर, भाव पर अनावश्यक जो परिवर्तन हम नहीं करते।
1: अच्छा।
2: यानी कभी कभी क्या होता है, एक एक स्वर राग में अगर हमने थोड़ा ज्यादा लगाया, थोड़ा कम लगाया, अभी देखो तोड़ी और मुल्तानी दोनों का स्वर एक ही है।
1: अच्छा।
2: लेकिन उसका जो मध्यम है मुल्तानी का, पंचम है, पंचम पर लगाव है, ठहराव है, इसके ऊपर ही इसको हम अलग करते हैं।
1: अच्छा।
2: तो ये जो है, ये व्याकरण जो है पूरा पालन करना इस घराने की गायकी में, राग के आरोह अवरोह, वादी संवादी, विशिष्ट पकड़ तथा स्वर प्रयोग,
1: जी जी जी,
2: इन सब चीजों को नियमों के अत्यंत सावधानी से हमें पालन करना पड़ता है।
1: अच्छा।
2: और यही राग की शास्त्रीय शुद्धता को बनाए रखता है। शास्त्रीय शुद्धता को भी रखना, उसका भाव भी रखना।
1: अच्छा।

0: सब बातें जो है उसका बहुत ही इट इज लाइक अ मेडिटेशन, अध्यात्म ही है।
1: जी, जी, जी।
0: प्रत्येक स्वर का एक उचित स्थान होता है, हर स्वर को उसके निश्चित स्थान और उचित महत्व के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
1: जी, जी।
0: किसी भी स्वर का प्रयोग राग की प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब राग की जो पहचान है उसे जी भी हमें स्पष्ट

0: पहचान है उसे जी भी हमें स्पष्ट करना है
1: जी, जी।
0: विलंबित आलाप मिंड और सूक्ष्म स्वर लगाव के माध्यम से राग का स्वरूप धीरे धीरे विकसित किया जाता है जिससे राग की पहचान हो जाती है और शुद्धता और भाव का संतुलन
1: जी।
0: किराना घराना केवल तकनीकी शुद्धता पर ही नहीं बल्कि राग के भाव और रस की अभिव्यक्ति पर भी समान रूप से बल देता है
1: जी, जी।
0: इसलिए गायकी शास्त्रीय होने के साथ साथ भावपूर्ण भी होती है।
1: वाह।
0: और भी मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि हर आदमी का जो स्वभाव होता है उनका असर भी वहाँ पड़ता है। इसीलिए हमारी गुरुजी हमें हमेशा बोलती थी कि स्वभाव में जो ट्रांसपेरेंसी आप रखते पारदर्शकता रखते वही आपका गाना
1: आपके
0: है
1: गायन में भी होती
0: हाँ, ये शुद्धता होनी है ना। और एक प्रामाणिक ये
1: क्या बात?
0: गहन विकास का महत्व यानी राग के स्वरूप और व्याकरण की शुद्धता बनाए रखने के लिए नियमित स्वर साधना श्रुति की समझ और अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन यहाँ पे अत्यंत महत्व और आवश्यक माना गया है।
1: सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ी बात है।
0: और प्रचलित राग जो किराना घराने में हमेशा गाते हैं यमन तोड़ी दरबारी कानरा भैरव मुल्तानी पुरिया ललत बागेश्री मियाँ के मल्हार शुद्ध कल्याण पुरिया धनश्री ऐसे सारे राग हैं जो संपूर्ण राग है जहाँ सब गाने के लिए अच्छा मिलता है उसका व्याकरण का संभाल करने के लिए बहुत ही वाव है ऐसे राग हम चुनते हैं। इसलिए मुझे लगता है यहाँ अगर मैं थोड़ा सा मुल्तानी गा के सुनाऊं तो
1: क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है।
0: मुल्तानी को हम पुरुष राग कहते हैं उसके स्वर में जो पौरुष है और उनका जैसा है उसकी चलन में ही मधुवंती जाता है वो थोड़ा नजाकतदार राग है।

0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। शकुंतला जी, राग मुल्तानी पर आधारित जो फिल्मी गीत इस वक्त जहन में आ रहा है वो शबाब फिल्म का गाना है, दया करो गिरिधर गोपाल। उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज है, आइए सुनते हैं।
1: वाह, आमिर खान का नाम आया तो कहती हूँ
0: जी,
1: ये जो चीज मैंने गाई हो वो हमारे गुरुजी पंडित प्रसाद सावकर के पास
0: जी,
1: कुछ
0: जी, जी,
1: साल में हाँ। सीखी हूँ, उन्होंने दी है। वो कहते थे जब भी तुम्हारा रियाज कम होता है तब ऐसी चीज गाने का, तो आवाज की फिरक
0: अच्छा
1: बढ़ती है।
0: ओहो।
1: खान साहब का कुछ राग ही ऐसे है जिसमें उनकी फिरक और उनका जो वजन ये समझ में आता
0: जी,
1: है।
0: जी, जी।
1: ये खान साहब का, चलो सुनेंगे।
0: क्या बात है, आइए सुनते।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

तुलसीदास फिल्म की रचना आपने सुनी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। जी एस नेपाली की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत निर्देशन था। आज संगीत जगत की महान कलाकार पार्श्व गायिका आशा भोसले का जन्मदिवस जन्मतिथि है। अपने जादुई और बहुमुखी आवाज से हर दिल पर राज करने वाली संगीत साम्राज्ञी पद्म विभूषण आशा भोसले को शत शत नमन।

0: वो दिन कहां गए मेरे सपनों से मीठी गीतों से प्यारे, वो दिन कहां गए। वचन फिल्म का ये खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज में। प्रेम धवन की रचना आपने सुनी, संगीत निर्देशन रविशंकर का था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से
1: समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सब सबका कहानी लिटरेचर बेस्ड बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी। हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती प्रसारण सेवा को देंगे विराम। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं और हम आपको बता दें हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में यानी 7:20 पर होगा प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण हमारे गोरखपुर केंद्र से। 7:30 का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अमृत कलश का। 8:15 पर सुरसंगम और 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। इसमें आज की बात का विषय होगा पढ़ें और पढ़ाएं सबको साक्षर बनाएं। जी 9:00 का समय आपके संदेश आपके गीत का और 9:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 10:00 से आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से जुड़ जाएंगे और 12:30 तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। और 12:30 का समय होगा फिर से हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों का लोक रंग ये कार्यक्रम सुनेंगे आप 12:30 पर। 1:00 का समय होगा कुछ तुमने कहा फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का। गीतांजलि का समय होगा 2:00 और 2:30 पर हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी जगत। इसमें आज चर्चा होगी साक्षरता दिवस एवं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना पर। साथ ही वार्ता सुनी गए नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाएं। वार्ताकार है अनामिका पांडे। शाम 5:00 का समय होता है हमारे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का। इसमें आज चर्चा होगी अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर। साथ ही भारतीय इतिहास में जानेंगे पूर्व वैदिक काल के बारे में और खास होगा चक्रव्यूह। 5:30 का समय होगा लोक संगीत का। शाम सुहानी का समय होगा 6:10। 6:30 पर गूंजे स्वर गाँव के। 7:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। 8:15 का समय होगा गीत गुंजन का। 9:15 पर महफिले गजल और 9:30 पर हेलो अयोध्या। 10:00 आप सुनेंगे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण। 10:30 पर पुनः विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से हम जुड़ जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप और OTT वेब्स पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 7:17 और 50 सेकंड हुए हैं। समय हो चुका है प्रादेशिक समाचारों का, लेकिन उससे पहले ये संदेश।

0: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के दो दर्जन से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में, राहत और बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 14 नए रूटों पर बसें चलाने की तैयारी। दोनों राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने लखनऊ में बैठक कर विस्तार से चर्चा की। बागपत में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ को मिला देश में पहला स्थान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। एक रिपोर्ट।
3: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पीलीभीत में पिछले 2 दिनों से लगातार रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से शारदा और देवहा नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पूरनपुर, सदर, कलीनगर और बीसलपुर तहसील क्षेत्र के करीब 3 दर्जन गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ट्रांस शारदा क्षेत्र में फसलें और संपर्क मार्ग डूबे हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बस सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर कल लखनऊ में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में यूपी रोडवेज और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बीच बस सेवाओं के विस्तार और नए मार्गों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच पहले से संचालित 25 मार्गों के अलावा बिहार ने 14 नए मार्गों पर परिवहन की बसों के संचालन का प्रस्ताव दिया है।
4: 25 रूटे पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के पहले से संचालित था और उसका एक्सटेंशन करने का बात थी 10 साल के लिए, और 14 नए रूट बिहार की तरफ से प्रस्तावित किया गया है। कुछ उसमें हम लोगों ने और भी अतिरिक्त रूट बढ़ाने के लिए कहा है। प्रतिदिन जो है लाखों लोग बिहार से उत्तर प्रदेश आते हैं, लाखों लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में जाते हैं, तो सबके आवागमन की सुविधा रखना हम सबका दायित्व तो है। इस पर हम सब लोगों ने एक एक बिंदुओं पर निर्णय किया है।
2: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि केंद्र सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी

0: और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए सरकार ने यह पाबंदी हटाई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल वाराणसी से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रीय पोषण माह का इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक से आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। बागपत में रविवार की मध्यरात्रि के बाद हुए एक सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। यह हादसा जिले के खेकड़ा थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा गांव टोल के पास तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कैंटर ने श्रद्धालुओं से भरे वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सवारी वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। एडीजी मेरठ भानु भास्कर ने बताया कि हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया।
1: बहुत ही दुखद है और मृतकों एवं घायलों के परिवार के साथ परिजनों के साथ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और पूरी टीम की लगातार बातचीत चल है। ये सभी लोग मूलतः जो है बदायूं जनपद के थे। राजस्थान में पूजा अर्चना के लिए 2 सितंबर को गए थे। 5 दिन बाद पूजा अर्चना पूरी करके वापस आ रहे थे तभी दुर्घटना हुई है। बदायूं प्रशासन बदायूं पुलिस जो है लगातार इनसे संपर्क में है और जितनी सुविधा मुहैया हो सकती है वो कराई जा रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। इस बीच बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में भी मुड़िया धुरे की गांव के पास कल देर शाम एक रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने हुई टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में लखनऊ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों में पहला स्थान मिला है। स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ की महापौर को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। इसके लिए 1,50,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। एक रिपोर्ट।
2: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी 1 में उत्तर प्रदेश के 6 शहरों ने स्थान बनाया। इनमें लखनऊ ने देश में पहला, आगरा ने 4था, गाजियाबाद ने 9वां, कानपुर ने 11वां, प्रयागराज ने 13वां और मेरठ ने 22वां स्थान प्राप्त किया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की वार्ड लेवल रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कैटेगरी 1 में राजधानी लखनऊ के वार्ड 70 ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं कैटेगरी 2 में प्रयागराज के वार्ड 31 ने देश में 3रा स्थान प्राप्त किया है। वहीं 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में झांसी, मुरादाबाद और नोएडा टॉप 10 शहरों में शामिल हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: लखनऊ में केरल के प्रमुख मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधिमंडल ने कल प्रेस सूचना ब्यूरो के अधिकारियों के साथ अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन RDSO का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एयर ब्रेक, फटीक टेस्टिंग तथा धातु एवं रसायन प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कर अत्याधुनिक रेलवे प्रौद्योगिकियों और परीक्षण सुविधाओं की जानकारी ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसके निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज किया है। बेंगलुरु में कल उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
3: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और MCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है। बजट की कोई कमी नहीं है।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अनुक्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कर प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के दो दर्जन से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में, राहत और बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 14 नए रूटों पर बसें चलाने की तैयारी। दोनों राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने लखनऊ में बैठक कर विस्तार से चर्चा की। बागपत में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ को मिला देश में पहला स्थान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान, सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद, अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
3: समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत कलश।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, तौल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com AYODHYA AKASHVANI@

ना मांगू मैं सोना चांदी, ना मांगू कोई महल अटारी। ना मांगू मैं सोना चांदी, ना मांगू कोई महल अटारी। मुझे तो बस मिल जाए प्रभु आपके चरणों की धूल प्यारी। भक्ति समर्पण का वो भाव है जहां मैं समाप्त हो जाता है और सिर्फ वो बचता है। भक्ति कोई मजबूरी नहीं बल्कि आत्मा की परम मंजूरी है। जब एक भक्त अपनी पूरी चेतना भगवान के चरणों में सौंप देता है उस

दुनिया की रखवाले को भी जो अपने बस में कर ले, वो शक्ति होती है सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे भक्त में। और जहाँ सच्ची भक्ति की बात आए, वहाँ हनुमान जी के अलावा दूसरा नाम नहीं आता। जिन्होंने राम नाम को ही जिया, जिनके जीवन का आधार ही राम है। जुबा पर बस राम नाम। कहते ना, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट काटने वाले को हनुमान कहते हैं। परम भक्त वीर बलधाई श्री हनुमान। ऐसी भक्ति न जगत में किसी ने

मियावद क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब मियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलॉर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रोलर मशीन द्वारा बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल

0: क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94-532-21-909।

विश्वास होता है वहाँ हनुमान जी का वास होता है, और जहाँ हनुमान जी का नाम होता है वहाँ डर कैसा। हनुमान जी केवल शक्ति और साहस के ही प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा, विनम्रता और समर्पण की

सेवा, विनम्रता और समर्पण की ऐसी मिसाल है जिनसे हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। जब राह मुश्किल हो, मन थोड़ा डगमगाए और उम्मीद की किरण कम दिखाई दे, तो बस सच्चे मन से जय हनुमान कहिए। मन को एक अद्भुत संबल मिलता है।

सत्य और करुणा के प्रतीक है और माता सीता त्याग धैर्य और नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल। इसीलिए तो कहते हैं भक्त अपने आराध्य से। जय रघुनंदन जय सियाराम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। प्रभु हमारे जीवन के दुखों को दूर कर, हमारे मन को धैर्य दे, हमें सत्य और सद्मार्ग पर चलने

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: श्रोताओं, प्रभु श्री राम के चरणों में हमारी यही छोटी सी प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और विश्वास हमेशा बना रहे। इसी के साथ दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम

0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
3: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साणंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
4: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।

0: बेटन ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटन ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटन ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
5: अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमरीकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं, जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल

0: में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले दो दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
1: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी पदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज्य का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCD अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, हॉर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के

0: सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में चार फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। सुबह के 8:15 हुए हैं। समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम सुर संगम का।
2: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
3: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती है।
2: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
3: जी हाँ, और वो है योग।
2: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
3: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
2: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
3: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
2: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
3: योग करिए, निरोग रहिए।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

रग रग में तुम कुछ यूं उतर गए हो मेरी रग रग में तुम कि खुद से पहले एहसास तुम्हारा होता है। जी बिल्कुल, मोहब्बत तो यही होती है।

दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था।

हर पल अनमोल है और बीता हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता, तो इसलिए छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें, आज को पूरी तरह से जिएं और हर पल को यादगार बनाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।

0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। समय हो चुका है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या का।
1: प्रणाम अयोध्या।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
4: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
3: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
4: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
3: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियावा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
5: आपके संदेश,
6: संदेश से
5: आते हैं आपके गीत। आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।

जो चाहा अगर वो आपको नहीं मिला तो एक बार जो आपको मिला है उसे चाह कर देखिए ना, सब कुछ अच्छा लगेगा। दोस्तों, इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज

तो दोस्तों, हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्तों, आज हम जिस बात पे बात करने वाले हैं या जिस बात की चर्चा करने वाले हैं, वो बड़ी ही खास है। आज मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। आपने आज क्या पढ़ा? अखबार, कोई किताब या मोबाइल पर कोई अच्छी सी जानकारी, या फिर अभी तक कुछ भी नहीं? कोई बात नहीं, क्योंकि आज की हमारी बातचीत ही आपको याद दिलाने आई है कि पढ़ना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को समझने के लिए। और आज का हमारा खूबसूरत संदेश लेकर आई है, पढ़ें और पढ़ाएं, सबको साक्षर बनाएं। जरा सोचिए, जब हम एक किताब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, हम किसी और के अनुभवों को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं। एक अच्छी किताब हमें नई सोच देती है और एक अच्छी कहानी हमें संवेदनशील बनाती है। एक अच्छी जानकारी हमारे फैसले बेहतर बनाती है, और जब हम वही ज्ञान किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो हमारी छोटी सी सीख किसी और की बड़ी ताकत बन सकती है। तो श्रोताओं, एक और सवाल, क्या आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई में आपसे मदद मांगता

है? अगर हाँ तो आज से उसके लिए रोज थोड़ा सा समय जरूर निकालिए। सिर्फ 10-15 मिनट उसके साथ बैठिए, उसकी किताब खोलिए और उससे पूछिए आज स्कूल में क्या पढ़कर आया है। यकीन मानिए आपका ये छोटा सा सवाल बच्चे के भीतर पढ़ने की एक बड़ी इच्छा पैदा कर सकता है। और सिर्फ बच्चे ही क्यों, अगर आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति पढ़ना लिखना सीखना चाहता है तो उसकी मदद करने में संकोच बिल्कुल भी मत करिए। किसी को उसका नाम लिखना सिखाइए, किसी को अपना पता पढ़ना सिखाइए, किसी को चिट्ठी पढ़कर सुनाना ये भी शिक्षा है, ये भी समाज सेवा है और शायद इससे खूबसूरत सेवा कोई और नहीं हो सकती है। श्रोताओं, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे जितना बांटिए उतना ही बढ़ता है। आपके पास कोई अच्छी किताब है तो पढ़िए और फिर उसे किसी और को पढ़ने के दीजिए। आपको कोई अच्छी जानकारी मिले तो उसे अपने परिवार के साथ साझा कीजिए। देखिए, अगर आप शिक्षित हैं तो उस शिक्षा को फैलाइए, क्योंकि शिक्षा हर किसी के लिए आवश्यक है। और जब आपके घर में बच्चे पढ़ते तो आपको बहुत अच्छा लगता है और ये भी लगता है कि बच्चा संस्कारी है, पढ़ लिख रहा है तो पढ़ लिख के कुछ अच्छा ही करेगा। जी बिल्कुल सही है, आपका सोचना भी एकदम सही है। लेकिन पहले ये गीत सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बातें करते हैं। ओ,

अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री

0: नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतिया बिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: दोस्तों बच्चे हैं तो बच्चे तो शैतानी करेंगे ही। अब अपना ही बचपन याद करिए ना, स्कूल जाने का मन कहां ही करता था। बड़ी डांट फटकार खा के हम स्कूल जाया करते थे, लेकिन जाते थे तब हमें डर भी रहता था कि अगर नहीं गए तो पिटाई तो होगी होगी। तो अगर हम बच्चों को थोड़ा सा समय दें, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, या जो भी हमारे पास अशिक्षित है उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें या सिखा सकें, तो इससे बड़ा अच्छा काम तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि सब पढ़ेंगे तो सभी बढ़ेंगे। दोस्तों पढ़ाई ही केवल मतलब पढ़ना ही नहीं होता है ज्ञान बांटना। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, आपको कुछ अच्छा आता है, तो किसी दूसरे को सिखाइए। क्योंकि हो सकता है आपकी बताई हुई एक छोटी सी बात किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाए। और अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव जहां हर घर में किताब हो, एक ऐसा परिवार जहां बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठकर पढ़े, एक ऐसा समाज जहां जो जानता है वह दूसरों को सिखाने में खुशी महसूस करे, कितना सुंदर होगा ना। और ये सपना कोई बहुत दूर की चीज नहीं है। जी बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि ये सपना दूर की बात नहीं है, इसकी शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। आप एक बच्चा पढ़ाइए, आप एक व्यक्ति को पढ़ना सिखाइए, आप एक किताब किसी तक पहुंचाइए। धीरे धीरे यही छोटी छोटी कोशिशें बड़ी रोशनी बन जाएंगी जी, और आपके सपनों को पंख मिलेंगे और आप लिख देंगे कहानी।

अक्षर बनाए। अगर आपके हाथ में कोई चिट्ठी आए और आप उसे ना पढ़ सकें, किसी दवाई के पैकेट पर लिखी कोई जरूरी जानकारी ना समझ पाए, किसी फॉर्म पर अपना नाम पता ना लिख पाए, या फिर बैंक, अस्पताल अथवा किसी सरकारी कार्यालय में लिखी कोई जरूरी सूचना पढ़ने किसी और की मदद लेनी पड़े, तो कैसा महसूस होगा? इसीलिए साक्षर होना अक्षर पहचान लेना नहीं है। साक्षरता हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में जानकारी समझने, पढ़ने, लिखने और अपने निर्णय में सक्षम बनाती है। इसलिए आज जरूरत है कि हम केवल खुद ही ना पढ़ें, बल्कि दूसरों को भी पढ़ाएं। श्रोतो, एक और छोटा सा सवाल, क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता? हो सकता है आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग हो, आपके घर में काम करने वाली कोई महिला हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अपना नाम लिखने में किसी की मदद लेनी पड़ती है। तो सोचिए, क्या हम उसके लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं, रोज सिर्फ कुछ मिनट उसको दे सकते हैं, उसे अक्षर पहचानना सिखा सकते हैं, उसका नाम लिखना सिखा सकते हैं, अंकों की पहचान करा सकते हैं। धीरे धीरे शब्द जब पढ़ना सीख जाएंगे वो, तो आपको इतनी खुशी होगी कि जब वो खुद से पढ़ेंगे या खुद से लिखेंगे तो देखकर आपको खुशी होगी। यकीन मानिए, ये खुशी आपको अंदर तक खुश करेगी। शुरुआत छोटी होगी लेकिन परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। एक व्यक्ति साक्षर होता है तो उसके साथ एक परिवार की राह आसान होती है, और जब परिवार साक्षर होता है तो समाज मजबूत होता है। तो श्रोताओं, हम अक्सर कहते हैं ना कि बच्चों का स्कूल जाना बहुत जरूरी है, और बिल्कुल जरूरी है, लेकिन शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है। बच्चा हो या बूढ़ा, युवा हो या बुजुर्ग, सीखने का अधिकार हर किसी को है। इसीलिए अगर हमारे आसपास कोई बड़ा व्यक्ति पढ़ना लिखना सीखना चाहता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि आप देर से शुरू कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कभी देर नहीं होती। आप किसी को उसका नाम लिखना सिखाइए। पहली बार जब वह व्यक्ति अपने हाथ से अपना नाम लिखेगा ना, तो उसके चेहरे की खुशी कैसी होगी? शायद वो सिर्फ कुछ अक्षर लिख रहा होगा, लेकिन उसके लिए वो अक्षर आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी होंगे। यही तो है साक्षरता की असली ताकत। साक्षरता इंसान को केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती, बल्कि उसे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने की क्षमता भी देती है। तो दोस्तों, आपका हर कदम किसी को शिक्षित बनाता है, किसी की जिंदगी में उजाला भरता है, तो इस प्रक्रिया को बिल्कुल भी डूबने मत दीजिएगा। अगर आपसे हो सके तो बिल्कुल किसी न किसी की मदद कीजिएगा। आकाशवाणी के इस खूबसूरत सफर में मैं हमेशा आपको ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां देती रहूंगी। आप जहां भी हैं, घर में, खेत में, दुकान में, सफर में या अपने काम में व्यस्त, हमसे जुड़े रहिए। और याद रखिए, एक किताब खोलिए, एक नई दुनिया खोलिए, और किसी को पढ़ाकर उसके लिए एक नया रास्ता खोलिए।

0: सारी जमीन जगमग हुआ सारा जहां।
1: दोस्तों इसी गीत के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको मौका मिले तो किसी को पढ़ना लिखना जरूर सिखाएं। उस आपके लिए वो एक छोटा सा प्रयास होगा, लेकिन वो छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और अब चलते चलते एक नजर समाचार पत्रों पर हम देख लेते हैं कि आज समाचार की सुर्खियां क्या हैं। अमर उजाला लिखता है 15,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मान करेंगे सीएम योगी, आज करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। चढ़ावा प्रकरण के बाद बदली श्रीराम मंदिर की पूरी व्यवस्था। 104 रजिस्ट्री कार्यालयों का किया जा रहा है कायाकल्प। कराटे चैंपियनशिप में दिखाया दम, प्रतियोगिता के अंतिम दिन जिले भर के खिलाड़ियों ने काता और कुमिते में जीता पदक। हॉकी में वाराणसी, गोरखपुर व बस्ती मंडल की शानदार जीत, शुभ इलेवन ने जीती टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट ट्रॉफी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: और दोस्तों इसी के साथ दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या से। साथ ही हमारी आपसे गुजारिश, गाते मुस्कुराते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और अगर मौका मिले तो किसी को शिक्षित जरूर करिए, साक्षर जरूर करिए।

0: प्रणाम अयोध्या। अभी आपने सुना कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है
2: ब्रो? ये फटा है। सुन, फटे फटे पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
4: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
7: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
0: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: हेलो
5: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर।
6: माय नंबर इज
0: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।

दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत बहुत सारा स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या को और आप हमें सुन सकते हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी और साथ ही ओटीटी वेब्स पर भी। और अब वक्त है उस खूबसूरत सिलसिले का जहां आपकी बात भी होगी और आपके पसंदीदा गीत भी होंगे। जी, आपके संदेश आपके गीत में सिर्फ हमारे नहीं आपके भी होंगे, क्योंकि हर गीत के पीछे छुपी होती है किसी की।

पसंद किसी की याद और किसी के दिल का खास बात, किसी के दिल की खास बात। तो फिर देर किस बात की, आप भी उठाइए मोबाइल और भेजिए अपना संदेश। बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। आपके संदेशों का इंतजार रहता है भाई हमें, और आपके गीतों के साथ सुरों का ये खूबसूरत सफर जारी रहेगा। मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा सिंह, और चलिए अब शुरुआत करते हैं गीतों के इस

पसंद किया है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। और आप सबकी पसंद पे गीत हम सुनवाएंगे शादी में जरूर आना से, जो आपने पसंद किया है। तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

जी जी बिल्कुल, हमें पता है कि आपको इंतजार है अगले गीत का और आप सोच रहे होंगे कि गीत किसकी पसंद का है। बिल्कुल, अगर आपने अभी तक हमारे रेडियो को ट्यून नहीं किया है तो जल्दी से ट्यून कर लीजिए, थोड़ी सी आवाज बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपकी पसंद के गीत जा रहे हैं आपके रेडियो सेट पे और बड़ी ही शिद्दत से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और उम्मीद है आप भी पूरी शिद्दत से हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। जी शिद्दत शिद्दत इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि अगला गीत भी फिल्म शिद्दत से है। तो अगला गीत फिल्म शिद्दत से और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा अजमीन और गुड़िया। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत जो जा रहा है आपके रेडियो सेट पे और आप भी बनिए हमारे

कार्यक्रम की अगली फरमाइश। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार करिए भाई, इतने अच्छे अच्छे गीत आपकी पसंद के तो सुना।

तो हम रहे ही है ना। और आप अपनी पसंद का गीत अगर सुनना चाहते हैं तो देखिए हमारे इतने सारे कार्यक्रम, आपके संदेश, आपके गीत, कुछ तुमने कहा, हेलो अयोध्या। अगर आपको लाइव हमसे बातचीत करनी है तो आप 7376804090 पे कॉल कीजिए और करिए हमसे बातें। भाई हमारे सारे कार्यक्रम आप ही के लिए है, तो आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहे और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर पहुंचाएं। फिलहाल कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा दें, जो है किसी का भाई किसी की जान से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से, चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू और शिखा शेफाली। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत जो जा रहा है आपके रेडियो सेट पे।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

कार्यक्रम की अगली पेशकश सत्यमेव जयते टू से, और इस गीत को पसंद किया है मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। पेश है आपकी पसंद का गीत जो जा रहा है आपके रेडियो सेट पे। जुड़ी रहिए अयोध्या की सुरीली धड़कन से।

जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूशा भाईजान और भाई राजकुमार। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत फिल्म सच्चा झूठा से।

0: 100840.
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
2: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।

0: जी बिल्कुल, हमको पता है कि अब आपको इंतजार है अपनी पसंद के गीतों का। तो हेलो हेलो हेलो अयोध्या, देखिए अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि हमारी एक और फ्रेंड, आपकी एक और रेडियो साथी हमारे साथ है, रक्षा।
1: जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आरजे रक्षा और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
0: हेलो हेलो भाई, अब आपको भी करना है हेलो हेलो। तो क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं और आपका मूड कैसा है भाई? अगर थोड़ा ऑफ है तो रक्षा,
1: तो हाँ टेंशन किस बात की, हम है ना,
0: बिल्कुल हमारे गीतों से उनका मूड बिल्कुल अच्छा
1: हो जाएगा।
0: और जब हमसे बातें करेंगे ना तो अपने आप उनका मूड अच्छा हो ही जाना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारी बातें और आपकी बातें कुछ होने वाली है खास।
0: बिल्कुल, क्योंकि फोन पे हम जो बातें करते हैं ना उनसे जो श्रोता जुड़ जाते हैं, जिनकी बात होगी वो तो बड़े खुश हो गए। और जिनकी नहीं होती है उनकी शिकायतें भी बहुत सारी होती है। देखो और शिकायतें बड़े, इसलिए पहले
1: कॉल ले लेते हैं। हेलो
2: हेलो, मैम नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही हैं आप?
2: मैं रीतु राजपूत बात कर रही हूँ, ग्राम सराय मुगल जिले अध्यक्ष से बात कर रही हूँ।
1: क्या करती हैं आप?
2: मैम कुछ नहीं, घर पर रहते हैं।
0: आप इतनी उदास उदास क्यों साउंड कर रही हैं? मैंने अभी कहा ना कि अगर आपका मूड किसी बात पे खराब है तो बिल्कुल आप हमसे शेयर करिए। देखिए और जब आपका गीत हम सुनवाएंगे ना तो आपका मूड बिल्कुल बिल्कुल अच्छा
1: हो जाएगा।
0: रितु जी आप अयोध्या से ही बात कर रही हैं, तो और आपने बड़े ही उदास साउंड में कहा, ये अच्छा नहीं लगा, थोड़ा हंस के बोलिए ना। आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
2: मैम हम साथ साथ है, ये तो सच्चे के भगवान।
0: बिल्कुल हम साथ साथ है, आपके साथ हम भी है, यही तो हम भी कह रहे हैं कि हम साथ,
1: इसीलिए तो हाँ हम साथ साथ है, इसीलिए तो आप खुश हो जाइए।
0: और आपका गीत तो हम आपको सुनवाएंगे ही, कुछ बातें और शेयर करिए, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करती हैं? हेलो,
2: हाँ
1: क्या करती हैं आप?
2: मैम हम घर पर रहते हैं।
1: तो घर के काम भी तो आप करती होंगी। अच्छा ये बताइए कि आप स्पेशल चीज क्या बना लेती हैं खाने में?
0: हाँ ये बात तो तुमने अच्छी कही, सुबह
2: सुबह पनीर मैम।
1: अरे वाह,
0: सुबह सुबह हाँ रक्षा ना ऐसी ही बातें करोगी कि एकदम
1: मुंह में पानी आ गया आपकी बात सुन के। तो हम लोगों को कब खिलाएंगी आप?
2: जब आइए मैम, मैं आपको बहुत अच्छे खिलाएंगे।

0: ये में ऐसा क्या खास डालती है कि आपका जो पनीर है वो खास बन जाता है? पनीर में ऐसा क्या डालती है कि आपका पनीर एकदम खास हो जाता है?
1: अच्छा, पनीर की ऐसी कौन सी चीज आप बना लेती हैं जो आज आप हम लोगों को खिलाएंगी? हेलो,
0: हमारे श्रोता बड़े गौर से आपकी बात सुन रहे हैं। देखिए,
1: लेकिन आप पीछे नहीं हट सकती।
0: चलिए, आप कोई बात नहीं, आपकी पसंद का गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: वर्षा हम लोग तो साथ साथ है ही है अपने श्रोताओं के, और हमारे श्रोता भी लगातार डायल करते रहते हैं करते। आज एक खास दिन है पता है रक्षा?
1: क्या है वो खास दिन?
0: आज तुम तो ऐसे देख रहे हो
1: आज खास ये, हाँ बिल्कुल बताइए बताइए।
0: साक्षरता दिवस जो है,
1: हाँ
0: पढ़िए पढ़ाई, अगर आप किसी को थोड़ी सी मतलब पढ़ना जिसको नहीं आता है, पढ़ना लिखना अगर सिखाते हैं ना तो आपके लिए वो छोटा सा काम होगा, लेकिन किसी के लिए
1: ये वो बहुत बड़ा काम होगी।
0: देखो तुम बातों में उलझा रही हो, हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो
2: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बहुत बहुत बहुत खुश है।
2: जी मैडम जी,
0: हाँ देखिए आपकी मुस्कान आपके चेहरे पे है।
1: हम भी बहुत खुश हैं आपसे बातें करके।
0: बताएं अपने बारे में कुछ, हमारे श्रोताओं को बताएं क्या करते हैं, कहाँ से फोन किया है हमें।
1: हेलो,
2: हाँ मैडम जी,
0: कहाँ से फोन किया है, क्या करते हैं, कुछ तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जी मैडम जी, मैं और बिहारी का पुरवा से फोन किया है, दर्शन नगर अयोध्या से।
0: जी जी, क्या करते हैं आप?
2: मैडम जी खेती बाड़ी करते हैं, और टाइम मिल जाता है तो मिस्त्री का काम करते हैं।
0: अच्छा एक चीज बताइए, जैसे आपने बताया कि खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, तो इस समय जो बारिश ज्यादा हो रही है इसका फसलों पर क्या असर
1: पड़ रहा है?
2: बहुत बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है मैडम जी, बहुत अच्छा फसल है, धान की खेती में बहुत लाभदायक है इस समय।
0: चलिए तब तो एकदम आप भी खुश और हम भी खुश। चलिए आपकी पसंद का गाना जल्दी से बताइए, हमारे और श्रोता भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं। कौन सा गाना सुनेंगे आज आप?
2: सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गए।
0: बिल्कुल रेडियो सेट पे
2: फिल्म का है।
0: जी जी बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत जा रहा है आपके रेडियो सेट पे, आपने कॉल किया उसके लिए
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: रक्षा हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, तो देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका क्या नाम है?
2: मैडम जी, हमारा नाम संदीप शर्मा है
1: जी,
2: और मैं पूर्वा जंत्रा रोड शक्ति मेंस पार्लर से बात कर रहे हैं
0: जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। एक बात बताइए, जैसे आप अपना काम करते रहते हैं और कभी आपका मूड खराब हो जाए तो आप क्या करते हैं? जैसे आप अपना काम कर रहे हो, जैसे कभी कभी
1: मूड खराब हो जाता है ना,
0: तो क्या करते हैं उस वक्त अपना मूड सही करने के लिए? आप क्या करते हैं?
2: नहीं, मूड खराब हो जाए तो हम तो सॉन्ग सुनते हैं।
0: सॉन्ग एक बार जान लो रखा, जिसका भी मूड खराब होता है वो सॉन्ग,
1: वो गीत संगीत की तरफ जरूर आता है।
0: गीत संगीत से राहत मिलती है सर, है ना
2: जी।
0: आज कौन सा गीत सुनेंगे?
2: गीत हमारा है पुलिस गिरी गए मैम, श्याम तेरी रुकमणी।
0: अच्छा अच्छा, एक चीज और हम पूछे अगर आपसे कि जब आप फुर्सत में होते हैं, ये तो काम धाम का समय हुआ भाई, सभी काम करते हैं, जब आप काम से फुर्सत पाते हैं तो क्या आपको क्या अच्छा लगता है?
2: आवाज क्लियर नहीं आई आपकी।
0: कह रहे हैं जब आपको काम से फुर्सत मिलती है तो ऐसा क्या रहता है जो आपको खुशी देता है, राहत देता है और आपको मतलब खुशी होती है वो करने में?
2: जी जी,
0: चलिए आज आपकी पसंद का गीत पहले हम सुनवा देते हैं। आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जय सियाराम।
0: जय सियाराम।

0: देखते हैं रक्षा हमारे अगले कॉलर कौन है जो हमसे जुड़ चुके हैं बातें करने के लिए। हेलो।
1: हेलो मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में।
2: क्या नाम है आपका सर?
1: हम त्रिदेव लाइट वाले हरिपुर जलालाबाद से बोला थे।
0: एक तो आपका नाम जो है भाई त्रिदेव है, देख रही हो त्रिदेव नाम, मतलब त्रिदेव तीनों देवों को आपने अपने नाम में सम्मिलित कर रखा है। हेलो त्रिदेव जी, आप ही से कह रही हूँ कि तीनों देवों का नाम आपने अपने में सम्मिलित कर रखा है। बिल्कुल आपका नाम ही इतना अच्छा है। चलिए आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: बेटा पिक्चर पे सुना दिया।
0: कौन सा गीत सुनेंगे?
1: हेलो।
0: हाँ हाँ, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: खुशियों का दिन आया है।
0: खुशियों का दिन आया, ये तो बात सही है। इस समय देखिए त्योहार भी खूब चल रहे हैं, नहीं?
1: जी जी।
0: और खुशियाँ अपार अपने साथ लेकर आती हैं।
1: मैडम आपसे कमाती है।
0: अरे तो लीजिए, तेजी से बोल दे रहे हैं, आपको सुनाई तो देना ही चाहिए। सुनाई दिया अभी आपको?
1: नहीं, सुनाई पड़ा।
0: आप सुनाई दिया? चलिए खुश हो जाइए, आपकी पसंद का गीत भी हम आपको भेज रहे हैं।
1: मैडम नमस्ते,
0: धन्यवाद।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े।

0: आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए

प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।

0: रक्षा, हमारा कार्यक्रम जो है वो शुरू है और हम जानना चाहते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है जिनकी कॉल हमारे आकाशवाणी में लगी हुई है।
1: हेलो
2: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: प्रेम से सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: क्या करते हैं आप?
2: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अच्छा, खेती और भजन दोनों ही चीजें बड़े दिल से होती है, है ना?
2: जी जी।
0: तो ये मतलब आप जब खेत जाते थे तो गुनगुनाते गुनगुनाते इसकी आदत हो गई, या मतलब शुरू से ही आप पहले भजन गाते थे और फिर आप खेती किसानी में लग गए?
2: जी बताना चाहेंगे, पहले तो मैं खेती किसानी ही करता था।
0: अच्छा, अच्छा।
2: बट मैं आकाशवाणी से 2005 से जुड़ा हुआ हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
2: 2019 तक मैंने रेडियो पर सुना, और जब कोरोना टाइम आया था ना, उस समय पर मतलब आकाशवाणी केंद्र बंद कर दिए गए थे कुछ समय के लिए। उस समय जो मैं अपने भजन गायकी की मैं मतलब अपने गुरुजी के पास में जाके मैंने उस समय फिर भजन गाना शुरू किया। 2019 से मैंने भजन गाना शुरू किया जब कोरोना टाइम आया था तब से।
0: अच्छा।
1: आज आप कुछ सुनाना चाहेंगे हम लोगों को?
2: जी बिल्कुल, सुना देंगे हम, लेकिन अभी कॉलर अभी टाइम कटना बाकी है।
1: थोड़ा सा आप सुना दीजिए, फिर हम आपकी पसंद का गीत भी सुनवा देंगे।

0: अरोहे बजरंग बली का क्या कहना।
1: चलिए सर, आपने कॉल किया और इतना अच्छा भजन हमें सुनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको गीत भी सुनवा रहे हैं, धन्यवाद।

0: हसीन पल
1: हसीन
0: है।
1: पल है।
2: देखो हम बात ही करते रहेंगे तो हम अपने श्रोता से क्या बात करेंगे। हेलो
1: हेलो,
2: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। आप कहाँ से फोन किए हैं, क्या करते हैं, और साथ साथ ये भी बता दीजिए कि कब से रेडियो सुन रहे हैं।
3: जी, मैं अरविंद यादव बोल रहा हूँ
2: जी,
3: सुहावल से।
2: जी जी जी जी, कब से सुनते हैं रेडियो आप?
3: रेडियो मैं हमेशा सुनता हूँ सुबह शाम।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या करते हैं आप?
3: जी, मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ।
2: अच्छा, खेती बाड़ी का काम जो भी करते हैं, इस समय जो आपकी फसल लगी, क्या फसल आपने लगाई है और बारिश का उस पे क्या असर हो रहा है?
3: जी, इस समय धान लगा हुआ है।
2: हाँ हाँ, और बारिश अच्छी हो रही, तो धान के लिए तो बारिश बहुत अच्छी है।
3: बहुत अच्छा है।
2: चलिए, अच्छा, इसके अलावा आपको क्या अच्छा लगता है?
3: इसके अलावा,
2: हाँ, अगर खेती बाड़ी का काम आप छोड़ दीजिए, मतलब वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा आपको क्या करना है, या खेती में कौन सी मतलब ऐसी फसल है या क्या ऐसा है जिसको लगाने में, या जब वो उसकी उपज होती है तो उसको देख के आपको बहुत खुशी होती है?
3: जी, इसके बाद मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ।
2: अच्छा अच्छा,
1: क्या करते हैं आप?
2: किसानी करते हैं, खेती। चलिए, अभी आप जल्दी से ये बता दीजिए कि आज कौन सा गीत सुनेंगे?
3: ये धड़कन फिल्म का।
2: बिल्कुल, धड़कनों तक आपकी ये गीत जरूर पहुंचेगा और हम आपको ये गीत सुनवा रहे हैं।
4: दिल की
2: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: रक्षा, कॉलेज के दिन या स्कूल के दिन जो होते हैं सबसे अच्छे दिन
1: अच्छे
0: वही होते
1: हैं। और वो आज भी याद आते हैं।
0: जानती हो, जब हम पहले किसी बात पे गुस्सा हो जाया करते थे या जिन बातों पे पहले हमको रोना आता था, वही आज बैठकर अगर सोचते हैं तो जबरदस्त हंसी आती कि हम लोग कैसी नादानियां करते थे।
1: सही कहा।
0: वो स्कूल बेंचेस, वो रास्ते, वो स्कूल आज भी हमारे जहन में रहते हैं,
1: बिल्कुल बसे हुए हैं,
0: बिल्कुल उनको भूल भी नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे जिंदगी के सबसे

धड़कनों तक ये गीत पहुंच भी रहा है और हमारे इतने सारे श्रोताओं से हमारी बात भी हुई, लेकिन समय हमसे कह रहा कि हम आपसे इजाजत भी ले लें। तो आगे आपके साथ रहेंगी रक्षा, लेकिन

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या 101.9 मेगाहर्ट्ज़ ऑन न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी अयोध्या है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दिन के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत, आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
2: दोस्तों नमस्कार, सेहत नामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आहार विशेषज्ञ यानी न्यूट्रिशनिस्ट यानी डाइटिशियन अदिति प्रभु को। अदिति प्रभु से हम जानकारी हासिल करेंगे आहार के बारे में और किस तरह के आहार लेने चाहिए। अदिति जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आज का जो मुद्दा है न्यूट्रिशन, आहार विहार और डाइटिशियन की कब जरूरत पड़ती है और न्यूट्रिशन क्या है?
3: हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लोग हमेशा यही सोचते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल ये हो गया मेरा न्यूट्रिशन, जबकि एक डाइटिशियन जब आपके खाने को देखते हैं वो न्यूट्रिशन को थोड़े अलग तरीके से देखते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि आपके प्लेट में या थाली में क्या है, रोटी सब्जी दाल चावल है कि नहीं और वो कितनी मात्रा में है और उसको कैसे हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स विटामिन्स में कंपेयर कर सके। हम ये देखते हैं कि क्या वो संतुलित है और किस मात्रा में आपको उसकी जरूरत है, क्या आप वो सही मात्रा में सही समय पे लेते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम सर्वसाधारण इंसान को अगर समझाने जाए तो आपको ये देखना है कि खाने में ना कि सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल, बगैर आपको ये देखना है कि आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फाइबर ये कितनी मात्रा में है, ये बहुत जरूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जिंदगी के हर पड़ाव पे जरूरी है, तो हर पड़ाव पे ये न्यूट्रिशन की जरूरत हर किसी के लिए अलग अलग होती है। ना कि हम जब पोषण की बात करते हैं लोगों को सिर्फ बचपन बीमारी ये सब याद आता है, मगर न्यूट्रिशन आपको प्रेगनेंसी में भी जरूरी है, आपको अगर आप खिलाड़ी हो स्पोर्ट्स करते हो तो तब भी आपको जरूरी है, आपको आपकी पीरियड्स शुरू होने वाले हैं या आपकी पीरियड्स रुकने वाले हैं तब भी आपको जरूरी है, और आपको समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत क्या है।
2: तो ये बताइए कि कैसे समझें ये जो जरूरत होती है, एक आम इंसान को नहीं समझ में आता है कि एक जो इंसान सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में उसको कितनी डाइट की जरूरत है, कितने आहार की और न्यूट्रिशन की जरूरत है, पोषकता की खास तौर से कितना पोषण चाहिए, ये किस तरह से इसका निर्धारण कैसे हो?
3: ये तो आप जब भी डाइटिशियन के पास जाएंगे तब आपको एकदम डिटेल में बताया जाता है, ताकि आपको आपके जिंदगी की आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, आपकी आदतें कैसी है, आप क्या काम करते हो, आपको क्या बीमारियां हैं या आपकी क्या खाने में कमियां हैं, आप जहां रहते हो खाने में क्या पूरी तरीके से पोषण मिलता है, उस आधार पे आपको ये बताया जाता है कि आपको किस चीज की किस मात्रा में जरूरत है। सर्वसाधारण इंसान को अगर मैं थाली के भाषा में समझाऊं तो उनकी थाली में एक चौथाई हिस्सा धान होना चाहिए, जो कि आपको ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट देगा, ताकत देगा आपकी दिन की काम करने के लिए,
2: ऊर्जा भी देगा,
3: ऊर्जा मिलेगी आपको। आपकी थाली में एक चौथाई हिस्सा सब्जी होना जरूरी है, जो कि मौसम के आधार पे जो भी आपके इर्द गिर्द मार्केट में आपके अवेलेबल हो वो ज्यादा आपको लेनी जरूरी होती है,
2: वो भी मौसम के हिसाब से।
3: मौसम के हिसाब से, क्योंकि हर सब्जी हर मौसम में मिलती नहीं है, और हम आजकल ज्यादा कर जो साल भर मिलते हैं वही सब्जियां खाते हैं। इसके अलावा एक चौथाई हिस्सा आपके प्लेट में होना चाहिए आपका प्रोटीन, प्रोटीन जो आता है वो

0: ज्यादातर अगर आप शाकाहारी हैं तो दाल, फिर आपके पल्सेस जैसे मूंग, चौली, राजमा, छोले, इसमें से आ जाता है। अगर आप दूध लेते हो तो दूध, पनीर, इसमें से आ जाता है। और अगर आप मांसाहारी हैं तो आपको मच्छी, फिश, चिकन, इसमें से आपको मिल जाता है। और जो एक चौथाई हिस्सा है, इसमें आपको जरूरी होता है कि थोड़ा सा सलाद ऐड करें, थोड़ा सा आपका दही ऐड करें, क्योंकि दही जो होता है प्रोबायोटिक होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है। ये सर्वसाधारण ये थाली है जिसमें आधा हिस्सा तो ज्यादातर सब्जियों से भर जाता है। ये संतुलन जो है हर इंसान के लिए थोड़ा बहुत बदल जाता है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी की जरूरतें क्या है, उस पे ये निर्भर करता है
1: जी। और ये जो आपने बताई सब्जी, तो सब्जियां थोड़ा आराम से उबली हुई या कम मिर्च मसाले वाली, नहीं तो फिर वो मसाला खा के दिक्कतें और हो जाएंगी। यहाँ पर एक गाना जरूरी है, कौन सा गाना सुने? हमें तो लगता है कि वो सादा खाने की बात है, तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ।
0: क्यों नहीं, एकदम सही गाना चुना है आपने।
1: ज्वारभाटा फिल्म का गाना सुनते हैं।
2: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

0: लोग स्वाद प्रेमी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह. हम फास्ट फूड की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए और बुजुर्गों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए.
1: अगर हम बच्चों की बात करें, पहले तो स्तनपान बहुत ज़रूरी है, पहले 6 महीने तो बहुत ही ज़रूरी है. उसके बाद धीरे धीरे आपके खाने में जो भी खाना आता है वो धीरे धीरे बच्चों को शुरू कर देना चाहिए. ये कोशिश करें कि उसमें नमक शक्कर ये वर्ज्य रहे, या आप उसे खाने में ना रखें.
0: अच्छा अच्छा ओके.
1: आप ज़्यादातर बच्चों को जो वो मौसम के फल है, सब्जियां हैं, दाल चावल है, इससे शुरुआत करें. जितना हो सके ये समझना लोगों को जरूरी है कि बच्चे जो है ये देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि जो उनको बोला जाता है. सो अगर उनके माता पिता बहुत ज्यादा चुन चुन के खाते हैं तो बच्चों के ऊपर उतना

0: ही असर होता है। बढ़ती उम्र के साथ आपकी खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों को सही मात्रा में छोटी छोटी अमाउंट में खाना देना जरूरी है। हर बच्चे की भूख अलग अलग होती है, तो कुछ माता पिताओं को लगता है हम कम खाना दे रहे हैं, कुछ को लगता है हम बच्चों को ज्यादा दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। आपके बच्चों को जितना जरूरी है उतना जाना चाहिए। उसके खाने में जो मौसम में मिलने वाली सब्जियां हैं, फल है, वो होना जरूरी है। दूध, दही, इसकी मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए, और प्रोटीन भी उतना ही जरूरी होता है। मतलब दाल, पल्सेस जैसे राजमा, छोले, पनीर, इसका भी आपको सेवन सही मात्रा में रखना जरूरी है। ये वही वक्त है जिंदगी का जहाँ पे कुपोषण ग्रामीण लोगों में ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास सही खाना होता ही नहीं है। और कई बार ऐसे होता है खाना तो है मगर लोगों को पता नहीं है कि उनको ये बच्चों को देना चाहिए या नहीं। जो पहले के जमाने में था, आपके बुजुर्ग घर में होते थे जो आपको बताते थे कि आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं, आज कईयों के पास वो नहीं है साथ। जितना आप शहर की तरफ जाए, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ गई है, तो वहां पे माता पिता बहुत डर डर के बच्चों को खाना देते कि ये दू ये नहीं दू, ये सही है ये गलत है, इस सोच में कई बार बहुत खाना कम चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको ध्यान देखना जरूरी है। वैसे ही अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग जो होते हैं उनको दांतों के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, और उनको बाकी के हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे उनकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, तो उनके हिसाब से उनका खाना भी बहुत संभाल के बना के उनको देना जरूरी है। जितना बचपन में खाना जरूरी है उतना बुजुर्गों के लिए भी खाना जरूरी है। उनको उस तरीके का खाना देना चाहिए जो वो खा सके। अक्सर बुजुर्ग जो होते हैं वो नहीं बदलते बहुत सही से, तो बहुत रिजिड होते, तो ऐसे वक्त पे दिक्कत आपको बहुत आ सकती है। मगर उनको ये समझाते हुए कि आपको ये जरूरी है, क्योंकि जैसे आप बुजुर्ग हो गए आपके बॉडी में मसल लॉसेस बहुत हो जाते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है होना बट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से आहार के ऊपर बहुत असर पड़ जाता है। तो ये वक्त भी ऐसा वक्त है जहाँ पे खाने में प्रोटीन पे ध्यान देना जरूरी है। क्या फल सब्जियां सही मात्रा में जा रही है, सही वक्त पे जा रही है, ये देखना जरूरी है। और उससे ज्यादा ये जरूरी है क्या ये पूरी तरीके से संतुलित आहार पूरे दिन में खा रहे हैं।
1: अदिति जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि विटामिन्स कितना जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विटामिन्स। और ड्राई फ्रूट और फलों में बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खा लें तो हमें बहुत सारा पोषक तत्व तो मिल जाएंगे। तो जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स में किस तरह के विटामिन्स होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में खाएं वो।
0: अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत है तो सबसे ऊपर आते हैं फल और सब्जियां। और इसीलिए मैंने कहा कि मौसम के आधार जो भी आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो आपको लेना जरूरी है। जैसे बारिश के मौसम में कुछ सब्जियां मिलती हैं वो बाकी वर्ष भर आपको नहीं मिलेंगी। ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि वो आपको उस समय के लिए जो आपको विटामिन्स मिनरल चाहिए वो उतना प्रोवाइड करती हैं
1: जी।
0: तो सबसे पहले आपके खाने की लिस्ट में, आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में होना चाहिए सब्जियां और फल जो कि मौसम के आधार पे हो। जैसे अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केट में ज्यादातर एप्पल, पेयर, उसके अलावा पपीता मिल जाएगा। मगर मौसम के आधार पे, जैसे अभी ये जो मौसम है ये आलू बुखारा का है, या अनार आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आपको ये फल ज्यादा खाने जरूरी है। जैसे सब्जियां हो गई, तो इस मौसम में बारिश के आपको बहुत ज्यादा, हम जो रान भाजी बोलते हैं मराठी में या हिंदी में, हम उसको जो
1: पत्ती वो वाली सब्जी,
0: पत्ती वाली सब्जियां, मगर जो लोगों को ज्यादा कर पता नहीं होती है, ऐसी वाली बारिश के मौसम में कम ऐसी सब्जियां आती है, जैसे फोड़शी हो गया, टाकला हो गया, वो आपको बारिश में ही मिलेगा।
1: अच्छा,
0: और वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी कंठोला आ गया, आप तो कंठोला आपको अभी ही मिलेगा, आपकी तबीयत खुद ही संभल जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा।

0: पड़ेगा आपको फाइबर की गोलियां या कुछ लेना नहीं पड़ेगा पेट साफ करने के लिए. तो ऐसी चीजें आपको मौसम के आधार पे खानी चाहिए. हम फिर मुड़ते हैं ड्राई फ्रूट और नट्स के बारे में. नट्स और ड्राई फ्रूट्स ये दो चीजें अलग अलग है. लोग अक्सर इनको कंफ्यूज कर देते हैं. नट्स वो चीज है जो कि आपको विटामिन मिनरल देते हैं, जैसे बादाम हो गए, उसमें विटामिन ई आ गया आपका, उसमें हेल्दी फैट आ गए, थोड़े बहुत प्रोटीन भी आ गए जो आपकी तबियत के लिए बहुत अच्छे हैं. फिर आ गए अखरोट या वॉलनट जिसे कहते हैं, इसमें आपको विटामिन ई आया, ओमेगा आया, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं. इसके अलावा ब्राजील नट्स आ गया. अभी ब्राजील नट के लिए तो हिंदी नाम कोई है नहीं, ना ही कोई देसी नाम है उसका, उसे ब्राजील नट ही कहा जाता है. वो कि सेलेनियम रिच होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन है, थायराइड का इश्यू है, उसके लिए वो बहुत फायदेमंद हो जाता है. वैसे ही जो कद्दू होता है उसके बीज होते हैं पंपकिन सीड्स, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत के लिए अच्छे होते हैं, उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है. तो नट्स एंड सीड्स आपके लिए महत्वपूर्ण है. इसके अलावा आते हैं ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं. अभी जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं उसमें पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है,
1: बढ़ जाता है.
0: अभी लोग क्या सोचते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, किशमिश खा लेते हैं, अंजीर खा लेते हैं, और एक से तो मन कभी किसी का भरता नहीं है, तो चलो मुट्ठी भर उठा लिया. और फिर खुद को ही बताते हैं कि क्या है इसमें, ड्राई फ्रूट और नट्स तो हेल्दी होते हैं तो खा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि इससे आपकी शक्कर बहुत बढ़ सकती है, ब्लड शुगर लेवल.
1: जी जी.
0: और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट और नट्स वो ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी है, जो जरूरी है, मगर एक कम मात्रा में खानी चाहिए, ना कि वो चने सिंह की तरह आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे.
1: जी बिल्कुल. यहाँ पर एक गाना सुनते हैं. कौन सा गाना?
0: क्यों ना देश की धरती सोना उगले, ये थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि मुझे लगता है हमारी देश की धरती है वो वाकई में हमें सोना देती है. जो मौसम की जो सब्जियां है, फल है, अनाज है, उससे हमारी सेहत तो वो ऐसे ही संभाल लेती है. तो उससे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए.
1: जी. उपकार फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना.

0: गाने के बाद अदिति जी हमें बताइए, आपने बुजुर्गों की बात की और बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की, यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है वो है महिलाओं के पोषण की। महिलाओं के पोषण के प्रति परिवार बहुत लापरवाही भी करता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रचुर मात्रा में पोषण की जरूरत पड़ती है, और ऐसी महिलाएं जो श्रमिक वर्ग से आती हैं और गाँव में खेतों में काम करती हैं, तो इनके बारे में बताइए क्या कुछ इनके लिए जरूरी होता है। कई बार ये भी होता है कि उनके पास खाने की चीजें नहीं होती है, ऐसी स्थिति में क्या कुछ खाएं?
1: तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा एक मुद्दा लाना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिंदगी के हर पड़ाव पे जो आपको आहार या पोषण की जरूरत होती है उसके लिए अलग अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपको उस वक्त पे सही तरीके की मदद कर सके। जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन होता है वैसे डाइटिशियंस में भी होता है, और गर्भवती महिलाओं के लिए या आप शिशुपालन के वक्त आपको जो भी सहायता चाहिए लैक्टेशन के लिए वहां पे आपको अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से इस समय में मदद कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी औरत को अकेले महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की बात करें जिंदगी का एक बहुत अहम चरण है आहार, इसमें बहुत लोग सिर्फ प्रेगनेंसी की ओर से देखते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि आपको आपका पोषण प्रेगनेंसी के पहले से देखना जरूरी है। जब भी आप सोचे कि आपको प्रेगनेंसी धारण करनी है ये आपको आपका पोषण उसके पहले से संभालना चाहिए। मतलब आपकी सही विटामिंस मिनरल्स आपका आहार, क्योंकि पहले 3-4 महीने में आपको नौशिया थोड़ा सा उल्टी होना बाकी सब प्रेगनेंसी के इश्यूज आ सकते हैं, कुछ खाने आपको सूट नहीं करेंगे, तो ये आप तब ठीक करने जाओगे तो ये मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको आपके प्रेगनेंसी होने के पहले आपको थोड़ा सा ख्याल रखना खुद का जरूरी है, देखना जरूरी है कि आपके विटामिन मिनरल्स जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें आपकी सही मात्रा में है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद के लिए और बढ़ते हुए बच्चे के लिए खाने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स में तीनों के वक्त खाना अलग अलग मात्रा में खाया जाता है, उसकी रेशोज भी अलग अलग होते हैं जिसकी प्रमाण होते हैं। अगर मैं एकदम सहज भाषा में बताऊं, जो मैंने थाली की बात की थी पहले जहाँ पे 1/4 धान है, 1/4 प्रोटीन है, आप थोड़ी मौसम वाले सब्जियां, फल और दही दूध सलाद ये थोड़ा सा खा ले तब भी आप आपकी सेहत का ख्याल रखोगे, ये बेसिक हो गया। अगर कोई आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी जरूरतें बढ़ सकती हैं जो कि आप संभाल सकते हो सिर्फ आहार के बलबूते पे।
0: जी, ये यहाँ पर एक बात और है, एक तो माहवारी के समय महिलाओं के लिए और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, दूसरा मेनोपॉज के समय, क्योंकि उस समय भी हमने सुना है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और इसमें तीसरा एक मुद्दा है लड़कियों के लिए जो खेल की दुनिया में जाना चाहती हैं, खास तौर से लड़कियों के लिए। खेल की दुनिया में तो यूं लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है, तो क्या स्पेशल कोई डाइट होती है?
1: जी, आप जो खेल में खेल रहे हो उस खेल के आधारित आपका पोषण जाता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, आप कौन से एज ग्रुप में आप खेल रहे हो, इसके बेसिस पे भी आपका खाना पूरी तरीके से बदलता है। जब हम स्पोर्ट्स वालों की बात करें तो उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको विटामिन्स मिनरल्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उनको परफॉर्मेंस पे ज्यादा है कि आप साल भर तो प्रैक्टिस कर लेते हैं मगर वो एक खेल आपको बता देता है कि आप सही खेले हो या आपने खुद का ख्याल सही से रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको, अगर आप महिला है और खेल की दुनिया में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपको आपके आहार के बारे में देखना जरूरी है, आपका पोषण सही होना चाहिए, जो कि लोग तो स्पोर्ट्स के पीछे, स्पोर्ट्स अच्छे कोच हो, अच्छे ट्रेनिंग मिले इसके पीछे लग जाते हैं मगर आहार के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। ज्यादातर मैं ये देखती हूँ कि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम रहती है।

0: या वो सही तरीके से नहीं खाते, क्योंकि वो उस वय में है जहाँ पे सुंदरता भी बहुत जरूरी है, एक विशिष्ट रूप से दिखना भी जरूरी है, और उनको खेलकूद में भी सही रहना है। और दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं उनके हार्मोनल और महावारी के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते।
1: तो किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है इन्हें?
0: तो इन्हें ज्यादातर सही वक्त पे खाना बहुत जरूरी होता है, और सही वक्त पे सही मात्रा में। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और अभी आपकी ट्रेनिंग है, तो आपको ट्रेनिंग के पहले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोटीन के ऊपर देखना जरूरी है। मगर आप पूरे दिन में क्या खाते हो और कितना संतुलन आप मेंटेन करते हो, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर की बहुत जरूरत होती है। प्रोटीन आपको नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, एकदम ज्यादा नहीं बट सही मात्रा में, जो कि आपको खाने से आराम से मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको आपका प्रोटीन मिल रहा है। विटामिन्स जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर अगर आपको इंजरी हो गई तब भी आपका पोषण बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि आपको रिकवरी जल्दी करनी होती है, तो तब प्रोटीन की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। विटामिन मिनरल्स जैसे ओमेगा हो गया या विटामिन डी हो गया, ये बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी पड़ जाता है। तो खेल के हिसाब से आपका पोषण बदल जाता है, आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो उसके ऊपर भी बहुत बदल जाता है, आपका खेल क्या डिमांड करता है। जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी का फैट परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए, जो शरीर में चर्बी होती है वो एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से ही चलती है। आप ज्यादा करोगे तब आपकी परफॉर्मेंस पे परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर खेल के हिसाब से थोड़ा सा पोषण बदला जाता है।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुने
0: जी,
1: कौन सा?
0: क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना कोई चक दे इंडिया का बढ़िया सा गाना हो जाए।
1: सुनते ही ये गाना।

अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग डाइटिशियन होते हैं, ये नई बात है हमारे श्रोताओं के लिए। और आपने जिक्र किया कि आप पेट की तमाम बीमारियों के बारे में डाइट तय करती हैं, पेट की तमाम समस्याओं के बारे में आप अवेयर करती हैं, जागरूक बनाती हैं हमारे श्रोताओं को। तो बताइए कि पेट की किस समस्या के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और कितना संतुलन होना चाहिए आहार में।

0: ज्यादा कर मेरे पास आने वाले लोग होते हैं उनको एसिडिटी ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती है
1: जी.
0: इसके अलावा किसी को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, पचन क्रिया ठीक नहीं काम कर रही है, या किसी को IBS, IBD ये थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं. डाइजेशन रिलेटेड तो बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं क्योंकि पेट आपका दूसरा दिमाग है, तो आपके दिमाग पे, संतुलन पे, आपके काम पे, सब पे असर पड़ने वाला है. और मुख्यतः क्या हो जाता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो जो आप खा भी रहे हो ना वो शरीर को लगेगा ही नहीं.
1: जी जी.
0: छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते कभी कभी. जैसे अगर मैं बोलूँ तो हर कोई चाहता है कि सुबह शुरुआत हो एक कड़क प्याली चाय के साथ, और वो चाय के साथ होती है फिर दो बिस्किट या फिर एक टोस्ट. और वो चाय भी आपकी एसिडिटी के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होती है.
1: जी.
0: अगर एसिडिटी के इश्यूज हैं तो आपको सबसे पहले तो क्या आप सही वक्त पे खाते हो, और क्या ये वक्त आप हर रोज उसी वक्त पे खाते हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है.
1: अच्छा.
0: दूसरी चीज, आप वो वक्त पे क्या खा रहे हो. जैसे आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे, तो आपको एसिडिटी बढ़नी ही वाली है. और एसिडिटी ऐसी चीज है कि आपको एक दिन का उपाय नहीं है वो, आपको जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आपको करीबन 3 से 4 हफ्ते करना पड़ेगा
1: जी.
0: तब जाके आपकी एसिडिटी कहीं जाके कम हो सकती है. तो सही वक्त पे खाना, सही क्वांटिटी में खाना, ये बहुत जरूरी है. ज्यादातर मौसम में जो फल होते हैं, जैसे जब आपको एसिडिटी होती है ज्यादातर मेलन्स, कलिंगड़ हो गया या फिर तरबूज हो गया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वो ठंडा देता है, आपके पेट को राहत देता है. मगर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ होती
1: जी, ब्लोटिंग होने लगती
0: बहुत ज्यादा. जैसे ककड़ी ऐसी चीज है जो आपको फायदा दे सकती है मगर किसी को तकलीफ दे सकती है. तो आपकी शरीर को क्या जरूरी है ये देखना जरूरी है, और उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए. तो यहाँ पे आप 3 मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दोगे, आपकी नींद, आपका पानी और आपकी खाने का समय और मात्रा. ये 3 चीजें आपने संभाल ली और आपने छोटे छोटे क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खा लिया पूरे दिन में, तो आप सही रहोगे, आपको एसिडिटी की दिक्कत कम होगी. और जितना हो सके थोड़ा स्वाद को दुय्यम स्थान देके पहले पोषण के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी एसिडिटी आराम से संभल जाएगी.
1: इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है IBS, तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए, मतलब ये सारी गैस, एसिडिटी, पित्त, IBS, इन सब से राहत पाने के लिए खाने वाली कौन सी चीजें जिसे अपना दोस्त बनाएं, और कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें दूर भगा दें, बताइए हमारे श्रोताओं को.
0: IBS और IBD थोड़ा एडवांस लेवल की पेट के इश्यूज हैं, जहाँ पे आपको लो फॉडमैप के खाने की जरूरत होती है. आपको डाइटिशियन के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके खाने में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. बाकी के जो आपने बातें की उसमें आपके खाने में ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, कम मसालेदार, कम खड़े मसाले जहाँ यूज हो ऐसे खाने, कम मात्रा में, कम तेल, कम मसाले डाल के पकाए जाए और खाए जाए, तब आपको बहुत फायदेमंद देते हैं. सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि एसिडिटी और गैसेस के मामले में, कि आपकी दिन की शुरुआत और दिन का अंत ये बहुत महत्वपूर्ण होता है. मतलब आप सबसे पहले क्या खा रहे हो और आपका रात का खाना वो पूरे दिन के सभी खाने में से थोड़ा हल्का हो और वो थोड़ा जल्दी हो, सोने के कम 2.5 से 3 घंटे पहले हो, ये बहुत जरूरी है.
1: जी जी बिल्कुल. और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की कितनी अहमियत है.
0: बहुत ज्यादा. बहुत कम लोगों को ये पता है कि मानसिक जो भी आप महसूस करते हो इसके लिए भी आपका आहार बहुत काम आ सकता है. बहुत बार ये होता है कि लोगों को विटामिन की कमियां होती है, मिनरल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, बेचैनी ज्यादा हो जाती है. आजकल सोशल मीडिया और रील्स के
1: डिप्रेशन
0: देख के लोग बड़ी आसानी से डिप्रेशन, एंजाइटी के अल्फाज यूज कर लेते हैं, बट कई बार ये सिर्फ विटामिन और मिनरल की कमियों की वजह से होने वाली वाली चीजें होती है जहाँ पे आप थोड़े समय के लिए थोड़े से बेचैन हो जाते हो या आप काम पे ध्यान नहीं दे पाते, और जैसे ही आपने विटामिन मिनरल्स को सही कर दिया आपको

0: दिक्कतें कम हो जाती है। जब आपको कोई मानसिक बीमारी है जो कि डायग्नोस्ड हो और डॉक्टर ने आपको उसका डायग्नोसिस दिया हुआ हो, तो डायग्नोसिस के बेसिस पे भी आपका आहार बदलता है। जैसे कि आपको ADHD है, डिप्रेशन है, MDD है, तो हर एक बीमारी के हिसाब से आपका आहार थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। मानसिक चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके खाने में क्या ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें ज्यादातर यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है क्योंकि उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। प्रोटीन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे ADD है या ADHD है, इसमें पैकेट फूड में जो रंग आते हैं वो उनके सिम्टम्स को बहुत ज्यादा एग्रेवेट करते हैं, तो वो अवॉइड करना या नहीं खाना, उनसे दूर रहना या शक्कर से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फल सब्जी जितने विविध रंग के आप अपने प्लेट में रख सको वो उतना अच्छा। WHO बताता है कि हफ्ते में आपके कम से कम 30 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आप अनाज, सब्जी, फल या कोई धान है, दाल है, इसको गिन के देखिए क्या आप हफ्ते भर में 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट खाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं।
1: अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर फल जो लोग खा नहीं सकते हैं, सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो उनका ये सिद्धांत होता है कि शनिवार रविवार को बैठ के इकट्ठा फल खा लेते हैं और उस दिन खाना स्किप करते हैं या थोड़ा बहुत खाना खाते हैं अनाज, तो ये सही तरीका है क्या?
0: नहीं, हर चीज का एक रास्ता होता है। जैसे ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं और 11 बजे 10 बजे आ जाते हैं, उनका एक सही उपाय है कि आप जहाँ काम करते हो ना वहाँ आजू बाजू में जो फल वाला हो उसके साथ जाके थोड़ी सी गपशप कर लो और उनको बता देना कि देखो भाई मुझे हर दिन का एक फल चाहिए, और ये मैंने किया हुआ है कि आप वो फल वाले से बात करो कि मैं हर दिन एक फल लेकर जाऊंगा, आपको वही सुबह मिल जाएगा और वो आपको याद दिलाएगा कि आपने फल लिया नहीं।
1: जी बिल्कुल, और होता उल्टा है कि लोग फास्ट फूड की दुकान ढूंढ लेते हैं और जाके फटाक से पैक करके खा लेते हैं, अमूमन यही होता है, वहां पर समोसा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, आइसक्रीम शॉप ढूंढ लेते हैं। तो भाई खाने का असर सेहत पर होता है, गाने का असर भी बहुत अच्छा असर होता है। कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का,
0: आप भी बता दीजिए कोई खाने के ऊपर गाना।
1: ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें कि आइसक्रीम भी है और चॉकलेट भी है।
0: बढ़िया,
1: तो चलिए यही गाना सुनते हैं, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

0: अदिति जी, अभी एक बड़ा ही जरूरी मुद्दा है बच्चों में, खास तौर से, वो चाहे बच्चे में चाहे बड़े भी, लेकिन बच्चों में ज्यादा है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो रहा है। बार बार किसी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी होती है, तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कुछ खाना अपने जीवन में जोड़ ले रोजमर्रा की जिंदगी में, कुछ बताइए।
1: सही बात बोलूं तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए कोई अलग चीज करना जरूरी नहीं होता। अगर आप अपने खाने को थोड़ा ध्यान से देखें, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, आप कैसे बना रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो, तो आपकी समस्या की राह यही है।
0: जी जी।
1: अक्सर क्या हो जाता है, लोग जैसे मैंने कहा, जो मौसम में आपको फल सब्जियां मिल रही है वो नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते हैं या उनको खट्टी चीजें पसंद ही नहीं होती है। इसमें क्या हो जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए, तो ना नींबू जा रहा है यहाँ पे, ना संतरा जा रहा है, ना आप कोई विटामिन सी पेरू जा रहा है, तो इसमें आपको दिक्कतें आ जाती है। जैसे मैंने कहा, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी थालियां ना छोटी छोटी छोटी होती जा रही है, वही चार सब्जियां, वही दाल चावल, वही रोटी, हम अलग कुछ करने ही नहीं जाते, जिसके वजह से आप वो ही चार सब्जियों के गुण पाओगे, आपको उसके आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे बारिश के मौसम में आपको सज्जन फली की पत्ते मिलते हैं, मुरिंगा जिसे कहा जाता है, वो इतना आयरन रिच होता है, फाइबर रिच होता है, मगर कितने लोग जानते हैं। मुझे अक्सर पूछा जाता है इसे बनाया कैसे जाए, पर ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने बच्चों के खाने में भी डाल सकते हैं, रोटी में थोड़ा सा डाल दिया, दाल में थोड़ा सा डाल दिया, जैसे मैंने कहा कि आप ये चीज पे ध्यान दो कि आपके थाली में कितने रंग है, कितनी तरीके के इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, और आप अपनी इम्यूनिटी को आराम से संभाल पाओगे। आपको कोई भी काढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हम क्या करते हैं, हमें सबको ना शॉर्टकट बहुत पसंद होता है, तो चलो इम्यूनिटी बढ़ानी है, सर्दी खांसी होती है तो हल्दी का पानी बना देंगे, बट हम भूल जाते हैं हम भारतवासी हैं, हम हल्दी वैसे भी खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं।
0: जी जी जी।
1: और हम जब हल्दी का पानी बनाते हम अकेले हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च भी डाल देंगे, वो एकदम गर्म मसाले का पानी हो जाता है।
0: बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे फूड भी हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें रोज मिलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है?
1: ज्यादातर अगर आप सब्जी और फलों के ऊपर ध्यान दें तो आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वही चीज है जो हम कम खाते हैं। जैसे दिन में आपको कम से कम 200 से 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए, हम यहाँ पे 200-300 ग्राम चार लोगों के परिवार के लिए खाते हैं।
0: बिल्कुल। एक पाव सब्जी लेके बस मसाला डाल,
1: हाँ, और उसमें ढेर सारा आलू, ढेर सारा प्याज और सब्जी बन गई, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है।
0: जी बिल्कुल।
1: आप मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपको बेसिकली आपके खाने के संतुलन पे ध्यान देना जरूरी है, आप उसको कम ज्यादा करने नहीं जा सकते, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं।
0: अदिति जी, आजकल एक फैशन हुआ है कि अपने वजन को कम करना है, कंट्रोल रखना है, लड़कियों में तो ये प्रवृत्ति बहुत देखी जा रही है कि दुबली पतली रखना, फिगर, जीरो फिगर, लड़के भी आजकल कम नहीं है, होड़ में शामिल है, और उसमें जिम संस्कृति आ गई है, हर तीसरा लड़का या तीसरा व्यक्ति जिम जाएगा, तो ये जो वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले कितना आहार लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद कितना आहार लेना चाहिए?
1: जी, वजन के पीछे भागना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भागना थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। सिर्फ वजन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान सही में तंदुरुस्त है या नहीं। कभी कभी लोग वजन में थोड़े से हैवी होते हैं, मगर उनके बॉडी में मसल की मात्रा ज्यादा होती है और फैट परसेंटेज कम होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि दुबले पतले होते हैं लोग, मगर उनका फैट परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
0: जी जी।
1: इसके लिए हम कहते हैं कि सिर्फ वजन के आधार पे या बीएमआई के आधार पे किसी की भी तंदुरुस्ती के ऊपर

0: हम कुछ नहीं बोल सकते
1: जी बिल्कुल।
0: जब हम बात करते हैं वर्कआउट की, आज क्योंकि हम ऐसे दौर पे रहते हैं जहाँ बाहर की खेल कूद ट्रैवल ये सब थोड़ा सा कम हो गया है, जहाँ हम पहले चल के जाया करते थे अभी एस्केलेटर्स है, बस है, रिक्शा है, बाइक है, तो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम कदम इस्तेमाल करते हैं वही कम है। लोग 1000-2000 पैदल इतना ही चल लेते हैं, उसके ऊपर वो चलते ही नहीं है। और इसके लिए जिम्स बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तरीके का शारीरिक व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। तो जब आप जिम करते हो, जिम में आप क्या करते हो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक रूटीन होना जरूरी है। बस अखाड़े चले गए और आपको जो पसंद आया आपने कर लिया, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक ही समय या एक समय जो होता है, जिसे ये नहीं कहते कि 9 बजे तो 9 बजे जाओ, मगर सुबह के समय पे जाके वर्कआउट करो, तो एक वो टाइम फिक्स करना जरूरी है। जब भी आप वर्कआउट करने जाए तो वर्कआउट के पहले थोड़ा सा तो खाना जरूरी है, जैसे कोई भी फल खा लीजिए, या अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, आइडियली डिनर के बाद तो वर्कआउट हम मना कर देते हैं, बट लंच या नाश्ते के बाद जो हम करते हैं वर्कआउट, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी वर्कआउट करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और जब भी वर्कआउट किया जाता है तब मसल टूटते हैं, उनको रीबिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। तो वर्कआउट के बाद आप कितने समय में क्या खाते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वर्कआउट के बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही में होनी चाहिए, कि जो भी आप प्रोटीन इस्तेमाल करें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चीला बना दीजिए, या कोई दाल एक कटोरी खा लीजिए, या थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, या आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा ले लीजिए, तो आपका प्रोटीन थोड़ा सा संभल जाता है। मगर प्रोटीन के साथ थोड़ी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप फल इस्तेमाल करो या कोई भी धान्य इस्तेमाल करो, ये बहुत आसान कर देता है। और वर्कआउट के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका खाना ये हो जाना चाहिए।
1: जी, एक गाना सुने।
0: जी
1: कौन सा,
0: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या है, आईबीएस की समस्या है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें मना करते हैं कि खट्टी चीजें मत खाओ, और नींबू तो खट्टा ही होता है, और नींबू लोगों को पसंद भी है, और ये कहते हैं कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तो क्या करना चाहिए, मतलब अगर नींबू खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, नहीं खाओ तो दिक्कतें होती है, जिसमें संतरा, नींबू और बहुत सारे साइट्रस फ्रूट हैं शामिल।
1: मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को देखना चाहिए कि उनको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। जैसे आपने कहा, किसी किसी को नींबू से तकलीफ होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको नहीं होती, आराम से खा सकते हो। अगर आप सिर्फ नींबू की बात करें या विटामिन सी की बात करें, आपको वो चाहिए आपके लाइफ में या तबीयत के लिए, तो सिर्फ नींबू एक चीज नहीं है जहाँ से विटामिन सी मिल सकता है। अगर मैं बोलूँ तो नींबू तो अक्सर गलत ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार नींबू काट के फ्रिज में रख देते हैं आधा, या नींबू काट के बहुत घंटे खुला रहता है। अगर विटामिन सी ऐसे खुला रख दिया तो वो खराब हो जाता है, निकल जाता है उसमें से। तो आप सिर्फ खटास के लिए उसको खा रहे हो, विटामिन सी के लिए तो खा ही नहीं रहे हो
0: जी।
1: वैसे ही नींबू आप एकदम गर्म उबलते हुए पानी में डालोगे तब भी आपका नींबू का फायदा नहीं होगा। नींबू सिर्फ खटास करेगा, वो विटामिन सी आपको नहीं देने वाला है। तो आपको नींबू किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए खाना बनने के बाद ऊपर से नींबू देते हैं। आप विटामिन सी की अगर बात करें तो नींबू छोड़ के भी आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। आप जैसे कीवी इस्तेमाल करें या संतरा इस्तेमाल करें। आपको अगर खट्टी चीजें मना की है तो आप पेरू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता। आप मीठा वाला अमरूद, तो उसमें आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाएगा। जो बेल पेपर्स होते हैं, कैप्सिकम, वो भी आपको बहुत ज्यादा विटामिन सी भी दे सकते हैं। नींबू तो एक ही चीज है, आप संतरा, कीवी, ये सारी चीजें भी आराम से ले सकते हैं। कीवी देसी फल नहीं है, बट वो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। हमारे देसी ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे आंवला एक चीज है, उसके अलावा पपनस, पोमेलो बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी का मुझे वर्ड नहीं पता है, बट वो भी ग्रेप फ्रूट बेसिकली, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अमरूद का मैंने आपको बता दिया।
0: करौंदा,
1: करौंदा भी विटामिन सी है, बट करौंदा भी दो तीन तरीके के हैं। जैसे नॉर्थ में फालसा है, उसको भी करौंदा बोलते हैं, और महाराष्ट्र का भी करौंदा अलग है, तो उसमें थोड़े थोड़े अंतर है। आपको आंवले की तरह छोटे आंवले भी आते हैं, जो भी विटामिन सी युक्त होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या जिसको स्टार ये बोलते हैं, स्टार आंवला, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो।
0: आंवले के भी तो बहुत सारे रूप हैं। आंवला लोग उबाल के खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं, और अचार कहते हैं, वो भी फायदेमंद है। तो इसमें फायदे वाले तत्व किसमें होते हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जितनी हो सके आप कम से कम उसको प्रोसेस करके खाए, उसमें सबसे ज्यादा फायदा है। मगर मैं समझती हूँ कि कच्चा आंवला खाना सबके लिए नहीं पॉसिबल है, तो आप जिस भी रूप से खा सकते हो थोड़ा बहुत खा लीजिए। उसको मुरम्बा बना के या मीठा करके वो अवॉइड कीजिए। चटनी चल जाएगी, अचार चल जाएंगे, बिना तेल के या कम तेल में बने हुए अचार चल सकते हैं, बट आंवले का जो सीजन है उसमें आप चटनी के रूप में उसको आराम से खा सकते हो।
0: जी जी। एक बात और अदिति जी, फलों के साथ कुछ लोग नमक का प्रयोग करते हैं, मसाला नमक आजकल प्रचलित है, या फिर काला नमक, खास तौर से संतरे में, नींबू के साथ भी, या और भी फलों के साथ खाते हैं, अनार में भी लोग नमक डाल के खाते हैं, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है या गलत है?
1: लोग अक्सर इसे स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है। हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहां हम खाने में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नमक की मात्रा जो बहुत ज्यादा है वो हमें बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। लोग सफेद नमक से मुड़ के अभी डेजर्ट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, मतलब हिमालय का नमक, या काला नमक, सेंधा नमक, और अलग अलग तरीके के नमक यूज कर रहे हैं। इसकी दिक्कत ये है ना कि इन नमक को टेस्ट नहीं किया जाता बहुत बार, इनमें क्या मिनरल्स है, विटामिन्स है, पता नहीं रहते। अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई मेडिकल इश्यूज है, तो ये नमक

0: आपको तकलीफ दे सकता है। जो सफेद नमक है हमें पता है कि वो जानकार दुश्मन है, हमें पता है वो बुरा है, हमें पता है कि जरूरी है जिंदगी में, मगर हमें पता है कि कम खाना है। बट जैसे आप सेंधा नमक की बात करें या लूनी नमक या डेजर्ट सॉल्ट की बात करें या हिमालयन सॉल्ट की बात करें, वो नमकीन जो उसकी मात्रा होती है वो कम होती है, तो अक्सर वो हम
1: ज्यादा
0: थाली में ज्यादा डालते हैं, तो वहां पे दिक्कत आती है और वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज या ब्लड रिपोर्ट्स को खराब कर सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन को एग्रेवेट कर सकता है। तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, कम नमक टेबल सॉल्ट बेस्ट, आपको ना सॉल्ट लाइट की जरूरत है ना आपको काला नमक पिंक नमक सेंधा नमक की जरूरत है।
1: जी,
0: अगर आप सेहत में ठीक हो, आप अलग अलग नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिन के अंत में आपको ये देखना है पूरे दिन में नमक कितना खाया। अगेन WHO रेकमेंड करता है कि 3 से 5 ग्राम नमक होना चाहिए, जो कि होता है 1 चम्मच। हम कितना खाते हैं? कम से कम 4 से 5 चम्मच दिन के, तो आराम से
1: दाल में भी बिल्कुल।
0: तो आपको क्या अलग रूप से फलों के साथ नमक खाना जरूरी है? नहीं
1: जी, बिल्कुल। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कारगर बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को, बहुत सारी जानकारी मिली। हमें भी उम्मीद है, हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा ये कार्यक्रम, क्योंकि इतनी सारी जानकारी साझा की है आपने।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में पोषण सप्ताह और पोषण माह के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी आप सुनेंगे आज ही के दिन अगले सप्ताह। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा।

0: अमर अकबर एंथनी, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये पेशकश आपने अभी सुनी। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: है। जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
0: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: तन्हा दिल इस एल्बम से गीत अभी आपने सुना, शान की आवाज में उन्हीं का लिखा गीत और म्यूजिक राम संपत का।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: तलत अजीज की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा, असद अली का संगीत। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का,
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: धड़कन, ये था एल्बम का नाम। पिनाज मसानी की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। मुश्ताक अहमद ख्याल ने इसे लिखा।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रहना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रहना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुँचना मेरे ख्याल से किसी के

0: बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वे पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WDFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में

0: भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। कल भारत अंतिम पूल मैच में चीनी ताइपे से मुकाबला करेगा। ये मैच जीतने पर भारत सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 0.5% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 75,705 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 23,675 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती। लीजिए सुनते हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
0: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: लोक रंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: आकाशवाणी के प्यारे प्यारे श्रोता भाई बहनी, आप सबै का हमार सादर प्रणाम। आज हम हुई आपकी आपन रेडियो दोस्त रक्षा श्रीवास्तव। दोस्तों, अवध की माटी महज धरती नाही, एहिमा बसत है अपनापन, मिठास और लोक जीवन के रंग। एहिमा के लोकगीत मन के भाव का बहुत ही सहज ढंग से कही देत हैं। खुशी होए, ब्याह होए, सावन आए, बिटिया विदा होए, चाहे खेत खलिहानन का मेहनत होए, हर अवसर खातिर अलग अलग लोकगीत हमार संस्कृत के अमूल्य धरोहर है। तो चला ऐसा ही एक लोकगीत हम लेके आईन है, सुना जाए। स्वर है अनीता श्रीवास्तव व सखियन के।

अवधी लोकगीतन की सबसे बड़ी खूबी ई है कि इनका सुने से मन आपन गांव, आपन आंगन और आपन बचपन मा पहुंच जात है। दादी नानी के आवाज, नीम के छांव, खेतन की हरियाली, सब कुछ आखिन के सामन उतर आवत है। तो चलो सुना जाए ऐसा नए गीत।

श्रोता भाई बहनी, अवधी लोक गीतन केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमार संस्कार, परंपरा और आपसी प्रेम के पहचान है। एका सहेज के राखब अगली पीढ़ी तक पहुँचाए भी हम सब की जिम्मेदारी है। तो चला सुना जाए ऐसे लोकगीत।

0: आपकी बात कार्यक्रम में
1: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
0: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
1: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
2: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
1: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
2: 830 321 99 11 पर भेज दें।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: चिंती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
3: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
5: अभी आप सुन रहे थे अवधी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग, हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
6: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
7: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
6: अब ECHS से इम्पैनल्ड, आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
7: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
6: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
3: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कुछ तुमने कहा और मैं हूं आज आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे रक्षा। जिंदगी की भागदौड़ से निकलिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और सुनिए कुछ गीत संगीत, क्योंकि एक प्यारा सा गीत हमारी सारी थकान को दूर कर सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म उमराव जान के गीत के लिए। बागपत यूपी से संजय ढींगिया, लखनादौन जिला सिवनी एमपी से भगवत चौबे लाडला जी, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, पूर्णा देव गांव से सदाशिव थोरात, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा न्यूटू, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, गंज डिंडवारा यूपी से आफताब अंसारी। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, कुरमा

जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से, दिलदार गिरी शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से, संतोष भाकरे रायपुर छत्तीसगढ़ से, विनोद वंडलकर। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म उमराव जान का ये गीत। आवाज है आशा भोसले की।

एक बार मुस्कुरा दो। इस फिल्म के गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, समर्थ रेजिडेंसी अकालकोट रोड जिला सोलापुर महाराष्ट्र से गणेश लोढ़े, भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्केल, जिला छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, जोकी हाटी दर्शना बाजार अररिया बिहार से मोहम्मद सरफराज आलम, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, ग्राम नवागांव मुढ़ीपार जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सोहन लाल साहू, गांव कुम्हारहिड़ा सहारनपुर से मसरूर हसन और धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म एक बार मुस्कुरा दो से ये गीत। आवाज है मुकेश और आशा भोसले की।

फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म पाकीजा के गीत के लिए। बाजार रोड मुंगीसापुर से जाकिर मंसूरी, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, राज पैलेस मऊनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा। इसी फिल्म की फरमाइश हमारे पास आई है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ यूपी से दिलशाद हुसैन, अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, सांगली जिले के जतशहर से अल्ताफ हुजरे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक चांदेड़ और उन्हें जिला उज्जैन एमपी से भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़। तो श्रोताओं आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म पाकीजा का ये गीत। स्वर है लता मंगेशकर का।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म दामिनी के गीत के लिए। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सांकरा सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नरनलाल साहू, गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद प्रकाश मिड्ढा, कस्बा उघैटी बदायूं से धीरज गुप्ता, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है बत्रे बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ एमपी से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, ग्राम कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण होंगड़े, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बरेड़ी से नानाजी लाम से। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म दामिनी का ये गीत। युगल स्वर है कुमार सानू और साधना सरगम का।

फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आप सुन रहे आकाशवाणी अयोध्या से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म दिल लगी के गीत के लिए। जबलपुर एमपी से अशोक सिंह

भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, ग्राम लोहड़ी महोबा यूपी से जयपाल यादव, उन्हें जिला एमपी से भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, गांव नलुई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म दिल लगी का ये गीत। मिली जुली आवाजें हैं अभिजीत, उदित नारायण, सोनू निगम, सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की।

0: पाव भरा क्या हाल है
1: यार। हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे, बगल में डस्टबिन है।
0: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
1: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
4: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
3: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
4: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
3: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, ये आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
4: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
5: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है आप सबका कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म दोस्ताना के गीत के लिए। कोल सिटी बरकाना से अफजाल ताज, रावर करनाल से विनोद लखनपाल, बनियापारा धमतरी

छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, ग्राम मसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, गांव खोखरावाली श्रीगंगानगर से विनोद बरांसा, कलानौर से नरेंद्र शर्मा। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, पांजराबोरी जिला भंडारा महाराष्ट्र से बबन राम टेके, रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से गंगा सिंह रावत और नगरिया काला बरेली से एमडी अक्रम अंसारी। तो श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म दोस्ताना का ये गीत। आवाज है शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान की।

शिवांगी पांडे की आवाज में। फिल्म रईस का गीत सुनना चाहते हैं? सालार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहराजुद्दीन, जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से राघव बघेल, बक्सेना दातागंज बदायूं से विमल सिंह। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से प्रताप पांडे, गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, जिला किशनगढ़ बिहार से रविंद्र दास, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूड़त, मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म रईस का ये गीत। आवाज है पावनी पांडे की।

फिल्म जूली का गीत हमने लिया है आप सबकी पसंद पर। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त नाभा, ग्राम एचौरा तहसील मिलक जिला रामपुर से सकावत हुसैन मंसूरी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, बड़ा बम चौक खंडवा एमपी से संजय मार्केंडे, अंडार नांदगांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, ग्राम बग बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, उच्च भट्टी बिलासपुर से मुकेश गोस्वामी, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म जूली का ये गीत। आवाज है उदित नारायण और अलका याग्निक की।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी गीत हमने लिया है फिल्म कच्चे धागे से, जिसे सुनना चाहते हैं चमनपुरा उदयपुर से नजीबुद्दीन खान, मेरठ से दिग्दर्शन गौड़, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राज मिगलानी, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, डाबकी रोड अकोला से सदानंद मंदूरकर, जिला मोतिहारी बिहार से नंदन कुमार सिंह, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े और श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म कच्चे धागे का ये गीत। युगल स्वर है अलका याग्निक और कुमार सानू का।

0: अभी आप सुन रहे थे फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बात।
2: तौल कर ही नहीं, इनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।
0: गीतांजलि कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है अभिजीत सामंत की आवाज में।

गीतांजलि कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है सुखविंदर सिंह की आवाज में।

0: मेरा चश्मा कब उतरेगा?
1: अरे शुगर ने तो मेरी आँख का पर्दा ही खराब कर दिया है।
0: मुझे तो मोतियाबिंद हो गया है।
2: अब आपके सुनैन आई हॉस्पिटल में हर उम्र की आँखों की हर समस्या का समाधान, मोटे चश्मे से छुटकारा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी और तुरंत छुट्टी, शुगर से खराब हुए आँखों के पर्दे का इलाज, नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल, सुनैन आई हॉस्पिटल, निकट वीवार्ड, नियावा, फैजाबाद। कॉल करें 9838100840। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
3: अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। 101.9 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दिन के 2:15 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक

0: कथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए AI सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। GFF वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। GFF 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। GFF में इस वर्ष एजेंटिक AI, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे newsonair ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति NR बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में PG इमारत ढहने के बाद यह याचिका दायर की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने

0: कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
1: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
2: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहासुनी हुई शोर शराबे के ऊपर। उसके बाद वो कहासुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
0: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
4: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने

0: के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एक से 1.9 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या। महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम नारी जगत।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को पुष्पा का नमस्कार। बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो केवल किसी एक व्यक्ति के जीवन को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के भविष्य को बदलने की शक्ति रखता है। वो आप जानती हैं बहनों क्या है? वो है शिक्षा की शक्ति। अगर हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो हमारे अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास होता है। हम अपने अधिकारों को समझ पाते हैं, सही निर्णय लेने की क्षमता हमारी जो है वो बढ़ जाती है और हम अपने जीवन को एक सही दिशा में आगे बढ़ा पाने में सक्षम हो जाते हैं। और बहनों, आज का दिन एक खास जो है दिवस हम मना रहे हैं। 8 सितंबर को हर वर्ष हम सब मनाते हैं साक्षरता दिवस। तो बहनों, साक्षरता दिवस जो है ये मनाने का उद्देश्य भी यही है कि जो है देश का जो है देश दुनिया हर जगह कोई भी मतलब निरक्षर ना हो, ऐसा ना हो कि कोई पढ़ा लिखा ना हो, हर कोई पढ़े लिखे, सब पढ़े सब बढ़े जो है, ये जो है हमारी जो है भावना है, हमारा प्रयास है और हमें इसके लिए हर कदम अपना जो है आगे की ओर ले जाना है। और हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो है बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो किसी कारणवश बचपन में स्कूल नहीं जा पाए या अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, किसी को घर की जिम्मेदारियों ने रोक दिया तो किसी को आर्थिक परेशानी, कभी कभी होता है ना परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जो है स्कूल जाना जो है मुश्किल रहता है। लेकिन इसका ये मतलब जो है बिल्कुल नहीं है बहनों कि अब वो कभी पढ़ लिख नहीं सकते। सच बात जो है ये है बहनों कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना, क्योंकि देखो हम अगर हमारी एक उम्र हो जाती है कि हम मानते हैं कि हम छोटे नहीं हैं, बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, तो हर दिन वैसे भी हम लोग कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हैं। ये ज्ञान का जो भंडार है ये अनंत है, मतलब ऐसा कभी हम बोल ही नहीं सकते या कह नहीं सकते कि हमारा जो ज्ञान है या जो हमारी जानकारी है ये अब पूरी हो गई, हमें किसी ज्ञान की किसी जानकारी की जरूरत नहीं है। हर क्षण हम कुछ ना कुछ सीखते हैं।

0: तो इसी तरह बहनों शिक्षा का भी जो है, अगर हमने पढ़ाई नहीं की, हमारी परिस्थितियां या कोई भी परेशानी की वजह से हम नहीं पढ़ पाए, तो ये ना माने कि जो है अब ये पढ़ाई नहीं शुरू हो सकती है, क्योंकि अक्सर ये बड़े बुजुर्ग ये सोचकर पढ़ना शुरू नहीं करते ना कि अब इस उम्र में कैसे पढ़ाई होगी, या ये भी सोच होती है ना कि लोग क्या कहेंगे, अब देखो अब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें ये विश्वास हमें दिलाना है ना कि साक्षरता की ओर अगर वो आगे बढ़ते हैं, पढ़ना लिखना अगर वो शुरू करते हैं, तो इससे उनका कितना लाभ होगा। साक्षर होने पर उन्हें अपने आप पर गर्व होगा कि हाँ देखो मैं ये पढ़ लेता हूँ, बैंक के काम है या कहीं नाम पढ़ना है, कोई भी चीज़ है, मोबाइल में कितनी सारी जानकारियाँ होती हैं या बहुत चीज़ें हैं जहाँ हमें साइन करना होता है, हस्ताक्षर करने होते हैं। तो बहुत से हमारे भाई बहन बुजुर्ग हैं जो नहीं कर पाते हैं, अगर ये चीज़ उनके अंदर आ जाती है, वो इसमें सक्षम हो जाते हैं, तो सोचिए कितनी गर्व की बात होगी। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आप किसी वजह से आप मतलब नहीं पढ़ाई कर पाए, तो आज से ही ये जो है आप शुरुआत कर सकते हैं, और घर के बच्चे हैं या परिवार के कोई सदस्य हैं, हम में से कोई भी जो पढ़ा लिखा है, हमें चाहिए कि हम समय निकालें और अपने आसपास के ऐसे लोग जो है उनकी मदद करें पढ़ाई लिखाई में, वो पढ़ना लिखना सीखें। और भाई कोशिश तो दोनों तरफ की होगी तभी कामयाबी मिलेगी, और हमारे आसपास जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं ना, तो उनको जो है शिक्षा से जोड़ना और उनको शिक्षित करने में उनकी पूरी मदद करना हम सभी की जिम्मेदारी है, और जो भाई पढ़ नहीं पाए उनका हमें हाथ थामना है। शुरुआत मानते हैं कि छोटी हो सकती है, ऐसा लगेगा ये तो बहुत कठिन काम है भाई, जो कभी जिसने पढ़ाई नहीं की है और वो शुरुआत करने जा रहा है तो थोड़ा तो मुश्किल लगेगा, लेकिन मुश्किल देखिए कोई भी चीज़ हम लोग सीखते हैं तो कितना आसान हो जाता है जब हमें वो चीज़ आ जाती है। और एक बात है ना कि कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कई बार जो हमारे आसपास जो लोग हैं और उनको अगर पढ़ना नहीं आ रहा है, वो कुछ गलत सा लिख दे रहे हैं, कुछ गलत बोल दे रहे हैं, तो हमें उनका जो है कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, और उन्हें सीखने का मौका देना चाहिए, उनकी गलतियों पर हंसने के बजाय उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। और किसी को भी अगर हम साक्षर बनाने में उसकी मदद कर रहे हैं, तो भाई ये केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं होगा कि हम उनको पढ़ाना लिखाना सिखा रहे हैं, एक बहुत बड़ा मतलब काम है ये कि हम समझिए उनको आत्मनिर्भर बनाने में जो है उनकी मदद कर रहे हैं। और जो पढ़ नहीं पाए उन्हें हम साथ लाएंगे, साक्षरता की रोशनी से उनका जीवन सजाएंगे, और इसकी शुरुआत अगर हम अपनी मातृभाषा जो है हमारी है, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा जो भी हमें मतलब हम जो सहज जिसमें महसूस करते हैं, अगर उसमें अगर इसकी शुरुआत होती है, तो ये प्रक्रिया जो है ना बहुत ही सहज और प्रभावी इसको बना देती है, क्योंकि हमारी जो स्थानीय भाषा होती है ना उसकी एक अलग ही खुशबू होती है, एक अपनापन होता है ना उसमें, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं कोई चीज़ पढ़ते हैं तो लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है, और वही दूसरी भाषा में अगर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरी भाषा को नहीं समझना है नहीं पढ़ना है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन अपनी जो स्थानीय भाषा में मतलब हमारी है वो मातृभाषा है वो हमें आनी ही चाहिए, उसमें ज्ञान की शुरुआत पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करते हैं तो हमें ज़्यादा वो आसान लगने लगती है, और हमारी स्थानीय भाषा हमें पहचान तो दिलाती है, आत्मविश्वास और अपनी संस्कृति से जुड़ने का भी अवसर हमें देती है। और देखिए बहनों आज इसी विषय से जुड़ी हम एक वार्ता भी लेकर आए हैं, तो क्यों ना इसको सुन लिया जाए, जिसका विषय है नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाएं, और ये जानकारी देंगी अनामिका पांडे, तो चलिए सुनते हैं। ये
1: सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अर्थ ही शिक्षा है। शिक्षा समाज में लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ज्ञान और कौशल में वृद्धि करके मनुष्य को योग्य नागरिक बनाना है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में सुधार लाना और उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास करना है। किसी भी समाज में, क्षेत्र या देश में भाषा के लुप्त होने या संकटग्रस्त होने के परिणाम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दूरगामी होते हैं। इसका परिणाम वर्तमान के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। हर भाषा का प्रत्येक शब्द अपने साथ स्वयं की संस्कृति से जुड़ी एक लंबी गौरवशाली परंपरा को लेकर चलता है। इस प्रकार जब भी कोई भाषा लुप्त होती है तो उसका सीधा असर उस देश की संस्कृति पर

पड़ता है और यह खतरा उस संस्कृति के अस्तित्व को संकट में डाल देता है। संस्कृति और भाषा के उस संचित ज्ञान को बचाने के लिए भाषा के संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है। समुचित देखभाल और संरक्षण के अभाव के चलते पिछले 50 सालों में भारत में 220 भाषाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया है। साथ ही साथ यूनेस्को ने कहा है, अगर भाषाओं के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में 197 भारतीय भाषाएं समाप्त हो जाएंगी। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं, विशेष तौर पर मातृभाषा या स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत की नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई एक उत्कृष्ट पहल है। भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना देश के हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और सरकार की योजना है वह नई शिक्षा नीति को वर्ष 2030 तक पूर्ण रूप से लागू कर दे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा नीति वर्ष 1968 और 1986 में बनाई गई थी, जो विशेष रूप से लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी प्रधान शिक्षा नीति पर आधारित थी। आगे चलकर उसमें कुछ संशोधन भी हुए, लेकिन उनका मूल ढांचा अंग्रेजी माध्यम की भाषा पर ही टिका रहा। वर्ष 1986 की शिक्षा नीति में खामियों के कारण बच्चा ज्ञान तो हासिल कर रहा था, लेकिन उस ज्ञान से उसके लिए भविष्य में रोजगार के पर्याप्त अवसर विकसित नहीं हो पा रहे थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसमें भारत के विकास की आने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने का संपूर्ण लेखा जोखा है। नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अनिवार्य माध्यम बनाने की बात कही गई है, जो भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए बड़ा और निर्णायक कदम है। इसके अलावा भारत की सभी भाषाओं के साथ सामंजस्य और संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। दुनिया के कई देश अपनी भाषा परंपरा और संस्कृति में शिक्षित हो रहे हैं और उनको बढ़ावा भी दे रहे हैं, जिसका पूरा लाभ उन्हें मिल रहा है। भारत में प्राचीन काल से शिक्षा की समृद्ध और प्रभावशाली परंपरा रही है, जो अपनी ज्ञान परंपरा से विश्व को आलोकित करता रहा है। जिस देश में एक समय कभी तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आज उस देश के किसी भी विश्वविद्यालय का विश्व के शीर्ष स्थानों में कोई स्थान नहीं है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के नष्ट होने से शिक्षा व्यवस्था में क्षरण होता गया, जो आज भी लगातार जारी है। नई शिक्षा नीति को वर्ष 2020 में लागू किया गया। इस नीति में मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया गया। अभी तक लागू की गई शिक्षा नीतियों में जहां एक तरफ मातृभाषा के साथ अंग्रेजी और संस्कृत के अध्ययन पर भी बल दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के बारे में बहुत कुछ विस्तार के साथ चर्चा की गई है। भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन तथा अनुवाद के लिए नई शिक्षा नीति के अध्याय 4 और अध्याय 22 दोनों में ही प्रावधान है। अध्याय 4 में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाया जाना निश्चित किया गया है। साथ ही साथ आगे की शिक्षा के लिए जहां तक संभव हो स्थानीय भाषाओं को ही माध्यम बनाया जाए, ऐसा प्रयास किया गया है। स्थानीय भाषाओं में शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा जाता है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को ज्यादा तेजी से सीखते हैं। कक्षा 5 से शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से स्थानीय या मातृभाषा होनी चाहिए, जो स्थानीय भाषाओं के लिए एक बेहतर अवसर होगा। इससे इन भाषाओं का संरक्षण भी सुनिश्चित हो जाएगा। सरकारी स्कूलों के साथ यदि निजी स्कूल भी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई करेंगे तो आने वाले वर्षों में इसका व्यापक असर दिखाई देगा। वर्ष 2005 में यूनेस्को ने अपनी ग्लोबल रिपोर्ट में कहा, यदि एक बार विषय की मूल अवधारणा को अपनी भाषा में समझ लिया जाए तो उच्चतर शिक्षा में किसी भी भाषा में अध्ययन करना बेहद आसान हो जाएगा। विश्व के सभी भाषाविद या जानकार लोगों का कहना है कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने से बच्चों की मौलिक और रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करने में ज्यादा सहायता मिलती है। इससे उनकी सृजनशीलता और कल्पनाशीलता को बेहतर बनाया जा सकता है। अपनी मातृभाषा में सीखने वाले बच्चे दूसरों

0: की तुलना में अधिक रचनात्मक और तार्किक होते हैं। मातृभाषा के महत्व पर बोलते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, विदेशी भाषा में शिक्षा पाने से दिमाग पर जो दबाव पड़ता है वह हमारे बच्चे तो उठा सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। इस दबाव से वह दूसरा बोझ उठाने के लायक नहीं रह जाते। ऐसे में हमारी शिक्षा व्यवस्था के स्नातक कमजोर, निरुत्साही और नकलची बन जाते हैं। यूनेस्को की सिफारिश भी कहती है कि विविधतापूर्ण समुदाय में कम से कम 6 वर्षों तक मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मातृभाषा की शिक्षा के माध्यम से अलग दूसरी भाषा बोलने वाले मुख्य धारा से पीछे न छूट जाएं। नई शिक्षा नीति में भाषाओं का प्रावधान मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषाओं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर केंद्रित है। यह नीति बहुभाषाओं को बढ़ावा देती है, जिससे छात्र अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हैं और बेहतर सीख सकते हैं। बहुभाषा सांस्कृतिक संपदा मानी जाती है, जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। स्थानीय और मातृभाषा को शामिल करना बेहद समझदारी भरा और दूरदर्शी निर्णय है, लेकिन यह भी बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसी सांस्कृतिक पहल भारत की भाषाई और सांस्कृतिक एकता का उत्सव मनाती है, जो भारत के ऐतिहासिक संबंधों की प्रगाढ़ता को दर्शाते हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। सरकार का लक्ष्य सभी भारतीय भाषाओं, विशेषकर स्थानीय भाषाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि आधुनिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ हो। भाषा आधारित साहित्य उत्सव और पर्यटन जैसी पहलों का उद्देश्य भारत की विविधता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने मातृभाषा को लेकर कहा भी है कि जिस तरह हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते, ठीक उसी तरह अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ा जा सकता। स्थानीय भाषाओं या मातृभाषा की उन्नति और प्रगति तभी संभव है जब उसे प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार से जोड़ा जाए। इस बात को नई शिक्षा नीति में समझा गया और स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय और स्थानीय भाषाओं में प्रवीणता को रोजगार के अवसरों में सम्मिलित किया जाएगा। यह स्थानीय भाषाओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। विविध तरीकों से भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित, संवर्धित और संरक्षित करना नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। जब अन्य भारतीय भाषाओं को गौरव और पहचान मिलेगी तो स्वतः ही स्थानीय भाषाओं के सामने खड़ा संकट दूर हो जाएगा।
1: बहनों, अभी हमने सुनी ये वार्ता। विषय था नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाएं और वार्ताकार थी अनामिका पांडे। और बहनों, अब मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: बदलो बदलो, आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com
8: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के

0: फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
2: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: बहनों, रोजगार जो है ना वो केवल कमाई का साधन नहीं होता है, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भी पहचान होती है। जब हम अपने हुनर और मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ जो है पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। तो बहनों, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है ये ऐसी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई। और इस योजना में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। उन्हें रोजगार मिलने से, जो अगर हमारी जो बहनें हैं अगर उनको रोजगार मिलता है, काम मिलता है, उसके बदले पैसे मिलते हैं, तो इससे परिवार की आय बढ़ती है। जब उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जो है बनने का अवसर मिलता है, उनकी जिंदगी जो है वो संवर जाती है। और इस योजना की एक विशेषता है कि मजदूरी का जो भुगतान है वो नगद के साथ साथ खाद्यान्न के रूप में भी किया जाता है। इससे रोजगार के साथ खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलती है। और इसके अलावा रोजगार देने के साथ साथ गाँव में सार्वजनिक जो उपयोग की जो काम होते हैं वहाँ पे बहुत सारे सड़क बनने हैं, पुल बनने हैं, तो ये भी जो है बनता है। तो भाई ग्रामीण बुनियादी जो ढांचा है उसको भी मजबूती मिलती है और स्थानीय स्तर पर विकास के जो कार्य हैं वो बढ़ता है। तो इससे सबको सुविधाएं भी मिलती हैं, साथ में रोजगार भी मिलता है। तो बहुत ही जो है ये योजना लाभकारी है ग्रामीण जो है भाई बहनों के लिए। और देखो बहनों, अब अपने कार्यक्रम में अभी इसके बाद जो है हम ब्यूटी टिप्स से यानी सौंदर्य टिप्स जो है पे बात करेंगे कि बरसात के मौसम में त्वचा की देखभाल हम कैसे करें। लेकिन उससे पहले क्यों ना जो है अभी हम साक्षरता दिवस जो है पे हमने बात की, नई शिक्षा नीति पे बात की, तो शिक्षा से संबंधित जो है हमारी बहुत सारी बातें हुई, तो क्यों ना एक गीत भी हम लोग सुन लेते हैं, फिर जो है आगे का अपना जो सौंदर्य टिप्स है उस पर बात करते हैं।

बनो, बारिश का मौसम ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है ना, पर जो है वातावरण में बहुत नमी आ जाती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप भी बढ़ जाता है और त्वचा से जुड़ी जो बहुत सारी समस्याएं हैं ना वो भी सामने आने लगती हैं, और इसलिए त्वचा की एक्स्ट्रा जो है देखभाल की जरूरत हो जाती है। और त्वचा पर देखिए फोड़े, फुंसी, एक्ने, पिंपल्स, रैशेज हो जाते हैं, खुजली, तमाम तरह की परेशानी जैसे बढ़ने लगती है। और अगर हमारी त्वचा ऑयली है तब तो बारिश का मौसम मत पूछिए, त्वचा जो है और ज़्यादा ऑयली और चिपचिपी हो जाती है। तो ऐसे में चेहरे को अगर हम अच्छी तरह जो है साफ रखते हैं तो त्वचा तब जो है अच्छी रहती है। अगर गंदगी, धूल मिट्टी लगी रह जाती है ना तो एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, तमाम तरह की समस्याएं जो है देखने को मिलती हैं। तो इस बात का हमें खास जो है ध्यान रखना है कि हमको चेहरे को अपने साफ रखना है। और एक चीज और है कि हाथों से अपने चेहरे को बार बार छूना भी नहीं है, जैसे आदत होती है ना बार बार चेहरे पे हाथ को ले जाते हैं, तो हाथ की जो गंदगी है वो चेहरे के जो पोर्स होते हैं ना उसमें जो है वो बैक्टीरिया बैठ जाते हैं, फिर दाने वगैरह, पिंपल्स, एक्ने, ये सब की परेशानी बढ़ जाती है। तो कुछ फेस पैक वगैरह अगर हम डेली में अगर यूज करते हैं हफ्ते में 2-3 बार तो ये जो ऑयली होती है स्किन या चिपचिपी जो हो जाती है तो ये इससे जो है कम होगा, चिपचिपापन, तैलीयता कम होगी और स्किन में अलग तरह की एक चमक आएगी। तो उसके लिए बहनों मुल्तानी मिट्टी ले लें 1 चम्मच और चंदन पाउडर, थोड़ा सा बेसन और रोज वाटर या तो सादे पानी से एक पेस्ट बना ले, गाढ़ा पेस्ट, और इसको चेहरे, साफ चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट 15 मिनट रख के हल्की मसाज करके इसको सादे पानी से धुल लें। तो बहनों ये है तो छोटा सा उपाय कि बहुत आसान है ना, देखने में लग रहा है कि हाँ इसको क्या करना, बस मिला

0: लेना है, लगा लेना है, लेकिन रेगुलर करने में थोड़ा आलस आती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आलस नहीं करनी है, इसको अपनाना है। और देखिए हमारे कार्यक्रम का समय भी अब समाप्त होने को है, तो मिलेंगे अगले नारी जगत कार्यक्रम में, तब तक के लिए पुष्पा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम नारी जगत। ये आकाशवाणी अयोध्या है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जीवन में सुख कितना मिला ये मत गिनिए, बल्कि ये देखिए कि आपके कारण कितने दिलों में मुस्कान आई, यही सच्ची कमाई है। श्रोताओं, ये सुविचार भेजा था आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह चंघेल, मूरज चंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष चंघेल और नंदिनी चंघेल जी ने। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। मोताला महाराष्ट्र से रतनमाला सुरलकर, विजय सुरलकर जी लिखते हैं, ज्ञान शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर उमंग कार्यक्रम सुनना अब हमारी आदत बन चुका है। प्रत्येक प्रस्तुति कुछ नया सीखने का अवसर देती है और सामान्य ज्ञान में निरंतर वृद्धि करती है। उपयोगी जानकारी, रोचक विषयों और उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण ये कार्यक्रम श्रोताओं के लिए सचमुच प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। विमलेश जी, अजीत जी और उमंग की पूरी टीम को इस सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और वारिस अली खान, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, तहसील ठियोग जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी, आप सबके सुंदर संदेशों के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं ये भी जानिए श्रृंखला में हर दम हम आपके लिए लेकर आते हैं रोचक जानकारियां, विचार विमर्श और प्रेरक प्रसंग। इस सप्ताह हम फिर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं कई प्रेरक प्रसंग। आज हम अपने उमंग कार्यक्रम के प्रिय श्रोताओं के लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। इस कहानी का संदर्भ एनसीईआरटी की कक्षा 6 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 में संदर्भित है। जरा अंदाजा लगाइए श्रोताओं, मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की, भारत की उस साहसी महिला की जिसने अपना एक पैर खोने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। आइए जानते हैं कौन है अरुणिमा सिन्हा, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। उनका जीवन खेल, सपनों और आगे बढ़ने की उम्मीदों से भरा था, लेकिन वर्ष 2011 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 11 अप्रैल 2011 की बात है। वो CISF की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट करने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें इसी दौरान

0: चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वे रेलवे ट्रैक पर गिर गईं और दुर्भाग्य से दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक पैर काटना पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को यूं ही समाप्त नहीं होने देंगी। अरुणिमा के सामने कठिनाइयां कम नहीं थीं। उन्हें कृत्रिम पैर लगाना था, उन्हें फिर से चलने का अभ्यास करना था। धीरे धीरे वे चलना सीख गईं और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शरीर में दर्द था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो ऐसी परिस्थिति में एक आम इंसान नहीं ले सकता। उन्होंने पर्वतारोहण सीखने का निर्णय लिया। शायद वे दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती थीं कि दुर्घटना ने उनका शरीर बदला है, लेकिन उनके मनोबल को नहीं। फिर क्या था श्रोताओं, उन्होंने प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल से संपर्क किया और प्रशिक्षण शुरू किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी फिर से चलना सीख रहा था, वो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण आसान नहीं था। कृत्रिम पैर के साथ चलना, चढ़ना, गिरना और फिर उठना, हर कदम एक चुनौती था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आ ही गया वो दिन। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया, और वो भी एक पैर खोने के मात्र 2 साल बाद। श्रोताओं, हम तो कहना चाहेंगे कि वहां पहुंचकर उन्होंने केवल एवरेस्ट पर विजय नहीं पाई थी, उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके शरीर से बढ़कर उसके संकल्प में होती है। विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूंगी, बहुत कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार संकल्प करके तो देखिए। इसलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्रोता मित्रों, अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई आने के बाद भी जीवन आगे बढ़ सकता है। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। ताजी जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को लगातार फॉलो करें। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ, और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है छुपन छुपाई। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम मनोरंजक ढंग से इस पारंपरिक खेल के बारे में बताता है।
1: चलो चलो चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं।
2: छुपन छुपाई, छुपन छुपाई, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे।
4: लेकिन डाइन कौन देगा?
5: जी, हर बार मैं ही डाइन देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ।
3: उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला।
5: 1, 2, 3 सब छुप गए ना। 98, 99, 100 लगता है सब छुप गए। चलो अब मैं ढूंढता हूँ सबको। अरे इधर तो कोई भी नहीं है। दरवाजे के पीछे देखता हूँ, यहाँ पक्का कोई ना कोई छुपा होगा।

0: मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया।
1: मोहित,
2: अरे नहीं, हर बार मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाता हूँ।
0: जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा।
1: अब मैं कमरे में देखता हूँ, लगता है अलमारी के पीछे कोई छुपा है।
0: बबली अलमारी के पीछे मिल गई।
1: बबली, तुम अलमारी के पीछे हो?
3: धप्पा!
1: मोहित और बबली दोनों आउट हो गए।
0: मारिया पलंग के नीचे मिल गई।
1: मारिया, तुम पलंग के नीचे हो?
4: नहीं, मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ।
3: अंदर छुपाओ।
1: मारिया,
3: धप्पा!
4: अरे नहीं।
0: उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई।
5: दादी, दादी, दादी, हिला मत, जीत आया है, वो मेरे धप्पा बोल देगा।
1: लगता है सिमरन दादी के पीछे छुपी हुई है, अभी जाके देखता हूँ। और ये गया, ये
3: सिमरन धप्पा,
4: फिर पकड़ लिया।
1: अब बची है नाजिया, कहाँ हो सकती है?
0: जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा।

0: यहाँ तो नहीं है, पेड़ के पीछे देखता हूँ, इधर भी नहीं है। अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा।
0: अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया।
0: जी धप्पा! ओहो, अरे नहीं, मेरी फिर से बारी आ गई।
1: जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया।
0: एक दो तीन।
2: छुपन छुपाई है ना मजेदार खेल। तो बच्चों अब सोचो और जरा बताओ कि छुपन छुपाई खेलते समय तुम अपने घर में कहां कहां छिप सकते हो, और यदि खेलते खेलते चोट लग जाए तो तुम क्या करोगे। और हाँ ये भी मालूम करो कि कौन कौन से खेल हैं जो घरों में खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल हैं जो बाहर खेले जाते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छुपन छुपाई। छुपन छुपाई के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम छुपी प्रतिभा। इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि हर बच्चा अनोखा है और उसमें बहुत सी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। जरूरत है उन प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने की।
4: साथियों पिछले कार्यक्रम में हमने ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दी थी जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हमने खासकर उन बच्चों के विषय में चर्चा की थी जिनकी भिन्नता छोटी उम्र में ही नजर आ जाती है, पर उनमें से अधिकांश देखने में और बच्चों के समान ही लगते हैं और उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई, सामाजिक एवं शारीरिक गतिविधियों में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और अध्यापक गण उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं जिससे कि ऐसे बच्चों का जीवन बेहतर और सार्थक हो सके।

0: तो आइए आज चलते हैं एक स्कूल में। इस स्कूल के शिक्षक बच्चों के विकास में गहरी रुचि रखते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आखिर क्यों, उसकी क्या समस्या है और कैसे उस बच्चे की मदद की जा सकती है। साथियों, इस स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं, तो शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की समस्याओं के विषय में किसी डॉक्टर की राय ली जाए और इस अवसर पर इन बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और यथासंभव उनका समाधान भी खोजा जाए। और एक दिन
1: साथियों, आज मैं पूरे स्कूल की ओर से डॉक्टर पुष्पा का स्वागत करता हूँ।
2: आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।
3: नमस्कार।
1: आपका धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और हम आशा करते हैं कि आपके परामर्श और विस्तृत अनुभव का हम सबको अवश्य लाभ मिलेगा कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। और साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय के सभी उन अध्यापकों का जिनकी रुचि और प्रयास के कारण यह संभव हो पाया। आज हमारे बीच में ऐसे विशेष बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और हां, सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे। इन्हें कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन ये कई बातों में दूसरे बच्चों से बहुत आगे हैं। तो चलिए आज की इस विशेष बैठक को शुरू करते हैं। रेनू जी, आप
3: जी जी
1: आप कह रही थी कि आपकी कक्षा में एक बच्ची है मीना, आप मीना के बारे में हमें कुछ बताइए।
4: जी, मैं आपको इस बच्ची मीना से मिलवाती हूँ। देखिए, मेरी मीना पढ़ाई में बहुत तेज है, इसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं और ये इस बार भी चौथी कक्षा में प्रथम आई है। और हाँ, इसकी लिखाई भी बहुत सुंदर है। मीना
3: जी,
4: तुम्हें पढ़ाई कैसी लगती है?
3: दीदी, मुझे तो पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कूल आना और पढ़ना बहुत पसंद है।
4: और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है?
3: जी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और बच्चों की तरह तेज नहीं दौड़ पाती, मेरे एक पैर में तकलीफ है।
5: अच्छा, ये बताइए, ऐसा मीना के साथ कब से है? क्या इसे बचपन से ही ये तकलीफ है?
4: डॉक्टर पुष्पा, इसकी माँ ने मुझे बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर 2 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई। इसको तेज बुखार हो गया और इसके इलाज में देर हो गई। उसके बाद इसके बाएं पैर की ताकत जाती रही।
5: अच्छा।
4: जिससे ये स्वाभाविक रूप से चलने फिरने से असमर्थ हो गई। डॉक्टर ने बाद में बताया कि मीना को पोलियो हो गया है।
1: डॉक्टर पुष्पा, पोलियो के विषय में हमें जरा विस्तार से बताएंगे?
5: देखिए, पोलियो एक ऐसा रोग है जो केवल हाथों या पैरों पर असर करता है।
1: अच्छा।
5: इसका असर जिस हाथ या पैर पर होता है उसका विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। पोलियो से प्रभावित हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें शक्ति कम हो जाती है।
4: डॉक्टर पुष्पा, क्या पोलियो का असर देखने सुनने या बोलने पर भी होता है?
5: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें देखने, बोलने, सुनने और समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए
4: जी,
5: क्या मीना के माँ बाप मीना को बाद में भी डॉक्टर के पास ले जाते थे?
4: जी हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया था कि वे लोग उसे ले तो जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पर इसके पहले ही उसके बाएं पैर की हड्डियां बिल्कुल पतली हो गई थी, उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही।

0: रही और इसका बायां पैर इसके दाएं पैर से छोटा हो गया।
1: देखिए, समय से दवाई न लेने से या समय पर इलाज न कराने से ये समस्या आ सकती है
2: जी।
1: अब इसीलिए हमारी सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह पोस्टर इश्तिहार लगवाए हैं। आपने रेडियो टीवी पर सुना होगा कि आजकल तो सरकार ने पोलियो हटाओ अभियान चलाया है जिसमें 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है।
0: जी हाँ, पर डॉक्टर पुष्पा, अब हम मीना की मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
1: जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो कक्षा में और बच्चों की तरह पढ़ सकती है। हाँ, शारीरिक क्रियाओं में या को करिकुलर एक्टिविटीज में उसको इस प्रकार शामिल कीजिए कि वो कार्य उसकी क्षमता के अनुसार हो।
3: जी। नीलम जी। तुमने कहा था कि तुम्हारी क्लास में सरिता है जिसके बारे में तुम चर्चा करना चाहती हो।
4: जी डॉक्टर पुष्पा, मेरी कक्षा में इस सरिता ने अभी दाखिला लिया है। ये व्हील चेयर में आती है, ये 6ठी कक्षा में पढ़ती है और ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है।
1: अच्छा, एक बात बताओ
4: जी,
1: सरिता व्हील चेयर का प्रयोग कब से करती है?
4: इसकी माँ ने बताया था कि व्हील चेयर का प्रयोग इसने इसी साल से शुरू किया है। 4 साल की उम्र तक तो सरिता और बच्चों की तरह खेल कूद में बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे इसके पैरों में कमजोरी आती गई और फिर इसे इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ा।
1: सरिता, तुम्हें और भी कोई परेशानी है?
5: हाँ मैडम जी, मुझे हाथ में कमजोरी लगती है और गर्दन घुमाने में कठिनाई होती है।
4: डॉक्टर पुष्पा, कहीं ये समस्या बढ़ तो नहीं रही है? क्या इससे इसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा?
1: हाँ, ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अवस्था का शिकार है जिसमें मस्कुलर डिसफंक्शन यानी गत्यात्मक विकार होता है और जो हर बच्चे में अलग अलग दिखाई देता है।
4: जी,
1: ऐसे बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। इस अवस्था में धीरे धीरे सारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं। पर इसका समझने की योग्यता और पढ़ाई लिखाई पर असर नहीं पड़ता।
4: अच्छा,
1: ऐसे बच्चे 12वीं तक और उसके आगे भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
4: ऐसा विकार होता क्यों है?
1: ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चों के खून में कुछ रसायन जिसको CPK कहते हैं, उसकी मात्रा ज्यादा होती है।
4: हम इसमें बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं डॉक्टर पुष्पा?
1: सरिता, अब तुम अपनी कक्षा में जा सकती हो। हाँ
5: जी मैडम।
1: हाँ, तो इनकी मदद करने के लिए आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दे।
4: जी।
1: इन बच्चों की आयु सीमित होती है, इसलिए उनसे उच्च पढ़ाई और नौकरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
4: जी।
1: केवल बच्चों को और उनके माता पिता को प्रोत्साहन देकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और बच्चों की तरह इनको काम देते रहें।
4: जी ठीक है।
3: हाँ दीपिका जी, आप भी कुछ किसी बच्चे के बारे में बात करना चाहती थी?
4: जी डॉक्टर पुष्पा, ये सीमा है, ये भी सरिता की तरह पहिए वाली कुर्सी पर है। सीमा, ये डॉक्टर पुष्पा हैं।
6: नमस्ते।
3: डॉक्टर पुष्पा, ये हमारे स्कूल की अध्यापिका रेनु जी है ना, उनकी बहन की बेटी है।
1: अच्छा अच्छा। सीमा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तुम?
6: मैं 7वीं में पढ़ती हूँ।
1: रेनु जी, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए।
0: डॉक्टर पुष्पा, मैंने और नीलम जी ने इसकी माँ से विस्तार में बातचीत की है।
1: अच्छा।
0: ये जब खड़ी होने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। बचपन से ही हर काम को सीखने में पीछे रह जाती है। जब ये 10 महीने की थी तब भी अपनी गर्दन अन्य बच्चों की तरह ठीक से संभाल नहीं पाती थी और अब भी ये ठीक से चल नहीं सकती। हर समय इसको इस पहिए वाली कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है।
4: डॉक्टर पुष्पा, सीमा बहुत होनहार है, ये बहुत कोशिश करती है कि और बच्चों के साथ गेंद से खेले, लेकिन ये गेंद पकड़ ही नहीं पाती है, गेंद इसके हाथ से गिर जाती है।

0: जिस तरह से और बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं उस तरह ये खा नहीं सकती। इसको खाने में समय लगता है, कभी कभी तो इसके हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं।
1: अच्छा,
0: जब हाथ में अकड़न ज्यादा हो जाती है तो इसके हाथ से खाना गिर जाता है।
2: डॉक्टर पुष्पा, कभी कभी सीमा के मुंह से लार भी टपकती है और चेहरे की मांसपेशियां भी अकड़ सी जाती हैं।
0: शायद इसलिए ही दूसरे बच्चे इसको कुछ अलग तरह से देखते हैं।
2: जी,
0: कुछ लोगों का शायद ये मानना है कि ये कोई छूत की बीमारी ना हो,
1: पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
2: सीमा, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम्हें क्लास में जो काम करने के लिए कहा जाता है वो सब समझ में आता है क्या? ये सब डॉक्टर पुष्पा को बताओ।
3: हाँ, समझ तो आता है पर लिख नहीं सकती।
0: इसे देखने और बोलने में कुछ परेशानी होती है। सवाल तो कर लेती है पर उत्तर देने में कठिनाई होती है।
1: अच्छा,
0: और ये साफ साफ बोल नहीं पाती, इसे लोग इसकी बात ठीक ठीक समझ नहीं पाते।
2: रेनू जी, इसको ये समस्या कब से है?
0: ये बहुत ही छोटी थी, करीब 4 महीने की रही होगी, तब ये पालने से गिर पड़ी थी।
1: अच्छा,
0: इसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी, शायद हो सकता है ये चोट का प्रभाव हो।
2: डॉक्टर पुष्पा, इसको समस्या क्या है?
1: ऐसा लगता है कि ये दिमागी पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। इसको केवल शारीरिक विकलांगता ही है, क्योंकि ये 7वीं कक्षा में पढ़ती है तो इसके दिमाग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
2: डॉक्टर पुष्पा, हम इसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
1: देखिए, इसको हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराइए।
4: जी, आज हमने 3 प्रकार की गत्यात्मक विकलांगताओं के बारे में जानकारी हासिल की।
2: जी,
4: पहली पोलियो, दूसरी मांसपेशी विकृति और तीसरी मानसिक पक्षाघात।
2: डॉक्टर पुष्पा, आप इसके बारे में कोई उपाय बताएंगे?
1: इन बच्चों के लिए कुछ अन्य मदद की जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि संसाधन यंत्र आदि, अच्छा आहार और धीमी गति से पढ़ाना।
4: डॉक्टर पुष्पा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं।
1: अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: नमस्कार।
5: तो साथियों, डॉक्टर पुष्पा ने आज के वार्तालाप में हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम इनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराना। इसके अलावा यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गत्यात्मक विकलांगता अन्य प्रकार की भी हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कठिनाई होने से, जोड़ों के दर्द, विटामिन डी की कमी, जन्म के साथ बच्चों में सख्त जोड़ों का होना, शरीर के किसी अंग का गलत जगह होना, देरी से पैदा होना, किसी दुर्घटना में अंग का कट जाना, कोई अंग न होना इत्यादि। साथियों, याद रखिए, इन बच्चों को हमेशा आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए।
6: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा, यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
7: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
6: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
8: चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
9: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ

0: बाद कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हम आकाशवाणी अयोध्या से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा।
3: तो अब घड़ी की ओर देखिए, एक अंतराल का समय हो चुका है, तो अंतराल के बाद वापस कुछ बातें लेकर हम आते हैं।

0: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं सखी सहेली की इस महफिल में और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां देख रही हूँ तो लगातार ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रोता भी बहुत पढ़ते हैं,
1: वो हल्की फुल्की बातों में उन्होंने लिखा है ना,
0: पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं और हमारी एक सखी है जो नियमित रूप से पढ़ती भी रहती है, लिखती भी रहती है कुछ कुछ, उनकी एक टिप्पणी है मेरे सामने दिख रही है तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने लिखा है कि बचपन में नंदन, चंपक और चंदा मामा पढ़ते पढ़ते कब अखबार पढ़ना जीवन में शामिल हो गया पता ही नहीं चला। हर माता पिता को अपने बच्चों को बचपन से ही स्कूली किताबों के अलावा बाल साहित्य से परिचय जरूर करवाना चाहिए। किताबें शब्द दर शब्द दिखाती हैं आईना और अंधेरे में थाम लेती है हाथ। कहने भर को नहीं, किताबें सच में हमारी सच्ची दोस्त हैं और अखबार हमें देश दुनिया की खबर से अपडेट रखता है, मगर अब आज का जो जमाना है वहाँ बच्चे कंप्यूटर की स्क्रीन पर अक्षरों की सरगोशियों के साथ डूबते उतराते रहते हैं, शायद भी नहीं जानते कि कागज नहीं रखेंगे शब्दों को बांधकर, कागज ही रखेंगे शब्दों को बांधकर। मंजरी जी, आपको याद होगा जब हम कहीं यात्रा किया करते थे, इनकी इन पत्रिकाओं के नाम से याद आ गया कि जब यात्रा के लिए ट्रेन का इंतजार होता था तो खास तौर से पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता था, ये सारी मैगजीन चंदन, चंपक, नंदन और चंदा मामा वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी पत्रिकाएं, और स्टेशन पर बुक स्टॉल हुआ करते थे तो देखते थे कि अभी कितना टाइम है, दौड़कर जाते थे और किताबों के वाले स्टॉल पर खड़े होकर वहां पर ये सारी पत्रिकाएं जो नई आई हुई होती थी वो ले लेते थे। अखबार अपने घर में जो आता था उसके अलावा जो दो तीन अखबार और होते थे लेके बंडल बना के रख लिया। अब ट्रेन के इंतजार के लिए कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से सीट पर बैठकर वो पढ़ाई होती थी।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। और हमारे भी घर में भी ऐसे ही होता था कि हम लोग जाते थे तो तुरंत ले लेते बहुत सारी किताबें, और पहले तो फोटो देखा जाता था किताबों की, उसके बाद फिर जो कहानी चित्र अच्छा लगता था उस हिसाब से उस नंदन या चंपक की कहानी पढ़ी जाती थी। और कई बार तो भूल गए लेना, गाड़ी चल दी और नहीं ले पाए किताब, तो बोगी में अगर कोई बच्चा किताब पढ़ रहा है तो बस उसके बगल में बैठना है।
0: उन दिनों बोगी में भी बेचने भी आ जाते
1: भी थे
0: और कई बार वो इन पत्रिकाओं की कहानियों का पहले अंत पढ़ते थे, देखिए अंत में क्या, शुरू का पढ़ा और सोचते थे जल्दी से अंत क्या हुआ, अंत क्या हुआ, ये जिज्ञासा होती थी तो दौड़कर अंत पढ़ लेते थे।
1: मेरी तो आदत थी ममता जी, मैं तो बगल वाला जो बच्चा पढ़ता था ना बस उसी में आंखें ऐसे उसके पेज पे डाल के फटाफट पढ़ते रहते थे, कहीं ये पन्ना ना पलट दे। तो इस तरह की बहुत सारी यादें शामिल हो जाती हैं। और देखिए हमारे साथी भी लिखते हैं कि हम तो उस जनरेशन के हैं जब अखबार का टुकड़ा में अखबार के टुकड़े में उड़िया में बनाकर कोई सामान किराना काटा था, मतलब पुड़िया जो बनाते थे उससे अखबार के कोने से, तो उसको खोलकर पढ़ लेते थे, और अगर फिल्म संबंधी हो तो

0: पूछे मत, उसे अच्छे से सहेज कर पढ़ा जाता था। हमारे उस सुनहरे दौर में किताब पढ़ना प्रिय मनोरंजन का साधन होता था और ज्ञान वृद्धि भी होता था। रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत आपके ज्ञान, शब्दावली और मानसिक एकाग्रता को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका होता था। और देश दुनिया की जो खबरें होती थी वो तो ये पढ़ती ही पढ़ती थी।
1: और ये जो पढ़ने की बात है, इससे इनकी बात से एक बात और याद आई कि समोसे का जो रैपर होता था उसमें कुछ कई बार लघु कथा लिखी होती थी या कोई अलग से चुटकुला या
0: कार्टून का भी रहता
1: था, तो वो भी हम लोग पढ़ डालते थे। और चुरमुरे में भी जो अखबार का या किसी पत्रिका का कुछ लिखा हुआ होता था, तो चुरमुरे में क्या होता था, गीला हो जाता था, तो खाने के बाद वो गीले वाले हिस्से को हम उठा उठा कर ऊपर अगल बगल थोड़ा उसको टेढ़ा करके तिरछा करके देखते थे कि इसमें क्या लिखा था, और कुछ कुछ अटकलें लगा लेते थे कि ये होगा इसमें।
0: लेकिन शिक्षा का यही फायदा हुआ ना, कहीं भी कुछ लिखा दिखा और पढ़ने लग गए,
1: साथ में पढ़ने का शौक, क्योंकि उस समय पढ़ना ही पढ़ना था और कुछ माध्यम नहीं होता था, या फिर आप खेलिए, ये सब मोबाइल और टेलीविजन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप ये सब नहीं था, तो ये बहुत बड़ी सुविधा थी और एक तरह से ये किताबों से जोड़ने का माध्यम भी था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आपने जो अखबार में पूछा है कलम पढ़ने का, तो बचपन से मेरे पापा हम लोगों को सबसे पहले पेपर की हेडलाइन पढ़ना अनिवार्य होता था सुबह से, और उसके बाद एक जो कल माता था आज भी आता है,
0: कॉलम आया करता था,
1: यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जो कॉलम आता था आज भी आता है, जीवन दर्शन, और भी बहुत सारी बातें लिखी है मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ कुछ कॉलम होते हैं वो पढ़ना, और कॉलम पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी होता था। पापा शुरू से ही पेपर में फोल्ड करके रख देते थे कि वो सभी को पढ़ना जरूरी है, हम लोगों को पढ़ते पढ़ते ऐसी आदत हो गई। सचमुच जैसे बच्चों को हमें पढ़वाना होता है तो आज भी हम करते हैं, अखबार का वो हिस्सा या तो कैंची से काट कर या फिर वो फोल्ड करके दे देते हैं कि हाँ ये पढ़ना जरूरी है।
0: और ममता जी, अखबार में एक पहले चित्र निकला करता था, रंगीन चित्र रहता था या रंग भरो चित्र वाला रहता था, तो उस
1: वर्ग पहली होती
0: हाँ,
1: थी
0: हाँ, वो भी और रंग भरो वाला रहता था, तो उसको काट करके हम लोग, याद है कि बचपन में कॉपी में लगाते थे, फिर हमारे माता पिता कहते थे कि इसको सोचो और इससे सोच के कोई भी कहानी लिखो, तो वो हम लोग अपने शब्दों में छोटी मोटी कहानी 10-12 लाइन की लिख देते थे, फिर पढ़ते थे, वो लोग तो बताते थे कि यहाँ पे ये सही है यहाँ पे गलत है, तो वो लिखने का जो कला है वो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मतलब इसी तरह से देनी चाहिए,
1: इसी तरह से कल्पनाशीलता का विस्तार होता है, नहीं तो सब कुछ सामने आपके रखा होता है तो आपके सोचने समझने की शक्ति कम होती है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि किताब अखबार पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है और अखबार से हमें आसपास और देश विदेश की ताजा गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है और किताब पढ़ने से मनोरंजन भी होता है और बहुत ही विषय जाते हैं उसमें पढ़ने के लिए और कहानियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये लिखते हैं कि मैं बचपन से अखबार और किताबें पढ़ने का शौकीन रहा हूं, विभिन्न विषयों और लेखकों की किताबें मेरे लिए संग्रह में है, मेरे पास संग्रह में है, और यही शौक तेरे लड़के और अब पोती को भी है, पोती को गुड्डे गुड़ियों के खेल से ज्यादा किताबें पढ़ने का चस्का है। बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को किसी भी समय, आप अच्छा बच्चे रिजल्ट अच्छा लेके आते तब भी किताबें गिफ्ट करिए और गर्मियों की छुट्टी में किताबें उन्हें उपहार स्वरूप दीजिए, बर्थडे और उस पर तो आप दीजिए, तो बच्चों के पास उनके उम्र के हिसाब से किताबें दीजिए,
1: किताबों और अखबार से जानकारी आपकी बढ़ती है
0: जी।
1: और फिलहाल सुनिए ये गाना ताकि पहचान कर सके, आसमान के तारों की पहचान कर सके या फिर देश दुनिया के बारे में जान सके, बहुत कुछ किताबें देती हैं, तो किताबों से बच्चों को जोड़कर रखिए।

0: ममता जी हमारी एक साथी लिखती हैं कि पढ़ना तो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, अगर कभी कभी ज्यादा बिजी होती हूँ तो रात सोने से पहले पूरे 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो तभी वो सो पाती हैं। और न्यूज़पेपर भी सुबह जल्दी जल्दी पढ़ती हैं कि रात में उसको बाद में वो बारीकी से उसे पढ़ती हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि रोजाना अखबार और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत व्यक्ति के मानसिक विकास, ज्ञान में वृद्धि और भाषा सुधार के लिए बहुत आवश्यक है। अखबार और किताबें पढ़ने के लाभ है ज्ञान में वृद्धि, देश दुनिया की समसामयिक घटनाओं और नई जानकारियों से अपडेट, शब्दावली और भाषा में सुधार होता है, नए शब्द सीखने को मिलते हैं, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और छोटे छोटे लक्ष्य पैदा होते हैं। शुरुआत में दिन के केवल 10 से 15 मिनट पढ़ने के लिए निकालें और रुचि के अनुरूप विषय चुने। यहाँ पर ये कहना सचमुच बहुत जरूरी, इनकी टिप्पणी बहुत लंबी है तो संक्षेप में हमने पढ़ दी। यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है कि अगर पढ़ने में रुचि पैदा करनी है बच्चों में जी, आने वाली पीढ़ी में, तो जरूरी है कि रोचक कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए, तब उनमें रुचि पैदा होगी।
0: बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं ना कि ममता जी की जिस एज का बच्चा है उस एज की किताबें ही उनको दिलाई जाएं, तो उससे उस समय की उन्हें ज्ञान मिले। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि अखबार किताब पढ़ने की आदत हमारे घर पर सालों से हिंदी और इंग्लिश अखबार आता है, तो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। धर्म पत्नी को धार्मिक किताब पढ़ने की ज्यादा आदत है। मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाई की किताबों में ही अधिक समय जाता है और वैसे भी बच्चों का रुझान अखबार में कम और सोशल मीडिया के समाचारों में ज्यादा है। आज भी मैं अखबारों और किताबों को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और ममता जी, अखबार से जुड़ी मतलब ऐसी घरों में आदत होती है कि घर में अखबार आएगा तो सबसे पहले घर का कोई जो मुखिया होगा वही पेपर पढ़ता है, खोलता है, उसकी तह खोलता है। तो वो चीज मुझे मतलब लगती, जब अगर मैं कभी होती तो मुझे लगता है कि उस घर में मुझे लगता है पेपर आया तो हम ही पढ़ ले सबसे पहले। तो
1: और पहले ये संयुक्त परिवार हुआ करता था, बड़ा परिवार, तो होड़ भी लगती थी कि कौन पढ़ेगा पहले। अखबार वाला आया तो जल्दी से लेकर कि हम पहले एक नजर डाल लेते हैं। और पत्रिकाओं के लिए तो बहुत ज्यादा होड़ होती थी कि हाथ जिसके हाथ लगी है वो पत्रिका पहले पढ़ेगा। और उसमें पता नहीं एक अलग सा सुख होता था कि हम पहले पढ़ ले, क्योंकि वो जो खुशबू होती थी पन्नों की खुशबू, वो आकृष्ट किया करती थी।
0: वही मैं कहने वाली थी। और कई बार मैंने तो ऐसे ही किया कि अखबार बिल्कुल खोल के पढ़ लिया, फिर वापस वैसे ही फोल्ड करके रख दिया, तो सामने वाले को पता ही नहीं चला कि अखबार पढ़ा जा चुका
1: है। और पुराने अखबार का प्रयोग भी बड़ा अच्छा किया जाता था, पुराने अखबार निकाल कर किताबों पर कवर चढ़ाना, जो स्कूल की किताबें होती थी।

0: स्कूल कॉलेज की, वो तो अलग पेपर से पेपर चढ़ाया जाता था कवर के रूप में, लेकिन जो पत्रिकाएं होती थी उन पत्रिकाओं को भी हम सहेजने संभालने के लिए उसको कवर चढ़ा दिया करते थे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये जो संभालने की प्रवृत्ति है अब कहीं गुम हो रही है बच्चों में, ये हम सबको सिखाने की जरूरत है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह आते ही पढ़ने से लेकर सोने तक अखबार सिरहाने ही रहता और देश दुनिया की हर न्यूज से अपडेट रहना शौक था। मेरे स्टाफ के लोग भी मुझे चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा करते थे। हालांकि अब पढ़ना थोड़ा फेसबुक का शौक लगने और कम दिखाई देने के कारण कम हो गया है। फेसबुक का शौक अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो वो शौक हटा देना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि वैसे तो अखबार का संपादकीय पृष्ठ ही मेरा पसंदीदा है, पर मैं शुरुआत पहले पृष्ठ से ही करना पसंद करता हूँ और बाकायदा 1-2-3 पृष्ठ पढ़ती जाती हूँ, लिखती है, क्योंकि मुझे पता है कि संपादकीय पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा तो शायद बाकी छूट ना जाए, और संपादकीय के बगल वाले पृष्ठ पर कोई विशेष पृष्ठ भी हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य, फिल्म, कुकिंग या साहित्य से संबंधित, तो हम वही रह जाएंगे। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट से ये स्पोर्ट्स वाले पृष्ठ भी वो देखा करते थे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि किशोर अवस्था में मैं बस स्टैंड पर बस की राह देखने के लिए एक जगह ही खड़ा रहता था और वो जगह है बुक स्टॉल। स्टॉल में बुक टंगी होती थी, वो देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती थी क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मेरे पर्स में आज भी न्यूज़पेपर के वो पृष्ठ और पेन रखा ही रहता है जिसमें सुडोकू आता है और वर्ग पहली आती है। कभी डॉक्टर का वेट करना हो, कहीं भी समय मिलता है तो मैं उसको ही भरने लग जाती हूँ।
1: वैसे भी अखबार पढ़ने में महिलाओं को थोड़ा बादी में टाइम मिलता है, महिला जी, ममता जी, क्योंकि हमारे साथी लोग पहले अखबार पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो महिलाएं तो सुबह सुबह किचन और चाय इन सब में लगी रहती है, तो जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो पढ़े और अपनी आदत जरूर बनाए अखबार।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ जी, ये सभी बातें याद ताजा कर रही हैं। इतनी सुंदर तरह से लिफाफे को खोलते थे कि कुछ फट न जाए, जितना अधिक पढ़ सके पढ़ लें। और एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार किताब पढ़ने की आदत, हमारे घर पर सालों से हिंदी अखबार और इंग्लिश अखबार आते हैं जो हम सुबह भी पढ़ते हैं और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ता हूँ। और एक हमारी सखी जिन्होंने लिखा है कि स्कूल पढ़ने के समय इंदौर में थे, तब हमारे यहाँ नई दुनिया पेपर आता था और 12 या 15 सिनेमा हॉल थे। उस समय इंदौर में पेपर में क्रम से सिनेमा हॉल और उनमें लगी फिल्में और शो का समय दिया हुआ रहता था। सबसे पहले देखते थे राशिफल, फिर न्यूज, अब भास्कर में अखबार में सबसे पहले फ्रंट पेज की मुख्य समाचार पढ़ती हूँ और पूरे अखबार के संक्षिप्त लेख पढ़ती हूँ, फिर आराम से मैनेजमेंट, फंडा वगैरह वगैरह देखती हूँ।
1: सही बात,
0: राशिफल भी हम देखा करते थे,
1: तो
0: रोजाना वाला राशिफल,
1: रोजाना वाला
0: आज क्या होने वाला है।
1: जी जी।
0: और एक समय रंगों के बारे में आने लगा था तो वो भी देखते थे कि कौन सा वाला रंग शुभ होगा,
1: शुभ होगा। और साथ में जब जो मतलब विवाह योग्य व्यक्ति बच्चे होते थे तो वो लोग भी उसमें तलाशते रहते थे, जो कॉलम आता था कि हाँ भाई वर वधू का है, तो वो भी बड़ा उसमें खोजबीन चलती रहती थी। नहीं भी खोजबीन है तो भी हम पढ़ के देखा करते थे कि उसमें क्या चल क्या रहा है, आजकल क्या डिमांड है, तो बड़ा अच्छा लगता था।
0: तो अब पढ़ने की बातें तो अंतहीन है, बस यही यहाँ पर इस मंच से यही कहते हैं कि जहाँ जितना हो सके खूब पढ़िए, किताबें पढ़िए, अखबार जरूर पढ़िए। फिलहाल ये गाना सुनिए।

0: ही राजा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी और आज कुछ मुहावरों की बात हमें करनी थी, याद है?
1: बिल्कुल, घर का घाट एक करना, यानी कि हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि बात पहले मुहावरे की करें तो इसका मतलब कठिन परिश्रम करना, यानी कड़ी मेहनत करना होता है किसी भी कार्य को सिद्ध करने या कोई चीज पाने के लिए या परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इस बात पर गुजराती में मुहावरा भी है, कठोर परिश्रम नो कोई विकल्प नथी, मतलब कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और यही कि जैसे कि अब हम एग्जाम देना तो उसके पहले हम कितनी तैयारी करते हैं, तो चाहते हैं कि हर प्रश्न हम याद कर लें, जो अगर आए तो हम उसका हल लिख सके, उत्तर लिख सके। तो घर का घाट एक करना, यानी कि एकदम कठिन परिश्रम कर ही डालना जिसे कहते हैं। और हमारे साथी और लिखते हैं कि मेहनत और परिश्रम करना लक्ष्य पाने को पाने के लिए दिन रात एक कर देना, ये मुहावरा हमारी जिंदगी में बहुत बार काम आता है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, इसका वाक्य प्रयोग भी बहुत सारे चीजों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि परीक्षा पास होने के लिए घर एक एक कर देना, घर का घाट कर देना।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक जवान देश सेवा में लगा हुआ था, जहां उसे समय बेसमय संवेदनशील निर्जन और दुर्गम इलाकों में सेवाएं देने के लिए जाना होता था। परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई, तीनों ही शासकीय सेवा में थे। कुछ अरसे बाद अस्वस्थता के कारण पिताजी नहीं रहे। जवान श्राद्ध कर्म कार्य हेतु घर आने के पश्चात अपनी ड्यूटी पर इस उम्मीद से नहीं गया कि उसे पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। जवान ने नियुक्ति पाने के लिए घर घाट एक कर दिए, लेकिन उसे परिवार में सभी लोग सेवारत होने का हवाला देकर नियुक्ति से वंचित कर दिया।
1: बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए चारों तरफ भाग दौड़ करना, हर जगह प्रयास करना या बहुत अधिक शारीरिक मानसिक परिश्रम करना, इसमें हर ठिकाने पर इन्होंने लिखा है कि बेटे की शादी की तैयारी में माता पिता ने घर घाट एक कर दिया, अंतर क्या है, कोई कसर बाकी ना छोड़ी, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत जुटना ही पड़ता है। और एक लिखते हैं घर घाट एक करना कठिन परिश्रम करना, जैसे अच्छी नौकरी पाने के लिए बेटे ने दिन रात घर घाट एक कर दिया,
0: मतलब जी तोड़ कोशिश करना। और हमारे सभी श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और कुछ लोगों की आज भी आदत है मुहावरे में बात करना, लोकोक्तियों का प्रयोग करना, अच्छी बात है। सभी आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि मुहावरों में कैसी बात की जाती है और एक आपकी भाषा में सजावट आ जाती है, आप उसका जैसे भाषा का श्रृंगार करते हैं जब खास तौर से कुछ

0: आप ललित लिखने बैठते हैं, ललित निबंध या कोई आलेख है, कोई कहानी है, तो उसमें अगर मुहावरों का प्रयोग बीच बीच में करते हैं तो भाषा का श्रृंगार होता है।
1: बिल्कुल।
0: बहरहाल ये बात, बहुत सारे श्रोताओं की और भी टिप्पणियां आई है, लेकिन अमूमन उसका निचोड़ यही है। तो अब एक गाना सुनते हैं, ये है प्रोग्राम का आखिरी।

0: आशा भोसले की आवाज में ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। फिल्म थी समाधि और आज आशा भोसले का जन्मदिन है। इस गाने के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी हमने अर्पित की। अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विनीत रैना से। इनसे बातचीत की है नेहा शर्मा ने।
1: श्रोताओं नमस्कार। एक अभिनेता पर्दे पर कई किरदार निभाते हैं और हम उन्हें उन्हीं किरदारों के बीच कहीं पहचानने लगते हैं, लेकिन वास्तव में इन किरदारों के बीच छुपे हुए वो अभिनेता अपने निजी जीवन में वाकई उन किरदारों से मिलते हैं या नहीं, ये तो हमें तब पता चलता है जब वो इन सारे किरदारों से बाहर निकलकर खुद हमारे सामने होते हैं और अपने बारे में हमें कुछ बताते हैं, जैसा कि आज होने वाला है। क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे सामने हैं टेलीविजन और फिल्म्स में दो दशकों से अलग अलग किरदारों के साथ नजर आने वाले वो अभिनेता जिन्हें हमने पुनर्विवाह, मायका, लापतागंज, बेगुसराय, इश्क में मरजावा, छोटी सरदानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसी कई टेलीविजन सीरीज में अलग अलग किरदारों में देखा है और द शोले गर्ल, जन्नी जैसी फिल्मों में भी आप अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। हाँ, शिरडी वाले साईं बाबा सीरियल में हमने उन्हें साईं बाबा के रूप में भी देखा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, चेहरे पर एक बेहतरीन मुस्कान लिए हमारे सामने मौजूद हैं विनीत रैना। तो विनीत जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम विविध भारती के सभी श्रोताओं को, और जो विविध भारती मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और मेरी मतलब इतनी सारी मेरी जो लाइफ है जो विविध भारती सुनते सुनते ही गुजरी
1: जी।
2: आज ऐसा लग रहा है कि मैं खुद रेडियो के अंदर आके बैठा हूँ और दूसरी तरफ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक श्रोता से, आज श्रोताओं से बात कर पा रहा हूँ। इट्स एन ऑनर।
1: तो ये आपकी एक कह सकते हैं उपलब्धि है कि आपने इतना कुछ हासिल किया जिसकी वजह से आज आप हमारे सामने बैठे हैं, और हमें भी बहुत गर्व हो रहा है कि आपको हम यहाँ हमारे मेहमान के रूप में पा रहे हैं। तो जब बचपन की बात हुई और रेडियो की बात आप कर रहे हैं, बचपन से ही शुरुआत करते हैं, बचपन कैसा था आपका? बचपन से ही सोचा था कि मुझे, या किशोर अवस्था में आपने ये सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है या संयोग है? बचपन कैसा था ये पहले हम सुनते हैं।
2: देखिए, कला मेरे ख्याल से हर इंसान जो पैदा होता है उसके अंदर कला होती है। हम लोग छोटी उम्र से ही, किस बच्चे ने डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेला होगा, यू नो, टीचर टीचर नहीं खेला होगा, चोर पुलिस नहीं खेला होगा। और हर बच्चा, जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, तो हम देखते हैं कि वो बच्चा डॉक्टर बना हुआ है और वो लोग उसी तरीके से अभिनय करते हैं, बट जबकि उन्होंने शायद डॉक्टर को शायद अपनी मम्मी का इलाज करते हुए देखा होगा, एंड दे स्टार्ट इमिटेटिंग, वो उसकी नकल उतारना शुरू करते हैं और एक्टिंग करना शुरू करते हैं। सो एक्टिंग का बीज जो है वो वहीं से पैदा होता है इंसान के अंदर। मुझे लगता है कि मैंने उसको थोड़ा सा शायद सीरियसली ले लिया और मुझे ऐसे कहा जाता है कि मैं बहुत नकल उतारता था सबकी, जो भी मेरे घर पे जितने भी रिश्तेदार आते थे या कुछ आते थे, तो मैं उनको बहुत हूबहू उनकी नकल उतार लिया करता था। तो मुझे लगता है शायद मेरे जानने से पहले ही मेरे अंदर वो कला शायद पनप रही थी, आई गेस।
1: ये तो एक स्वाभाविक रूप से आपके अंदर कला पनप रही थी, लेकिन जब ये तय किया होगा कि अभिनय में जाना है या अभिनय करना है, तो कुछ खास तैयारियां की, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो थिएटर की कुछ वर्कशॉप्स करते हैं, या इस तरह की कोई तैयारी आपने की?
2: जी नहीं, मैंने हमेशा अपने आप से ही, मैंने जो भी सीखा अपने आप से सीखा, और मैं, जैसा कि आपको बताया कि मैं लोगों की, यू नो, नकल उतारा करता था अपने रिश्तेदारों की, और तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे लिए इतनी गौरव की बात है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ विविध भारती के स्टेशन में, क्योंकि मैं इसी रेडियो स्टेशन पे जॉनी लीवर को सुनता था मिमिक्री करते हुए।

0: और जब मैं फिल्में देखता था तो मैं जो सुना होता था जॉनी भाई को उनकी नकल उतार के, जो एक्टर्स थे हमारे उनकी नकल उतारना शुरू कर दिया करता था। और जब हमारे घर पर रिश्तेदार आते थे तो मुझे बोला जाता था कि आप यू नो इसकी इसकी इसकी आवाज निकाल के दिखाओ, या संजीव कुमार की आवाज निकाल के दिखाओ, या मिथुन चक्रवर्ती की आवाज निकाल के दिखाओ, अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल के दिखाओ, एक्टिंग करके दिखाओ। तो मैं सबकी नकल हूबहू उतार के उनको दिखाया करता था। तो मेरे ख्याल से इन सब कलाकारों से इंस्पिरेशन लेते हुए वो कभी मेरे अंदर से शायद निकल नहीं पाया। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ये अपने आप से ही सब सीखता गया। और जो हमारा दूरदर्शन कशीर है, डीडी कशीर बोलते हैं उसको, दूरदर्शन कशीर, उस पे मैंने बहुत सारे शोज किए, टेलीविजन सीरीज जो कभी 7 एपिसोड कभी 12 एपिसोड्स, और मैं उस पे काम करता गया। तो वही मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस था एक्टिंग सीखने का।
1: जी, तो एक बेस बन गया आपका वहाँ काम करते करते। जी, तो जब यहाँ एक्टिंग की लाइन में आप आ ही गए, मुंबई आ गए, तो मुंबई का जीवन इतना आसान नहीं होता अगर आप बाहर से आते हैं कहते हैं, तो कुछ स्ट्रगल कुछ करनी पड़ी, किस तरह से आप क्या बदलाव आ गया जीवन में, ऐसा कुछ लगा आपको?
0: बहुत बदलाव आता है एक इंसान के जीवन में, और मेरा जीवन जो है वो मतलब एक फिल्म से कम नहीं है मैं समझूंगा, क्योंकि बचपन आपका श्रीनगर में, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हम लोग श्रीनगर में पैदा हुए, वहाँ स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद हम जो वहाँ से निकले, फिर हम दूसरे हम जम्मू में आकर स्थापित हो गए, हम बिल्कुल बेघर हो गए थे यू नो, उसके बाद हम लोगों ने वापस से सब कुछ यू नो बटोरना शुरू किया, और धीरे धीरे पढ़ाई मैंने अपनी वापस से रिज्यूम की, और मैंने बीकॉम किया, साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और मैं नौकरी करने के उद्देश्य से मुंबई आया कि मुंबई इसलिए आऊंगा कि नौकरी भी करूंगा ट्राई, लेकिन अभिनय में अपना जरूर मैं ट्राई करना चाहूंगा। और मेरा ये था कि डिसीजन था कि जो पहले मुझे चुनेगा वो मेरा जो आगे का पूरा रास्ता होगा। और कहते हैं ना कि इंसान कला को कभी नहीं चुनता है, हमेशा कला जो होती है ना वो इंसान को चुनती है। सो मेरा ऑडिशंस में देता रहा, पहला ऑडिशन मेरा जब हुआ तो उसके बाद मैंने फिर कभी किसी और चीज की तरफ देखा ही नहीं।
1: और आपका पहला सीरियल भी कुछ इसी तरह से संबंधित था, कश्मीरी जो आप कह रहे हैं आपका बैकग्राउंड है उससे संबंधित की अगर हम बात करें,
0: मुल्क था और वो पार्टीशन पे ही था पूरा, और जब हम वो सीन्स करते थे तो वो पूरा वो याद आना, वो सब कुछ आना यू नो कि कैसे हम लोग निकले थे और कितनी मुश्किलों से हम लोग पुनर्स्थापित हुए जम्मू में, तो वो यादें बहुत ऐसा लगा कि जिंदगी कहीं ना कहीं आपको यू नो गोल गोल करके वो दिखाना शुरू कर ही देती है जो आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया होता है। और उसके बाद बस मैं टेलीविजन पे टेलीविजन शोज करता गया, मुझे अच्छे शोज मिलते गए, और ये मतलब भगवान का ही हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि कभी कोई मेरा गॉडफादर नहीं रहा, मेरा गॉड ही रहा, कोई फादर उसमें नहीं रहा, बस गॉड ही रह गया। सो मुझे कला ने, माता सरस्वती ने ही मुझे आगे आगे आज तक किया है, कभी कहीं से कुछ सीखा नहीं, जो सिखाया जिंदगी ने सिखाया मुझे।
1: तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही थी, क्यों ना एक अच्छा सा गीत सुन ले जो आपकी पसंद का हो, तो कौन सा गाना यहाँ चला ले?
0: एक गाना जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि वही जो है मुझे लगता है फाउंडेशन है हमारे इंडस्ट्री के, शोमैन राज कपूर साहब की फिल्म का गाना मेरा नाम जोकर से।
1: जीना या मरना या?
0: जी हाँ।
1: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो विनीत जी, जैसा कि आपने कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, ये आपकी फिलॉसफी एक तरह से कि एक कला के रूप में कि उससे जुड़े रहना है किसी भी तरह से, लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अधिकांश अभिनेता ऐसे होते हैं जो अपने किरदारों में बन जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने जो किरदार किए तो उसी तरह के रोल बार बार मिलने लगते हैं। जैसे कभी कभी कुछ लोगों का मन में भी इस तरह से होता है कि पॉजिटिव किरदार ही मुझे निभाने, नेगेटिव कुछ नहीं करना है, लेकिन आपने कई तरह के रोल्स निभाए हैं, आपने नेगेटिव भी किए, पॉजिटिव भी किए, कॉमिक किरदार भी आपने किए, और फिर लार्जर देन लाइफ एक किरदार है, साईं बाबा का किरदार आपने निभाया, तो आपको अलग अलग तरह के किरदारों के लिए खुद ही ऑफर मिलते रहे या आपने कुछ इसके लिए कुछ किया खास? क्योंकि आमतौर पर कहते हैं कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है और जैसा आपने निभाया वही निभाने के लिए बार बार कहा जाता है।
1: ये मेरा खुद का डिसीजन रहा हमेशा, क्योंकि मायका जैसा सक्सेसफुल शो करने के बाद जिसमें वीर खुराना का मैं किरदार निभा रहा था, वो बहुत लार्जर देन लाइफ, वो इतना हिट शो हो गया था, और खासकर मेरी और शिल्पा शिंदे की जोड़ी, वीर सोनी की जोड़ी थी जो उसमें बहुत ज्यादा हिट हुई थी। उसके बाद मैं सेम चैनल पे एक और शो कर रहा था, हर घर कुछ कहता है
0: जी।
1: और उसमें भी मैं मुख्य भूमिका निभा रहा था, उसमें भी मैं हीरो ही था शो का, रति पांडे के साथ। और एज अ हीरो, एज अ चॉकलेट बॉय मैं ये दोनों शोज कर रहा था, ये कुछ दो ढाई साल तक चलता रहा
0: जी।
1: और इसके बाद मुझे इसी तरह के शोज ऑफर होते गए, जैसा कि आपने कहा कि टाइपकास्ट कर दिया जाता है एक्टर्स को, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम अगर यहाँ से हिल जाओगे, इस अपने हीरो वाले जोन से हट जाओगे तो कभी भी फिर तुम्हें हीरो नहीं माना जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, अगर मैं अलग अलग चीजों में एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा तो एज अ कलाकार मैं ग्रो कैसे करूंगा
0: जी।
1: अगर मैं म्यूजिक में हूं और अगर मैं अलग अलग जॉनर्स नहीं सीख पा रहा हूं और मैं एक ही जॉनर बजा रहा हूं तो, या एक ही जॉनर में सिर्फ मैं काम कर रहा हूं, अपनी कला को निखार रहा हूं, तो मैं ग्रो कैसे करूंगा? तो मेरा ये वॉलंटियरली डिसीजन था, और मैंने उसके बाद नेगेटिव रोल चुना जो माँ था जी टीवी पे, और मुझे ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री ने मना कर दिया था कि तुम मतलब खुद अपना करियर अपने हाथों से खत्म कर रहे हो। लेकिन वो शो आने के बाद मैंने जब उसके ऊपर तैयारी की, मैंने खुद से जब उसके ऊपर काम किया तो कितना सराहा गया, और उसके बाद मुझे सिर्फ नेगेटिव रोल्स ऑफर होने लग गए। तो उसके बाद मैंने पुनर्विवाह किया, और उसके बाद मैंने काफी सारे शोज नेगेटिव में किए, और मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव किरदार को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा खुद का मानना है जिंदगी में कि अच्छा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इंसान, लेकिन बुरा बनने के लिए बहुत एफर्ट है, बहुत एनर्जी ड्रेन करनी पड़ती है अपनी। तो वो मुझे मुश्किल लगा बहुत करना, और जब मुश्किल था तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगा।
0: और मुश्किल आमतौर पे इसलिए भी नेगेटिव किरदार कि आप जब इतने पॉजिटिव दिख रहे हैं और जीवन में इतने पॉजिटिव हैं तो फिर नेगेटिव करना तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
1: देखिए, मुझे लगता है एक्टर ना एक गिरगिट की तरह है, अगर वो अलग अलग रूप नहीं बदलेगा तो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि कोई इंसान की स्किन में घुस के उसको पर्दे पर उतारना और लोगों को ये बताना कि ये कैरेक्टर रियल है
0: जी।
1: अपने आप को ग्रो करने के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि बेधड़क होके, बिंदास होके रोल्स चुनने चाहिए, और इसी का नतीजा है कि मुझे लगता है आज मैं यहाँ तक पहुंचा। अगर मैं एक ही जैसी चीज कर रहा होता तो शायद मैं नेगेटिव रोल्स नहीं कर पाता, शायद मैं लापतागंज जैसा इतना बड़ा हिट शो एज अ कॉमेडी शो नहीं कर पाता, और फिर मुझे नेगेटिव से वापस साईं बाबा जैसा रोल करने का मौका मिलना, और आप सोचिए कि मेरी ऑडियंस कितनी मेरे साथ होगी
0: जी, वो स्वीकार करना बहुत
1: जरूरी है। सिर्फ उनकी वजह से मेरे करियर में अगर कोई सबसे ज्यादा किसी का क्रेडिट है वो भगवान
0: जी।
1: मैं मानता हूँ यूनिवर्स।

0: और मेरे ऑडियंस है, मेरे फैंस हैं, जिन्होंने हमेशा मेरे अतरंगे रोल्स की चॉइस को हमेशा साथ दिया और मैं इसीलिए आज इनके साथ यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ।
1: तो जैसे आपको यकीन है कि आप अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, वैसे ऑडियंस को भी लगता है, आपके दर्शकों को भी लगता है कि नहीं हम देख सकते हैं इनको और स्वीकार भी कर रहे हैं, वो बड़ी बात है।
0: उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया कि मैं जो भी करूंगा मैं कभी भी मतलब उन्हें गलत नहीं साबित करूंगा।
1: और सबसे ज्यादा किस किरदार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी?
0: साईं बाबा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है, लेकिन उनकी तरह दिखना और मानसिक तौर पर अपने आप को शून्य तक ले जाना, जहां आपके सामने कोई भी कैरेक्टर कुछ भी अगर बोल रहा है तो जिस तरह बाबा सबको सिर्फ एक स्माइल देकर सबको समझा देते थे, एक आम इंसान के लिए इतना काम और कंपोज रह के हर वक्त चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान आ रहा हो फिर भी उसका स्माइल रख के मुस्कुराते हुए उसका समाधान पे ध्यान देके प्रकृति पे ईश्वर पे विश्वास रख के उस पे काम करना और उसको सॉल्व करना और फिर भी लोगों को खुश रखना, ये बहुत मुश्किल काम था। मानसिक तौर पे मुझे सबसे ज्यादा काम करना पड़ा
1: जी। तो उसके बाद कुछ निजी जीवन में कुछ बदलाव आए, क्योंकि कहते हैं पौराणिक किरदार हूँ या इस तरह के कोई किरदार हम निभाते हैं तो बहुत सा बदलाव आता है। आमतौर पे जिन भी अभिनेताओं ने इस तरह का किरदार निभाया, चाहे वो श्रीराम का किरदार हो, भीष्म का किरदार हो, इस तरह के जब भी किसी अभिनेता को ऐसे किरदार करने मिलते हैं उनके निजी जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने मिलते हैं, तो क्या आपको भी ऐसा कुछ बदलाव अपने अंदर देखने मिला?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि मैं साईं बाबा को मतलब अपने कॉलेज डेज से मानता आया हूँ और मैं उनके मंदिर जाया करता था और मैं उनको बहुत बहुत मानता आया हूँ, उनकी टीचिंग्स को, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उनको मैं बहुत मानता हूँ, आज भी मानता हूँ। और इतने सालों के बाद आज एज एन एक्टर उनको जब पर्दे पे उतारने का मुझे मौका मिला तो मेरे लिए ये एक अनबिलीवेबल सा मौका था। और साई सच्चरित में पहले ही से ही पढ़ चुका था मैं, उनके बारे में बहुत पढ़ चुका था, और जब उन्हें पर्दे पे उतारने का मौका मिला और उनके जैसा कि मैं नंगे पैर चलता था, जिस तरह हम लोग शूट करते थे, जो हमारी सारी जो सेट हुआ करता था, उस तरह से जीने के बाद जो पर्सनल जिंदगी में इतनी सारी चेंजेस आई कि कितना हम्बल रहना है, कितना आपको शांत रहना है, जिंदगी में कुछ भी होता रहे लेकिन स्माइल रखते हुए ही उन चीजों को आपको लाइफ को हैंडल करना, ये सीखने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ।
1: तो चलिए इस समय एक अच्छा सा गीत सुन ले, आपकी पसंद का कोई गीत।
0: मैं चाहता हूँ कि मैं मन्ना डे जी का एक गाना सुनूं, जिंदगी कैसी है पहेली आए,
1: आनंद फिल्म से।
0: बिल्कुल
1: जी।

0: अच्छे, मतलब बस आते हैं, कुछ एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं. लेकिन आमतौर पे क्या क्या मुश्किलें किसी एक्टर को झेलनी पड़ती हैं, और कोई ऐसा मुश्किल सीन हो जिसके लिए, या ऐसा कोई किरदार हो जिसे निभाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, और ज्यादा से ज्यादा एक साथ आपने कितने घंटों तक काम किया, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी शिफ्ट्स होती हैं.
1: जी हाँ बिल्कुल, एक डेली शो बनाने के लिए बहुत सारे लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं. 100-150 लोग मिलकर एक एपिसोड तैयार करते हैं, और एक दिन में एक एपिसोड बनाना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए. इसीलिए चाहे आप बीमार हो, चाहे कोई भी हालात हो, बारिश हो, तूफान हो, आपको शूटिंग करनी है और सेट पर पहुंचना ही है और उस एपिसोड को बनाना ही है ऑडियंस के लिए. तो मेरा मानना ये है कि जो भी मुंबई अपने सपनों को लेकर आता है एक्टर बनने के लिए, अगर वो शौकिया तौर पर आ रहा है तो उसका जाना तय है. क्योंकि आप अगर सिर्फ शौकिया तौर पे आ रहे हैं तो ये कोई भी आसान काम नहीं है. लेकिन अगर आपका पैशन है और आपने चुन लिया है कि अब मुझे एक्टर ही बनना है, तो ये बात गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है कि आपने पूरी दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन आपने एक अडॉप्ट कर लिया है, एक ऐसा चुन लिया है जहां जो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है
0: जी.
1: जब सबसे ज्यादा इनसिक्योर है, जिसमें आपकी इनकम कभी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपके रहने का बंदोबस्त, आपके खाने का बंदोबस्त, आपकी बाकी किसी भी चीज का बंदोबस्त, आप एक रेगुलर जॉब पे नहीं होंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्रोफेशन है. तो जब आपको मौका मिलेगा, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, आप सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दे सकते हैं, उसके अलावा बाकी किसी हालात पे आपका काबू नहीं है. क्योंकि आप रोल नहीं चुनते हो, कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई राइटर या प्रोड्यूसर्स बैठ के जब सोचते हैं कि हमारा कैरेक्टर इस एक्टर से जरूर मिलता है, तभी आपके पास वो मौका आपको मिलता है. और उस वक्त आप तैयार होने चाहिए, उस वक्त आपके तुनीर में बाण भी होने चाहिए और आपका धनुष जो है ना वो पूरा तैयार होना चाहिए. सो यही एक एक्टर का काम है, और बहुत ही मुश्किल एक प्रोफेशन है. लेकिन इसके लिए जुनून चाहिए, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए पागलपन चाहिए, और इसके लिए खूब सारी मोहब्बत चाहिए कला के साथ, तभी आप सस्टेन कर पाते हैं.
0: तो आपने अपनी जो कला के प्रति मोहब्बत है उसे किस तरह से निभाया था? एक लंबा, बहुत लंबा शूट आपने किया था.
1: मेरा जो
0: कितने घंटों का
1: पॉपुलर शो था माए का, वहाँ कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि चैनल का ये डिसीजन था कि हमारी 90% कास्ट को एक ही दिन में उन लोगों ने पूरा रिप्लेस कर दिया था. तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब लोग कास्ट पूरी अगले दिन से अवेलेबल नहीं थी और सिर्फ मैं था.
0: सीरियल का ऐसा सीन उन्होंने किया जिसमें ब्लास्ट के थ्रू इनका,
1: और उसके बाद कोई भी एक्टर अवेलेबल नहीं था और सिर्फ मैं था. और हमारे पास कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट करने के लिए नहीं थे. हमारे ऊपर चैनल के ऊपर बहुत प्रेशर था, और मैंने लगातार बिना सूरज देखे, बिना सेट से बाहर आए, कम से कम 56-60 घंटे लगातार शूट किया था. क्योंकि तब सिर्फ मंडे टू थर्सडे ही एपिसोड्स टेलीकास्ट हुआ करते थे और 3 दिन का हमारे पास गैप हुआ करता था. जब तक हम लोग बिल्कुल, हमारे पास एक दो एपिसोड का बैंक नहीं आ गया, तब तक मैं सेट से हिला नहीं, और फाइनली मैं बेहोश हो गया था सेट के ऊपर. और जब सब कुछ खत्म हो गया और मुझे बता दिया कि विनीत हमने ये कर लिया, हम अब सेफ हैं, तब मेरे मतलब पैर जैसे मतलब मैं गिर गया और मुझे उठा के वो घर ड्रॉप कर दिया, और मैं कम से कम एक दो दिन तक नींद से उठा नहीं हूँ. तो ये
0: बहुत, तब तक बैंक खत्म हो गया होगा तो फिर वापस आ गए.
1: ये 2 दिन मैं सोया हूँ, उसके बाद वापस से हम अपनी मैराथन में लग गए थे.
0: तो ये 60 घंटे, 56-60 घंटे का काम जो आपने किया, सुन के भी मुझे थोड़ी थकान सी होने लगी है.
1: सारी यूनिट परेशान हो गई थी कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, क्योंकि बहुत इमोशनल सीन्स थे. एक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ वो लाशें थी और मेरे मोनोलॉग्स थे. मैं रो रहा हूँ हर लाश को देखकर, उनकी पुरानी यादें ताजा कर रहा हूँ. सो बहुत ड्रेनिंग था. लेकिन वही है कि इसके लिए जब जुनून आपके दिल में, जब मोहब्बत होती है कला के लिए, तो एक्टर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट.
0: तो इसी जुनून को बताता हुआ कोई गीत अगर आप हमें बताना चाहें जो आपकी पसंद काम सुन ले सब.
1: जी बिल्कुल, मैं इस मौके पे तो एक ही गाना आपको सुनाना चाहता हूँ और सभी श्रोताओं को, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है.
0: तो चलिए, आप जिस तरह से सिकंदर की तरह काम कर रहे थे तो आपके लिए सुनते हैं ये गीत.
1: बिल्कुल.

0: विनीत जी, आपने जैसे हमारी बात हो रही थी उसमें आपने कहा कि एक एक्टर का जो काम है वो स्टेबल जॉब नहीं है, पता नहीं है, सैलरी नहीं मिलती है कि हर महीने आपको सैलरी मिलेगी. जब आपके पास काम है तो आपके पास तब आपको पैसे मिलेंगे, वो भी शायद 2-3 महीने का एक गैप होता है उसमें मिलेंगे, और उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट शो आपको तुरंत मिल जाए, हो सकता है ना मिले. तो कितना मुश्किल है ये काम, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, सबके होते हैं, नॉर्मल खर्चे भी होते हैं और एक्टर के तो एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, अपने ख्याल रखना पड़ता है अपना, अपने वार्डरोब का ख्याल रखना पड़ता है अलग तरह से. तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए? एक साथ में ये भी जोड़ना चाहेंगे कि अपने पैसों का सही तरीके से कैसे ख्याल रखना चाहिए किसी एक्टर को, क्योंकि कई बार आर्थिक तंगी आ जाती है अगर लंबा काम नहीं मिला बाय चांस.
1: ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज है जो आपने उठाई है, जो सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए. और यही चीज है जो उनको वो लिवरेज नहीं दे पाता, वो माइलेज नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो वापस अपने घर लौट कर चले जाते हैं. क्योंकि मुंबई कोई सस्ता शहर नहीं है, बहुत ही महंगा शहर है. और जो लोग घर से खूब सारे पैसे लेकर आते हैं वो भी कई बार मेरे ख्याल से बहुत आगे तक नहीं जा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टैलेंट आपको साथ में उसको पॉलिश करते रहना जरूरी होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया. लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ क्योंकि मुंबई बहुत ही चकाचौंध से भरा हुआ शहर है, यहाँ दिमाग खराब होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी चीजें भी हैं जहां पर आपका दिमाग भटक सकता है. लेकिन मुझे लगता है जब आप फोकस रहेंगे और जब आपको पता है कि आपको एक्टर ही बनना है, जो अब आपका शौक नहीं है, और अगर आप शहर आए हैं ये समझ के आ गए हैं कि ये एक चकाचौंध से भरा शहर है, तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है. चकाचौंध तो है, लेकिन वो चकाचौंध पाने के लिए उस एक्टर ने कितनी मेहनत की होती है, कितनी मुश्किलों से वो गुजरा होता है, वो लोगों को नहीं दिखता. जब वो पा चुका होता है और वही पाता है जो बहुत दिमाग से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए चलता है. और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये ज्यादातर लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे शाहरुख खान जैसे लोग हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप पैसे जो हैं उनको बहुत ही ध्यान से रखिए, क्योंकि आपके पास जो आपकी बैंक बैलेंस होती है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है. तो मुझे लगता है जितने भी एक्सपायरिंग एक्टर्स हैं उनको जब वो यहाँ आते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, अपने टैलेंट पे काम करते हुए जितना भी पैसा वो कमाते हैं वो हमेशा उनको सेव करके रखना चाहिए, ना कि आते ही चकाचौंध से भरे
0: खुश होके
1: क्लब्स में जाते हुए या पार्टीज में जाते हुए उस पे ना जाएं शुरू में. करें, लेकिन ये चीजें तब करें जब आपका एक बैंक बैलेंस आप मेंटेन कर लें, आपको पता हो कि आपके पास इतना है कि आप अपनी, क्योंकि हो सकता है कि एक टेलीविजन

0: सीरियल किसी को मिला और वो शायद 2 महीने में या 3 महीने में बंद हो जाए. सोचा होगा कि साल भर चलेगा, लेकिन और उस साल भर का सोच के आपने अपने बड़े बड़े खर्चे उठा लिए, या आपने लग्जरी कार्स ले ली, या आपने बड़े बड़े घर ले लिए, और उसके बाद जब वो काम अचानक बंद हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है.
1: जी.
0: तो मुझे लगता है कैरिड अवे ना हो, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, फिजूल खर्ची ना करें, पहले अपने करियर पे ध्यान दें, एक स्टेबल करियर बनाएं. उसके बाद जब आप एक बार कमाना शुरू करेंगे, जब एक बार आपका करियर थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाएगा, आप अपने आप वो चकाचौंध जो है आप उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे, और आपको तब ये गम या ये डर नहीं होगा कि अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा. सो ये बहुत जरूरी चीज है जो एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए.
1: जी. और जैसे कि आप इन दिनों टीवी, फिल्म, ओटीटी, वर्टिकल या इंटरनेशनल फिल्म्स में भी आपने काम किया है, तो किस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा, कौन सा आपको ज्यादा सरल लगा, या सब एक जैसे ही आपको लगते हैं? और अब जो एआई आ रहा है, एआई की वजह से भी ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से एक्टर का काम या बहुत से काम जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको क्या लगता है कि उसके फायदे ज्यादा हैं या कुछ नुकसान भी हो रहा है?
0: देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान तब तक होगा एआई से जब तक लोग उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट नहीं करेंगे. अगर लोग उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वो कभी भी किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगा. वो हमारी ही सहूलियत के लिए बनाया गया है, हमारे ही काम को आसान करने के लिए बनाया गया है. ये वही बात है कि जब पहले चूल्हे पे खाना बनता था, लेकिन उसके बाद एलपीजी आ गया, और उसके बाद पहले माचिस से और किसी चीज से हमें चूल्हा जलाना पड़ता था, उसके बाद पहले गैस लाइटर आ गया, और उसके बाद अब ऑटोमेटिक लाइटर आ गया. तो ये फर्क हमें देखना पड़ेगा कि जो लाइटर हमें मिला है उससे हम सिर्फ चूल्हा ही जलाएं, उससे हम जाके दुनिया को जलाना शुरू करते हैं. सो वो कोई भी जब इनोवेशन होती है या कोई भी जब नई चीज आती है, जहां उनका सदुपयोग किया जाए तब तक वो ह्यूमंस के लिए और बाकी अर्थ के लिए अच्छा रहेगा. जहां वो बुरे हाथों में लग गया है, जहां उसका दुरुपयोग स्टार्ट हुआ, वहां वो वरदान से अभिशाप बन जाता है.
1: जी.
0: यही प्रकृति का नियम है. तो मुझे लगता है बाकी तो जितने मीडियम्स हैं, जैसे वो फिल्म हो या टेलीविजन शोज हो या वर्टिकल्स हो या बाकी कोई भी और मीडियम हो, चाहे ऑनलाइन हो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, देखिए सब लोग मिलके एक ही चीज कर रहे हैं. वही राइटर है जो कहानी एक बना रहा है, उसे वही डायरेक्टर जो है उसे पूरा बुन रहा है. कुछ यूनिट मिलके या सिर्फ एक इंसान मिलके आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बना के एक ऐसी कहानी बनाने का सहूलियत रखते हैं कि जिसके पास जो भी थॉट है वो उसको एक कहानी के माध्यम से, अगर वो अकेला भी होगा तो डिफरेंट डिफरेंट रोल खुद ही करके वो उस कहानी को बता सकता है. तो मुझे लगता है कि बनाने का तरीका एक ही है, बस उसका फॉर्मेट अलग है. कभी कैमरा सीधा रख दिया जाता है, कभी कैमरा वर्टिकली रख दिया जाता है, कभी हॉरिजॉन्टली रख दिया जाता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है. और मुझे लगता है गुड स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए. हम अपनी स्टोरीज के माध्यम से, हम अपने रेडियो के माध्यम से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सके, उनको एंटरटेन तो करना जरूरी हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन एंटरटेन करते हुए उन्हें एक अच्छी दिशा दिखाना भी हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी जिम्मेदारी बनती है. मुझे लगता है कि जितने ज्यादा मीडियम्स होंगे उतने ज्यादा कलाकार होंगे. कलाकार बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो मुझे लगता है जितने ज्यादा कलाकार इस दुनिया में होंगे उतना ज्यादा प्यार मुझे लगता है फैलेगा.
1: तो यहाँ जब ऐसी बात हो रही, तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया या भारतीय नागरिक होने के नाते आपने एक बड़ा ही गर्व वाला काम हमारे लिए किया है, जब आपने एक इंटरनेशनल फिल्म में काम किया. ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स की बात हम कर रहे हैं.
0: जी हाँ.
1: तो इसमें भी आपका किरदार तो क्या है वो आप हमें बताएंगे ही, लेकिन ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो भारतीय जो ये टीवी सीरीज है इन सबका क्या क्रेज है, क्या लोकप्रियता है?
0: बहुत ज्यादा लोकप्रियता है हमारे टेलीविजन शोज की. और मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, वो चाहे इंडोनेशिया हो, वो थाईलैंड हो, जहां भी हमारे इंडियन टेलीविजन शोज टेलीकास्ट होते हैं, वहां हमारे हिंदुस्तान के कलाकारों को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, खासकर इंडोनेशिया में, कि उनका प्यार देखकर मतलब इमोशनल हो जाता हूं मैं जब भी मैं वहां जाता हूं. और खासकर अभी जिस फिल्म की आपने बात की, ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, वो अभी 12 जून को रिलीज हुई. उसकी निर्माता निकोलेट एंडिग्वे हैं और उसकी जो निर्देशक हैं वो मिल्ड्रेड ओको हैं, जो यूएस की काफी जानी मानी डायरेक्टर हैं. इसकी स्टार कास्ट बहुत विशाल है. अफ्रीका के बहुत जाने माने सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं इसमें.
1: जी.
0: एक इंडो नाइजीरियन शादी वेडिंग पे एक फिल्म है जिसमें मैं हिंदुस्तानी लड़का हूँ जो एक नाइजीरियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब वो फिल्म यहाँ रिलीज होगी, क्योंकि वो अफ्रीका में बहुत अच्छा कर रही है, 28th ऑफ अगस्त को वो यूके में रिलीज हो रही है और उसके बाद वो ह्यूस्टन में रिलीज हो रही है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी राइट्स के लिए वो लोग काफी कोशिश कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ आए. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था और वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हमारा वहां ग्रैंड प्रीमियर

0: जिसमें वहाँ की एम्बेसी के, हमारी इंडियन एम्बेसी के वहाँ पे ऑफिसर्स थे और सब लोग थे, हमारे इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री से लोग थे, उनको भी बहुत अच्छी लगी फिल्म और इंडिया को रिप्रेजेंट करके बहुत ही अच्छा और गर्व फील हुआ. और मुझे इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील होता है क्योंकि मैं कैसे बताऊं आपको कि मेरे लिए कितनी एक बड़ी बात है कि मैं एक बहुत ही छोटे से इंडिया के नॉर्थ से, कश्मीर से उठा हुआ एक कश्मीरी पंडित लड़का जो रातों रात जिसने अपना सब कुछ खो दिया और उसकी एक जर्नी एज एन एक्टर और आज एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और उनके साथ काम करना और उनको इंडियन कल्चर से अवगत कराना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गौरव की बात थी मेरे लिए. और वो लोग बहुत खुश थे. मजे की बात ये थी कि जब मैं नाइजीरिया गया और नाइजीरिया इतना दूर है यहाँ से और जब मैं वहाँ, जब मेरी प्रोड्यूसर मुझे एक पासी में एक रेस्टोरेंट में, लागोस में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खिलाने के लिए मुझे लेकर गई, तो मेरी प्रोड्यूसर इतना आश्चर्यचकित रह गई देख के कि वहाँ का जो स्टाफ था जो सब खाना वगैरह बांट रहे थे
1: जी.
0: वहां पर यहाँ की एक चैनल वहां पर टेलीकास्ट होती है जिसपे सारे के सारे शोज, इंडियन शोज आते हैं और मेरा एक बहुत ही पॉपुलर शो पुनर्विवाह वहां पर टेलीकास्ट होता है. और जब मैं वहां गया और वो इतना पॉपुलर शो है वहां कि जब मैं इस रेस्टोरेंट में गया तो लोगों ने मुझे, मेरे उस किरदार का नाम उस शो में प्रशांत है
1: जी.
0: तो मुझे लोगों ने प्रशांत प्रशांत कहकर, मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं इंडियन एक्टर वहां कैसे हूँ. पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, अब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मेरी प्रोड्यूसर को पूछा और मेरी प्रोड्यूसर was shocked कि ये कैसे है? मतलब यहाँ के लोकल लोग तुम्हें पहचान रहे हैं. मेरे लिए बहुत ही, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे इंडियन शोज जो है वो कहाँ कहाँ तक फेमस नहीं है.
1: तो फैंस आपके लिए ऐसा कुछ करते हैं, कई बार और भी करते होंगे कुछ ना कुछ. आपके लिए फैन मोमेंट कब हुआ, किसी ऐसे एक्टर से मिलना जिससे आप मिलने चाहते हो या जिन्हें आप एडमायर करते हो हमेशा, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी?
0: जी हाँ, मैं, हमारी एक बहुत ही फेमस मीडिया कंपनी है, मैं उनकी पार्टी में था, उनकी एक पार्टी थी, एनुअल पार्टी थी उनकी, और वहाँ पहली बार मैंने सलमान खान को देखा और बहुत ही एक बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का. और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा एंड मैंने सिर्फ उनको एक हेलो का जेस्चर किया एंड सलमान खान बीइंग सलमान खान, उन्होंने भी मुझे वापस से एक एक ग्रीटिंग किया, एक इशारा किया एंड दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट. और एक मोमेंट जो मेरी लाइफ टाइम का मेरा सबसे अच्छा मोमेंट रहेगा, मैं राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से, काका का मैं मतलब बहुत फैन रहा हूँ, बहुत बड़ा फैन. और मेरे लिए उनको सिर्फ देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था, लेकिन मुझे मौका मिला था, मैं एक दूरदर्शन का एक शो मुझे ऑफर हुआ था, वो पायलट बना रहे थे बेसिकली
1: जी.
0: और मैं जब सेट पे पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग भीड़ बनाकर एक रूम के बाहर क्यों बैठे हुए हैं और कोई खड़ा है कोई कुछ है. तो मैं गया सेट पे शूट करने के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं सेट पे डायरेक्ट मेकअप रूम में नहीं जाता, पहले पूरी यूनिट से मिलता हूँ. सो मैं पूरा यूनिट में जब गया, मैंने देखा कि इतनी भीड़ क्यों है. जैसे ही मैं पहुंचा और सबने मुझे देखा तो बोला आइए, तो सब थोड़ा थोड़ा हट गए और मैंने देखा कि रूम में गोल्ड कलर के सिल्क की धोती और कुर्ते में काका बैठे हुए हैं एंड ही वाज द पार्ट ऑफ द शो
1: जी.
0: He was playing my dad in that show, in that pilot. When I saw him, मेरे लिए वो मतलब मेरा एक मेरा फ्रीज हो गया था कि जिनको मैं इतना मानता हूँ आज मैं उनके सामने खड़ा हूँ. और मैं गया और मैं सीधा उनके, वो बैठे हुए थे और मैं सीधा जाके उनके घुटने के पास बैठ गया और मैंने अपने हाथ उनके घुटने पे रखे और मैंने कहा काका, मतलब मेरे लिए ये एक, मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट मानूंगा कि मैंने आपको देखा. एंड I was very emotional that time. मतलब मेरे आंसू भर आ गए थे काका को देखकर.
1: तो यहाँ फिर राजेश खन्ना का कोई गीत सुन ले.
0: राजेश खन्ना का आप कोई भी अगर आप गीत चला देंगी मैं उसको सुनूंगा, लेकिन एक गाना है उनका जो मैं गाता भी बहुत था, चिंगारी कोई भड़के,
1: तो वही सुन लेते.
0: बिल्कुल
1: जी.

0: तो विनीत जी, जब आप अपने जिनके आप फैन रहे उनसे मिलने का आपको मौका मिला, तो कोई ऐसी फिल्में भी होंगी जिनमें आपको ऐसा लगता होगा कि ये फिल्म मुझे मिलनी चाहिए थी, मतलब पुरानी अगर आपने देखी हो जब आप एक्टर नहीं रहे हो या बनना चाहते रहे?
1: बावर्ची एनी डे मुझे कोई भी प्रोड्यूसर मुझे कभी भी बोलेंगे कि बावर्ची फिल्म बना रहा हूँ और मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं उनकी फिल्म जो है मैं फ्री में कर सकता हूँ, लेकिन वो एग्जैक्टली बावर्ची जैसी ही होनी चाहिए स्क्रिप्ट। तो मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, खासकर काका ने जो उसमें परफॉर्मेंस किया और जिस तरह से काम किया है काका ने, कुछ भी करते थे वो और बहुत अच्छा लगता था। एनी टाइप ऑफ रोल, हर किसी चीज में ढल जाते थे, वो लाइवली से लाइवली कैरेक्टर हो, चाहे वो आनंद का हो या फिर बावर्ची जैसा कोई हो, या फिर इवन जब वो थोड़े से बाद में मच्योर रोल करने लगे तो अवतार जो उनकी फिल्म थी वो कितनी घर घर में देखी जाती थी कि देखो कैसे अपना,
0: हाँ, बार बार देखी जाती थी बागवान से पहले, ये देखी जाती थी
1: बागवान से पहले। अगर कोई फिल्म कल्ट फिल्म है इस परिवार के ऊपर तो वो अवतार ही है
0: जी। और जब वो हंसाना चाहे तो वो हंसा लेते थे, जब वो रुलाना चाहे तो अचानक ही अगले सीन में वो रुला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा लगता है।
1: उनका स्टाइल जो हुआ करता था, अरे पुष्पा, यू नो जो उनका स्टाइल था, इट वाज, वो कभी कहा जाता ना कि सबसे पहले और सबसे आखिरी सुपर डुपर बिग स्टार
0: जी, उनका एक अलग ही चार्म था। नमक हलाल देख लीजिए आप, उसमें वो आते हैं कुछ और बन के आते हैं, फिर उनके किरदार के साथ हम पूरी फिल्म में चले जाते हैं।
1: मुझे लगता है राजेश खन्ना जी, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार साहब, ये मुझे लगता है इन जैसे ना कभी कोई होगा ना कभी कोई था।
0: वो एक मील का पत्थर है, उनको हम देख के आगे बढ़ते हैं, उनको पता चलता है कि सही डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या किया जा सकता है।
1: ये सब असली महानायक है हमारी इंडस्ट्री के, जिनको देख देख के हम सब बड़े हुए हैं।
0: तो एक अगर एक्टर के तौर पर हम देखें तो एक तो जीवन होता है जो आप पर्दे के सामने निभा रहे हैं, एक जीवन है जो आप का अपना निजी जीवन है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि निजी जीवन में बहुत सी कुछ परेशानियां चल रही हैं या कुछ अलग भाव है निजी जीवन का उस वक्त, लेकिन पर्दे पर तो आपको कुछ और ही निभाना है, तो निजी जीवन और करियर को अलग अलग रखना कैसे संभव है, क्या करते हैं आप, कैसे डील करते हैं कि हो सकता है कि कुछ पर्सनल लॉसेस हमने झेल रहे हो उस वक्त में, लेकिन आगे तो हमें जाके वहां कॉमेडी करनी है, तो कैसे वो दोनों चीजें कैसे अलग करते हैं?
1: बहुत मुश्किल होता है कई बार, लेकिन मैं पर्सनली बहुत इस चीज पे मैंने बहुत कोशिश की है और इस चीज पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो अगर इस चीज को करें तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में बहुत अच्छा फायदा होने हो सकता है और थोड़ी शायद उनको मदद मिल जाए
0: जी।
1: वो ये कि मैंने हमेशा से अपना एक प्रिंसिपल, एक असूल बनाया कि विनीत राणा जो है वो, उसे जब कॉल टाइम मिलता है कि आप 9 बजे सेट पर पहुंचिए, तो जब तक उसकी आंख खुलती है वो तब तक नॉर्मल एक विनीत रहना है
0: जी।
1: और जैसे ही वो तैयार होना शुरू करता है, और अपने करियर के इन 20 सालों से ज्यादा अपने करियर में मैं कभी भी सेट पे लेट नहीं पहुंचा हूं
0: जी।
1: मैं हमेशा 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूं हमेशा। तो जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूं,

0: वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान एक जन्म लेता है जिसको सेट पे जाना है. वो एक एक्टर, एक कलाकार विनीत रहना है. वो जैसे ही सेट पे पहुंचता है, वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है, तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है. उसका विनीत रहना से कोई लेना देना नहीं है. और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है, और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और गाड़ी में बैठता है अपने घर जाने के लिए, वो वापस वो विनीत रहना है जो अपने वापस परिवार के पास जा रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. और वो अपने सेट से ना कुछ घर लेकर जा रहा है और ना वो अपने घर से कुछ सेट पर लेकर जा रहा है. ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसको अगर अपनी जिंदगी का उसूल बनाया जाए तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिल सकती है और बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल सकती है, जहां आप अपनी निजी जिंदगी को और अपनी पर्दे वाली जिंदगी को, या आप कहीं भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या आप सरहद पे काम कर रहे हैं, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है. और इस स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन को अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, और ये हर इंसान के अंदर है, सिर्फ इतना है कि आप उसको अपने साथ कैरी करते हैं. मुझे लगता है अगर वो हर इंसान अपने अंदर एक्टिवेट कर ले तो ये किसी के लिए भी मुनासिब है.
1: फिर ये इतना संभव, इतना मतलब आसान नहीं है जितनी आसानी से आप बता रहे. शायद इतने साल से काम करते
0: मैं कहूंगा कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा ये चीज काम नहीं आती. कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं. मुझे याद है जब मैं अपने मायका सीरियल की शूटिंग कर रहा था और मैं अपने शॉट के बीच में था, और मुझे बार बार घर से कॉल आ रहा था, मेरी मॉम का कॉल आ रहा था, मेरे भैया का कॉल आ रहा था. तो क्योंकि मेरा फोन वाइब्रेशन पे बज रहा था और मैं उठा नहीं पा रहा था, तो जैसे ही मैंने अपना शॉट दिया और मैंने इमिडिएटली फोन निकाला, तो उस पर काफी सारे मिस कॉल्स थे. तो मैंने जब घर पे कॉल किया तो मुझे पता चला कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है.
1: अच्छा.
0: और मैं बिल्कुल सुन्न रह गया, और उनको सर्जरी के लिए ले जाया जाने वाला था. तो मेरे लिए वो ऐसा एक पल था जहां पर मैं सब भूल गया. और मैं कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने अपने प्रोडक्शन को बोला कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए
1: जी.
0: और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, अपने आप को काम एंड कंपोज किया, पूरे दिन का काम खत्म किया, सीन पूरा खत्म करके मैं अपने मेकअप रूम में गया. मैंने थोड़ा ब्रेक लेकर अपने घर वालों से बात की. मैंने पूरा जितने दिन तक हमारा वापस बैंक नहीं बनते एपिसोड्स, तब तक मैंने उन दिनों तक काम किया. काम खत्म किया तब तक मेरे डैड को एडमिट कर चुके थे, वो सब हुआ, और उसके बाद ही मैं पहुंच पाया. तो ये सब सैक्रिफाइसेस होते हैं जो इंसान करता है, तब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन काम नहीं आता. बट मुझे लगता है कि ज्यादातर जो ऐसे ओकेजंस लाइफ में हो, तो घर का काम अपने ऑफिस में ना लिया जाए, और ऑफिस का काम जो है या अपने काम का काम जो है वो घर पे ना लिया जाए, तो बैलेंस मेंटेन करना आसान रहता है.
1: और एक जिम्मेदारी भी समझनी जरूरी है कि हम जिस काम के लिए रुके हैं तो उनको किस तरह से हम निभाएं. तो अब आपकी पसंद का एक गीत सुन लें, क्योंकि ये भी तो हमारा ही काम है.
0: जी बिल्कुल. मैं चाहता हूँ एक चांदनी फिल्म का जो चांदनी टाइटल ट्रैक है वो सुनाया जाए, क्योंकि इससे जुड़ी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा.
1: बिल्कुल.
2: चांदनी

Yeah.

0: तो विनीत जी, गाना तो हमने सुन लिया, लेकिन आपने जो इतना सस्पेंस बना रखा है कि कहानी क्या बताने वाले आप इससे जुड़ी हुई?
1: तो एक मैं जब बहुत छोटा था तो एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की रहती थी हमारे घर के पास, और कहते हैं ना चाइल्डहुड क्रश होता है
0: जी।
1: कि आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि वो एक बचपना होता है, वो आप किसी को आप, और वो बाकी के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया करती थी वो, और वो शायद कुछ स्कूल में पढ़ती थी, मैं बहुत छोटा था
0: जी।
1: तो ऐसा लगता था तब कि हमारे स्कूल में जितनी भी टीचर्स हों वो ऐसे ही हों, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ाती थी
0: जी।
1: और ये जो लड़की थी जो ट्यूशंस लेके सबको पढ़ाती थी, ये बहुत कभी किसी बच्चे को नहीं डांटती थी। तो मैंने उनको देखता रहता था। तो उनका नाम चांदनी था
0: जी।
1: और वो अक्सर अपने घर में यही इसी फिल्म के, चांदनी फिल्म के ही गाने अपने घर में चलाया करती थी। तो जैसे ही वो गाने बंद होते थे तो पता चलता था कि वहां ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो गई। जैसे ही गाने दोबारा चलना स्टार्ट होते थे तो फिर ऐसा समझ में आता था सबको कि सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं। तो ये रिपीटेड हम सुनते थे, तो इसीलिए मुझे ये गाना बहुत याद
0: की
1: है।
0: उन यादों तक जाता है गाना। तो आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है, बचपन की बातें तो आमतौर पे सबको याद रहती है, लेकिन स्क्रिप्ट्स कैसे याद रखते हैं, संवाद कितनी जल्दी याद कर लेते हैं, क्या करते हैं उसके लिए?
1: मैंने प्रैक्टिस की है इसके लिए, स्क्रिप्ट याद करने की। और मैं बहुत, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो मुझे, मैं ये बहुत जिम्मेदारी एज एन एक्टर समझता हूँ कि जो एक लेखक ने जो स्क्रिप्ट पे उतारा है, मैं एज एन एक्टर उसके साथ बहुत ज्यादा चेंजेस ना करूं, अनलेस एंड अंटिल इट इज रिक्वायर्ड, जब तक कि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं खुद से नहीं वो करता, हमेशा अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लेखक के साथ और निर्देशक के साथ डिस्कशन करने के बाद ही मैं उसको चेंज करता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि मेरी जितनी भी लाइंस हों वो मैं पूरी बाय हार्ट याद करूं, और याद करने से पहले मैं पहले उनको इतनी बार पढ़ता हूं जब तक कि मैं वही ना बन जाऊं जो ये लाइंस बोल रहा है
0: जी।
1: मैं विनीत बन के उनको कभी भी नहीं याद कर पाता। जैसे मैं जब साईं बाबा शो भी कर रहा था तो शिरडी वाले साईं बाबा की जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है बहुत ही रिसर्च करके सब कुछ लिखा गया था और बहुत ही जिम्मेदारी वाला कैरेक्टर है और बहुत जिम्मेदारी वाली एक कहानी है, तो हम लोग ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े मोनोलॉग्स होते थे जो मुझे बोलने पड़ते थे। जब तक मैं उनको फील ना करूं कि मैं एक्चुअली लोगों को ये चीज बोल रहा हूं, वो याद करके नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि मैं अपने डायलॉग्स को पूरा फील करके उसको अपने अंदर याद करने के बजाय उसको एज ए कन्वर्सेशन अपने अंदर पूरा घोल लूं, फिर वो नेचुरली अपने आप निकल जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप फिर वही बन जाते हैं। और आप एक्टर के अलावा प्रोफेशनल ट्रेंड डिस्क जॉकी भी हैं, डीजे भी हैं
1: जी।
0: तो अगर आपकी पसंद के कुछ गाने या ट्रैक आपको मिक्स करने कहा जाए तो वो कौन से गीत हो सकते हैं?
1: मुझे लगता है कि हमारे आरडी बर्मन जो थे उनके ट्रैक्स रिमिक्स करना मतलब हर डीजे का मुझे लगता है सपना भी रहता है और एंजॉय भी करता है हर डीजे। उनके जितने भी ट्रैक्स हैं, आप उनके कितने भी पुराने गाने देख लीजिए, आइटम नंबर्स और तड़कते हुए भड़कते हुए गाने उन्होंने ही, यू नो, डिस्को और इस तरह के गाने, एक आरडी बर्मन साहब और उनके बाद बप्पी लहरी, इनके गाने जितने भी हम चाहें रिमिक्स करना चाहें हम कर सकते हैं। और म्यूजिक से मेरा बहुत ज्यादा लगाव है, इसलिए इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैंने डीजेइंग चूज किया और मैं गया, मैंने प्रॉपरली उसकी क्लासेस ली, मैं जाया करता था और मेरे पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट है और मैंने कुछ गिग्स भी किए क्लब्स में जाके, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उसको प्रोफेशनली या बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, लेकिन अब शायद सोशल मीडिया पे मैं कुछ वीडियोस डालूं। लेकिन अगर मुझे रिमिक्स करना हो तो मैं यार बिना चैन कहां रे उसको 100% रिमिक्स करना चाहूंगा।
0: तो वही गीत यहां सुन भी लेते हैं हम।
1: बिल्कुल।

0: तो विनीत जी, आपके बारे में इतना कुछ हमने जाना और इतना कुछ आपने अपने बताया अपने बारे में, बस अगर हमारे श्रोताओं के लिए और आपके दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या होगा, वो क्या संदेश होगा उनके लिए?
1: मैं मेरे श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आज अगर मैं अपने आप पर, अपने सपनों पर विश्वास करते हुए, अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के उसको सुनते हुए अगर उसकी दूसरी तरफ आकर बैठ सकता हूँ, तो जिंदगी में कहीं पर भी कोई भी मुझे अगर सुन रहा है, तो मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि अपने ऊपर और अपने टैलेंट के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करके कदम आगे बढ़ाते रहिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी शायद ऐसे ही रेडियो के इस तरफ होंगे और इसी तरह लोगों को शायद इंस्पायर कर रहे होंगे और अपने आप पर विश्वास करने की उनको प्रोत्साहन दे रहे होंगे और एनकरेज कर रहे होंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये बात कही विनीत जी। आपके भविष्य के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, और उम्मीद है कि हम आपसे मिलते रहेंगे आपके किरदारों के माध्यम से भी और निजी जीवन में भी।
1: धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैंने श्रोताओं से बात की, बहुत मजा आया और दोबारा आना चाहूंगा और गाने सुनने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद।
0: धन्यवाद विनीत जी।
2: अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM पर। कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप, वेब्स OTT ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए akashvani.gov.in पर भी सुन रहे हैं। जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, डिग्री की नहीं। हमारी सच्ची डिग्री है हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारे जीवन की सरलता। अगर ये डिग्री नहीं मिली और हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। मुंशी प्रेमचंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सभ्यता चरित्र का वह रूप है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। आपने ट्यून किया है 101.9 मेगाहर्ट्ज और सुन रहे हैं अयोध्या की धड़कन आकाशवाणी अयोध्या को। अब से लेकर रात्रि 11:10 तक मैं यानी आपका रेडियो दोस्त आरजे सदक रहूंगा आपके साथ आज के कार्यक्रमों को लेकर। शाम के 5 बज गए हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: नमस्कार दोस्तों, शाम की इस खुशनुमा बेला में आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शिखा मौर्य। मित्रों, कहते हैं कि उम्र का यह पड़ाव सिर्फ एक दौर नहीं बल्कि कुछ नया कर दिखाने का जज्बा है, और आज के इस अंक में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की। वहीं भारतीय इतिहास से सेगमेंट में जानेंगे पूर्व वैदिक काल के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, आज है मंगलवार, तो आप सभी का पसंदीदा सेगमेंट भी होगा चक्रव्यूह, जिसमें सवाल हमारे और जवाब आपके होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफर। मित्रों, आज तारीख है 8 सितंबर, कैलेंडर का एक पन्ना बेहद खास, क्योंकि आज हम सब मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अक्षरों को पहचानना, पढ़ना, लिखना और सीखना। सोचिए मित्रों, अगर हमारी जिंदगी से ये अक्षर गायब हो जाएं तो दुनिया कैसी दिखेगी? ना कोई अखबार होगा, ना मोबाइल पर चैटिंग होगी, ना किताबों की कहानियां होंगी, और ना ही सड़कों पर लगे साइन बोर्ड होंगे। वहीं आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा साक्षर होना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि यह हमें अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, यूनेस्को ने 17 नवंबर 1965 को यह तय किया कि हर वर्ष 8 सितंबर को दुनिया भर में साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। वहीं वर्ष 1966 में पहली बार इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था, और तब से लेकर हर वर्ष हम इस दिन को मनाते हैं ताकि कोई भी इंसान अक्षरों की इस जादुई दुनिया से पीछे न रह जाए। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आज के दौर में साक्षर होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ स्कूल या कॉलेजेस की डिग्री पा लेना ही साक्षरता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बल्कि आज के डिजिटल युग में साक्षर होने का मतलब है धोखेबाजी व अफवाहों से खुद को बचाना। और दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल पर आने वाले किसी फर्जी मैसेज या फेक न्यूज को पहचान सकते हैं तो आप सही मायनों में साक्षर हैं। वहीं साक्षरता हमें आत्मनिर्भर बनाती है, साथ ही हमारे अंदर के डर को मुक्त कर हमें समाज में सर उठाकर जीना सिखाती है। चलिए दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। हमारे ही देश के एक छोटे से गांव में 60 वर्ष की एक दादी रहती थी, जहां पूरी उम्र उन्होंने अंगूठा लगाया। जब भी वह बैंक जाती या राशन की शॉप पर जाती तो उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कोई उनकी जमीन या पैसों पर कब्जा न कर ले। परंतु एक दिन उनकी पोती ने जिद पकड़ ली। पोती ने कहा, दादी मैं तुम्हें अपना नाम लिखना सिखाऊंगी। दादी झिझकी और बोली, बेटी इस उम्र में मैं क्या पढ़ूंगी। पर पोती नहीं मानी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आखिरकार उसके बाद जब दादी ने पहली बार बैंक के फॉर्म पर कांपते हाथों से अपना नाम लिखा, वहीं दादी की आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर एक मुस्कान थी। और दोस्तों, उसी दिन ही दादी ने कहा, आज मुझे महसूस हो रहा है कि आज मैं आजाद हो गई हूँ। तो मित्रों, देखा आपने, यही ताकत है साक्षरता की, क्योंकि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। जहां अक्षरों का उजाला किसी भी उम्र में जिंदगी को रोशन कर सकता है। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमें सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा हमसे होती है। साथ ही आइए हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें, ईच वन टीच वन, यानी प्रत्येक व्यक्ति हर एक को पढ़ाए, क्योंकि दोस्तों जब सब पढ़ेंगे तभी तो सब बढ़ेंगे। ये थी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर, और इसी के साथ आइए सुनते हैं ये सॉन्ग।

0: मित्रों, आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट भारतीय इतिहास से में हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल की, जिसे हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वही दौर था जब भारत के उत्तर पश्चिम में यानी सप्त सिंधु के किनारे एक नई सभ्यता सांस ले रही थी, जब ना बड़े बड़े शहर थे, ना कंक्रीट की इमारतें और ना ही आज की भागदौड़, बल्कि उस समय चारों तरफ हरे भरे घास के मैदान थे, कलकल करती नदियां और आकाश में गूंजते थे पवित्र मंत्र। साथ ही मित्रों, यह वही समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का, जिसने हमारी भारतीय संस्कृति की मजबूत नींव रखी और इस काल के लोग खुद को आर्य कहते थे, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। साथ ही ये लोग सप्त सिंधु इलाके में रहते थे। इसमें सिंधु, सरस्वती और पंजाब की पांच नदियां शामिल थी। इनमें से सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता था। उस समय के लोग कबीलों में निवास करते थे, जहां वे घास फूस और मिट्टी के घरों में प्रकृति की गोद में रहते थे और इन कबीलों को जन कहा जाता था। हर कबीले का एक राजा होता था जिसे गोपा कहा जाता था और उनका मुख्य काम था कबीले और गायों की रक्षा करना। साथ ही दोस्तों, बात करें तो उस समय भी राजा अपने खुद का फैसला नहीं ले सकता था, बल्कि उस समय उन पर नजर रखने के लिए सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं होती थी। सभा में कबीले के बुजुर्ग बैठते थे, वहीं समिति आम जनता की सभा थी जहां हर कोई अपनी बात रख सकता था। यानी लोकतंत्र की पहली झलक हमें यहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में पैसा या नोट नहीं होते थे, बल्कि उस दौर में जिसके पास सबसे ज्यादा गायें हों वही व्यक्ति धनी माना जाता था। गायों को अघन्या कहा जाता था, यानी जिसे कभी मारा ना जा सके। और दोस्तों, अब आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय में जो युद्ध होते थे वो जमीन के लिए नहीं बल्कि गायों को बचाने के लिए होते थे। खेती और पशुपालन ही उनकी आय का प्रमुख स्रोत था। लोग मुख्य रूप से जौ उगाते थे, तांबे व कांसे के औजारों का इस्तेमाल होता था। अब आते हैं दोस्तों उस पहलू पर जिसने इस काल को अमर बना दिया, धर्म और ईश्वर। इस काल के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे बल्कि प्रकृति को ही देवता मानते थे। उनके सबसे प्रिय देवता थे इंद्र और इन्हें वर्षा का देवता माना जाता था। वहीं दूसरे देवता थे अग्नि, जो इंसानों की प्रार्थनाओं के संदेश वाहक थे। साथ ही नियम व कानून के तीसरे देवता थे वरुण और इन देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। जहां दोस्तों, इसी काल में ही सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई, जिसमें 10 मंडल और 10-28 सूक्त है और ये मंत्र आज भी हमारी संस्कृति की रीढ़ हैं। साथ ही बात करें उनके समाज की, तो परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। वहीं पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को भी बहुत सम्मान प्राप्त था। वह भी सभा और समिति की बैठकों में हिस्सा लेती थी। अपाला, घोषा, लोपा मुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं के नाम आज भी ऋग्वेद में मिलते हैं। तो दोस्तों, पूर्व वैदिक काल हमें सिखाता है कि भले ही आज हम 21वीं सदी के दौर में हैं, लेकिन कबीले के उस खुले आसमान और सादगी भरा जीवन आज भी हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। साथ ही प्रकृति की गोद में फली फूली यह सभ्यता हमें सिखाती है कि प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनाना ही नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ हमें तालमेल बिठाकर जीना है। दोस्तों, ये था भारतीय इतिहास से सेगमेंट में पूर्व वैदिक काल। दोस्तों, अब आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अब बारी है हमारे खास सेगमेंट चक्रव्यूह की। फिलहाल एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
2: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
3: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान, वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा सुंदर और

0: स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलीथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: मुझे नौ लाख मांगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
6: अंतराल के बाद आप सभी मित्रों का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हमारे पिछले चक्रव्यूह संख्या 620 के सवालों व जवाबों को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव द्वारा उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार दिया गया है, उस पुरस्कार का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ओली दाराजाली दोस्तलिक। हमारा दूसरा प्रश्न था, SCO का पूरा नाम क्या है? शंघाई सहयोग संगठन। हमारा तीसरा प्रश्न था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? इसका उत्तर है 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। मित्रों, इसी तरह हमारा चौथा प्रश्न था, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? उत्तर है सन 1526 में बाबर ने। पांचवा प्रश्न था, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उत्तर है वुलर झील, जम्मू कश्मीर। छठवां प्रश्न था, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन में है? इसका जवाब है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। दोस्तों, इसी तरह हमारा सातवां व अंतिम प्रश्न था, 2026 पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा और उसका अंतिम मुकाबला किस टीम से हुआ? उत्तर है 8वें स्थान पर, बेल्जियम से। तो दोस्तों, ये थे हमारे चक्रव्यूह संख्या 620 के प्रश्न व उनके सही उत्तर। और आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं कि हमारे किन किन साथियों ने चक्रव्यूह संख्या 620 के प्रश्नों को भेद लिया है, जिसमें गांव परसाटोला, जिला अंबागढ़, चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीहा, तुषारणी मसीहा, खुमेंद्र मसीहा, दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन एले, नवदीप एले, ग्राम ममना, जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, हिंदुस्तान रेडियो मित्र पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, इन सभी साथियों ने हमारे चक्रव्यूह को सही भेद लिया है। छत्तीसगढ़ कोयलारी से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर, पूर्णेंद्र चंद्राकर, साहिल चंद्राकर, वहीं भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, मयंक पुष्पांजलि, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर, छत्तीसगढ़ पतरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल, इन सभी साथियों ने सही जवाब दिए हैं। ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना और आशुतोष अंगारे, छत्तीसगढ़ से दुर्गा प्रसाद साहू और आरती साहू, ग्राम पंचायत पठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, साथ ही दोस्तों ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, इन साथियों ने सही भेदा है। दत्तरेंगी भाटापारा से ही

मीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा और नोखेलाल वर्मा। साथ ही वोडशरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी विभूति साहू। मन की लोरमी छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे, रजनी तुषार खांडे और समीर खांडे ने। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा ने भी। ग्राम गुड़राज से पेंटर मनोज साहू, श्रीमती चित्रेखा साहू, देवेंद्र साहू, लवीना, चंचल, वासनी और गरिमा साहू। यवतमाल विदर्भ से सतोष खड़ से और विनोद खड़ से। ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया। वहीं आशा रेडियो श्रोता संघ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहाड़कर, श्रीमती सरिता, प्रणीता सिद्धांत, अर्जुन गोहाड़कर और टुक टुक। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, सुमित कुमारी ध्वनि, परी प्रिंस एकांश गोहाड़कर। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। इन साथियों ने हमें सही जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये गजभिये। रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदिनी साहू, मनीष साहू और मयंक साहू। साथ ही दोस्तों संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। और पताल लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। मित्रों ये थे हमारे उन साथियों के नाम जिन्होंने चक्रव्यूह संख्या 620 के प्रश्नों को भेज लिया था। और अब दोस्तों आप पेन व पेपर के साथ बैठ जाइए और हमारे चक्रव्यूह संख्या 621 के प्रश्नों को ध्यान से सुनिए व नोट भी कीजिए, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब से मनाया जाता है। एक बार फिर से दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब से मनाया जाता है। वहीं हमारा दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई और इसमें कुल कितने मंडल व सूक्ति हैं। एक बार फिर से दोस्तों, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई और इसमें कुल कितने मंडल व सूक्ति हैं। इसी तरह दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, अगस्त 2026 में टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। दोस्तों एक बार फिर से, अगस्त 2026 में टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। साथ ही दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किस स्थल को शामिल किया गया है। हाल ही में भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किस स्थल को शामिल किया गया है। साथियों इसी तरह पांचवा प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की। मित्रों हमारा छठवां प्रश्न है, डिफ्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। डिफ्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। मित्रों हमारा आज का सातवां व अंतिम प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी। एक बार फिर से दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के चक्रव्यूह संख्या 621 के कुछ प्रश्न। उम्मीद है कि प्रश्नों को आपने अच्छे से नोट किया होगा। वहीं दोस्तों चक्रव्यूह क्रमांक 621 के प्रश्नों के उत्तर भेजने की अंतिम तिथि 14 सितंबर 2026 है और इसका प्रसारण दिनांक 15 सितंबर 2026 को होगा। और प्रश्नों के उत्तर yuvavani@gmail.com पर लिख भेजें। और दोस्तों आइए यहाँ सुनते हैं ये सॉन्ग।

0: मित्रों, अब घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम से विदा लिया जाए। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें, कल के कार्यक्रम में क्या रहेगा खास आप सभी के लिए। चर्चा होगी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पर। व्यक्ति विशेष सेगमेंट में जानेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, कल है बुधवार तो सेगमेंट होगा खेल संसार भी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए गीत संगीत और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल, और इसी के साथ अपनी दोस्त शिखा मौर्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी अयोध्या है 101.9 FM पर। कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप, वेब ओटीटी ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए akashvani.gov.in पर भी सुन रहे हैं। 5:30 हो चुके हैं, वक्त है कार्यक्रम लोक संगीत का।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
4: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: कार्यक्रम लोक संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं ये आल्हा, जो कि हमारी लोक परंपरा का एक बहुत ही प्रसिद्ध कह सकते हैं गायन का एक तरीका है। और गायक कलाकार हैं रामविलास यादव और उनके साथी।

तौबा का जाई नबे नुलका वादा कर मैया ते आयन हम ना लौटे बिना शिकार और बिना शिकार लिए जो लौटे तो घर मा माता।

0: अरे
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: जी हाँ श्रोताओं, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी अयोध्या है आपसे ट्यून्ड 101.9 मेगा हर्ट्ज पर। लोक संगीत का ये कार्यक्रम है और आपको याद दिला दें कि 6:30 पर भी लेकर हाजिर होंगे आपके लिए लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। इसके अलावा आज रात 8:15 पर गीत गुंजन, 9:15 पर महफिल गजल और रात 9:30 से आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या होगा। अभी सुनिए अरविंद मौर्य और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।
4: कपिला बदनवा मधव पुसवा में कपिला बदनवा मुर्खी सनवा भैया अरे भोर।

0: युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद कर सकता है तो वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है।
1: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC की बैठकों में, उस चर्चाओं पर आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान AI एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए आज शाम 7:45 से रात 10 तक मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
2: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री सहयोग साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stones for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara in Gujarat. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the full completion and operationalization of the freight corridor network. Mr. Modi also flagged off freight train services from New Sanand, New Makarpura, and new

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। याद दिला दें कि 6:10 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 MHz FM बैंड पर। लोक संगीत कार्यक्रम के बाद शाम को 6 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के संपर्क में है और संघर्षों को रोकने में मददगार सुझावों और विचारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो
1: कार्यक्रम आप सुन रहे थे शाम सुहानी, ये आकाशवाणी अयोध्या। लीजिए सुनिए समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में।
2: शर्मा, आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य गुजरातस्य वडोदरायां 35,000 crore rupees विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासः च कृतः। उक्तं च यत् भारतं वैश्विकोत्पादन केन्द्र रूपेण उदितमस्ति। मुंबय्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी 26,000

0: निगमस्य ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य उद्घाटनं विधास्यति। बॉम्बे उच्च न्यायालयेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं प्रति 19-2000 वर्षे प्रदत्तं वक्तव्यं सम्बद्धे मानहानि प्रकरणे कांग्रेस सांसदस्य राहुल गांधिनः विरुद्धं प्रत्याख्यापितस्य समाह्वानपत्रस्य निरस्तीकरणं निराकृतम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य त्रिदिवसीय श्रीलंका यात्रायै कोलंबो नगरं सम्प्राप्तवान्। अपि च अहमदाबादे अनुष्ठीयमानायाम् ऐषमः विश्व दिव्यांग धनुर क्रीडायां भारतेन 2 स्वर्ण पदके 1 रजत पदकं च अधिगतम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य गुजरातस्य वडोदरायां 35,000 crore rupees मूल्यानां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासः च कृतः। प्रधानमन्त्रिणा पश्चिम समर्पित मालवाहक मार्गस्य 3 प्रमुखाः खण्डाः राष्ट्राय समर्पिताः, येन मालवाहक मार्गजालस्य पूर्णं परिचालनं सम्भविष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी न्यू सानन्द, न्यू मकरपुरा, न्यू उम्बरगांव तथा न्यू JNPT इत्येतेभ्यः स्थलेभ्यः मालवाहक रेल यान सेवानां हरितध्वजं प्रदर्श्य शुभारंभं कृतवान्। तेन टांडा मार्गस्य वडोदरायाः च मध्ये नवीन यात्री रेल सेवायाः शुभारंभोपि कृतः। एषा सेवा अलीराजपुरस्य दूरस्थेषु जनजातीय क्षेत्रेषु राष्ट्रीय रेल जालस्य संपर्कं स्थापयिष्यति। विशाल जनसमूहं संबोधयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतं वैश्विकोत्पादन केन्द्र रूपेण उदितमस्ति तथा अधुना देशः स्वयमेव उन्नतयोः रेल मेट्रो चेत्येतयोः यानयोः कक्ष निर्माणं करोति।
1: आज 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमन्त्री उक्तवान् यदस्याः परियोजनायाः परिकल्पना 6-2000 वर्षे कृता, किन्तु सा बहूनि वर्षाणि निष्क्रियावस्थायाम् आसीत्। तद्विपरीतं गतदशके द्रुतगतिना कृतस्य कार्यान्वयनस्य फलस्वरूपं राष्ट्रियापूर्ति व्यवस्था पूर्णतया परिवर्तिता अस्ति। अद्य अयं मालवाहक मार्गः द्रुतगत्या विकासमानस्य भारतस्य जीवनरेखारूपेण कार्यं करोति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् मालवाहनस्य यात्री रेलमार्गेभ्यः पृथक्करणेन कार्यक्षमतायां महत्वपूर्णः परिष्कारः अभवत्। यात्राकाले महन्न्यूनतया इन्धनस्य पर्याप्तं संरक्षणं भवति, पर्यावरणे दुष्प्रभावः न्यूनीभवति, सम्पूर्णराष्ट्राय च द्रुततरा स्वच्छा च आपूर्तिव्यवस्था स्थापिता भवति।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। विकसित भारत के लिए हमें ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए जो सुगम भी हो और जमाने के हिसाब से जरा तेज भी हो।
0: कार्यक्रमावधौ प्रधानमन्त्री मोदी 97,000 crore rupees त्रयाणां रेल विस्तार योजनानां शिलान्यासमपि कृतवान्। मुम्बय्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 26,000 crore rupees ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य अद्य उद्घाटनं विधास्यति। अस्य वार्षिक सम्मेलनस्य 7th संस्करणमद्य समारब्धं सत् आगामिनि सितम्बर मासस्य 11 दिनाङ्के समाप्तिमेष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सामाजिक सेवां स्वच्छतां च प्रभावी दैनन्दिन आचरण रूपेण स्वीकर्तुम् अथ विकास योजनानां लाभं समाजस्य प्रति प्रापयितुं च नागरिकेभ्यः जनप्रतिनिधिभ्यश्च आह्वानं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा नवसारीत्यत्र नवनिर्मितस्य भाजपा कार्यालयस्य उद्घाटनानन्तरम् आयोजिता विशाल जनसभा सम्बोधिता। प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनायाः

0: परिवर्तनकारि प्रभावस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् अनया योजनया लघुमार्ग विक्रेत्रेभ्यः पथ विक्रेतृभ्यश्च सुलभ ऋणस्य अथ आधुनिक अंकीय देय सौविध्यानां च सुलभ प्राप्तिं सुनिश्चित्य वित्तीय समावेशनं प्रवर्धितम् जनस्वास्थ्यस्य स्वच्छतायाश्च महत्वं प्रतिपादयन् प्रधानमन्त्री स्वागमनात् पूर्वं स्थानीय प्रशासनेन निवासिभिश्च संचालितस्य व्यापकस्य सूक्ष्म स्वच्छताभियानस्य प्रशंसां कृतवान् प्रधानमन्त्री मोदी जनकल्याणाय निरन्तर समर्पणस्य कृते दलकार्यकर्तृणामपि प्रशंसां कृतवान् इतः पूर्वमद्य प्रधानमन्त्री मोदी वडोदरायां 35,000 कोटि रूप्यतोप्यधिक मूल्यानां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान् संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति असम विधानसभायाः भूतपूर्व सदस्याय विश्रुत संगीतज्ञाय भारत रत्न विभूषिताय डॉक्टर भूपेन हजारिका महोदयाय तस्य शततमे जन्मजयन्त्यवसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः गृहमंत्री अमित शाहश्च अद्य स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समार्पयन् सांप्रदायिक संचार पटलीय संदेशे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रत्यपादि यत् डॉक्टर हजारिका महोदयस्य स्वरमाधुरी असम प्रदेशस्य आत्मानं पूर्वोत्तर भारतस्य च सांस्कृतिक चैतन्यं समग्र राष्ट्रे प्रासारयत् अपरस्मिन् संदेशे उपराष्ट्रपतिना राधाकृष्णन इत्यमुना न्यरूपयत यत् स्वीयेन आत्मस्पर्शिना संगीतेन ओजस्वीभिः शब्दैश्च डॉक्टर हजारिका असमस्य पूर्वोत्तर भारतस्य अथ च विशाल मानव संवेदनानां जीवंत रूपं संगीतबद्धम् अकरोत् बॉम्बे उच्च न्यायालयेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं प्रति 19-2000 वर्षे प्रदत्तं वक्तव्यं सम्बद्धे मानहानि प्रकरणे कांग्रेस सांसदस्य राहुल गांधिनः विरुद्धं प्रत्याख्यापितस्य समाह्वानपत्रस्य निरस्तीकरणं निराकृतम् न्यायमूर्तिनः एन आर बोरकर इत्यस्य एकलपीठेन राहुल गांधिनः सा याचिका निरस्तीकृता यस्यां तेन स्वविरुद्धं न्यायालयेन प्रारब्धस्य कार्याचरणस्य आदेशः आक्षिप्तः आसीत् तथापि उच्च न्यायालयेन 21-2000 वर्षे प्रदत्तः स्वस्य सह निर्देशः यथावत् स्थापितः यस्यान्तर्गतं दण्डाधिकारिणः पुरतः श्रवणं 6 सप्ताहं यावत् स्थगितम् आसीत् रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य त्रिदिवसीय श्रीलंका यात्रायै कोलंबो नगरं सम्प्राप्तवान् तस्य यात्रा भारत श्रीलंकयोः मध्ये द्विपक्षीय रक्षा सहकारस्य सामुद्रिक सहकारस्य सुदृढीकरणोद्देश्येन आयोजिता अस्ति श्रीलंकायाः बंडारनायके अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके श्रीसिंहस्य श्रीलंकायाः उपरक्षामंत्री अरुणा जयशेखरः श्रीलंकायां भारतस्य उच्चायुक्तः संतोष झाः च हार्दं स्वागतं कृतवन्तौ अहमदाबादे अनुष्ठीयमानायाः विश्व दिव्यांग धनुर्क्रीडायाः तृतीय चरणस्य उपान्तिमे दिवसे भारतीय धनुर्धरैः त्रीणि पदकानि हस्तगतानि कृतानि इति वार्ताः
1: आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ये आकाशवाणी अयोध्या है एफएम 101.9 MHz कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप और वेव्स ओटीटी ऐप पर भी सुन रहे हैं 6:30 हो चुके हैं वक्त है लोक संगीत के कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव का आइए सुनते हैं
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
2: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से
4: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596240 और 7800-37-2222।
1: कार्यक्रम लोक संगीत में आप सभी का स्वागत है। पहली आवाज है शारदा सिन्हा की।

0: बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या से कालीचरण मिश्रा और साथियों की आवाजें इस लोकगीत में।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे सरगाओं की। ये आकाशवाणी अयोध्या है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप और वेब्स ओटीटी ऐप पर भी सुन रहे हैं, साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए akashvani.gov.in पर भी आप प्रोग्राम्स एंजॉय कर रहे हैं। शाम के 6:45 हो चुके हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का। तो श्रोताओं, पहले आज के शेष कार्यक्रमों की बात कर ली जाए। अब से थोड़ी देर बाद 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाड़ी हमारे लखनऊ केंद्र से। रात्रि 8:15 का वक्त होगा हमारे

स्टूडियो से फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गुंजन का। रात 9:15 पर सुनिएगा महफिल गजल और 9:30 से होगा आपका पसंदीदा दैनिक सजीव फनीन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। नंबर होगा 7376 80 40 90। आज ये प्रोग्राम आधे घंटे का होगा। 10 से खेल दर्पण हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। कल के कार्यक्रमों में सुबह 7:15 पर कार्यक्रम विवरण, 7:30 पर अमृत कलश और 8:15 पर सुर संगम पेश किया जाएगा। ये गैर फिल्मी गीतों का प्रोग्राम होता है। वहीं सुबह 8:30 से दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में आज की चर्चा का विषय होगा, आज की बात आप सुनेंगे कल के कार्यक्रम में, टेडी बियर बनाएं, स्वरोजगार से जुड़ें। इसी कार्यक्रम में समसामयिक जानकारी के साथ समाचार पत्रों की खबरें और फिल्मी नगमे होंगे शामिल। कल सुबह 9 से व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का दैनिक कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत पेश किया जाएगा और सुबह 9:30 से फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या होगा। टेलीफोन नंबर 7376 80 40 90 पर डायल करके सीधे जुड़ पाएंगे आप अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए दिलचस्प बातों के साथ। कल दिन में 12:30 पर होगा अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग और दोपहर 1 से फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा पेश किया जाएगा। दिन में 2 से सुनिएगा गैर फिल्मी गानों का रोजाना कार्यक्रम गीतांजलि। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम अंगना के अंतर्गत बेटी है अनमोल रतन विषयक चर्चा के अलावा फरमाइशी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक सुरमाला और स्वास्थ्य संबंधी घरेलू सुझाव भी दिए जाएंगे इस कार्यक्रम में। शाम 5 से युवाणी में चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। व्यक्ति विशेष सेगमेंट में भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जानकारी और युवाणी में होगा खेल संसार। शाम 5:30 से कार्यक्रम लोक संगीत, 6:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी, 6:30 से गूंजे स्वर गांव के और 6:45 से कार्यक्रम कृषि जगत में चर्चा का विषय रहेगा पीएम किसान मानधन योजना। डॉक्टर प्रशांत पांडे से पशुओं की टैगिंग और बीमा विषय पर बातचीत होगी, बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। कल के ही कार्यक्रमों में आप कल शाम 7:15 पर कार्यक्रम विवरण होगा, रात 8:15 पर आप सुनेंगे गीत गुंजन, 9:15 पर महफिल गजल और रात 9:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या का होगा प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के शेष और कल के प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी अयोध्या है, आप सुन रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। और अब कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन को सूचनाएं आप तक पहुंचा दें। जी हां, पहली सूचना है नवोदय विद्यालय पार्श्व परीक्षा के संबंध में। जवाहर नवोदय विद्यालय पार्श्व चयन परीक्षा 2027-28 कक्षा 9 एवं कक्षा 12 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 1 सितंबर से आमंत्रित किए जा चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। तो जिन्हें भी 9th या 11th में एडमिशन लेना हो वो इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर दें। एक और सूचना है क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के द्वारा, जिसमें एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है आशा भगवान बख्श सिंह महाविद्यालय परिसर पूरा बाजार में। ढेर सारी कंपनियां इसमें आ रही हैं और 4000 से ज्यादा रिक्तियों में आप हिस्सा ले सकते हैं। 18 से 40 आयु वर्ग के अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग कर पाएंगे। ये आकाशवाणी अयोध्या है, आइए अब आपको जोड़ते हैं अपने लखनऊ केंद्र से, जहां से अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसके प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: जय हिंद।
1: सरला बहनी,
2: हाँ रियाज भैया,
1: देखो अगर बात की जाए अपनी खेती पाती के, तो हमारे रुपया पैसा की जरूरत बीच बीच में पड़ा करा था। अगर अपने पास में पैसा नहीं रहा था तो ये लागत है के आगे जाए के हाथ फैलावा जाए।
2: भैया हाथ फैलाव जरूरत नहीं है, खेती में अपन बीज खाद ये सब लावे है ना।
1: हाँ,
2: अभी आसान होगा है और यह

0: काम आवत है अपन किसान क्रेडिट कार्ड, यो सरकार के द्वारा एक चलाई जा रही योजना है भैया। वह बनत है एक ठू कार्ड, अगर हम भैया वो कार्ड बनवा लेते ना तो हम सबके लिए बहुत फायदेमंद है। और वही के माध्यम से भैया हम अपने जो बैंक है वह से ले लेते कर्जा, और जब फसल हो जाए तो बेचो और समय से कर्जा चुकाओ भैया।
1: हम पंच जोन सर द्वारा हाथ फैलाई थे, कबो कबो ऐसा हुआ था कि समय पे कर्जा भी नहीं मिल पावत है, और जो मिलता है जो ब्याज रहा था इतना ज्यादा रहा था कि जितना हम पंच ले नहीं ना उससे ज्यादा अदा करे पड़ जाता है। मूल ई योजना जब से चली है तब से जो है बहुत कम ब्याज दर पर हम पंचन का इसे कर्जा मिल जाता है। जब भी हमें जरूरत हुए कर्जा ले ली जाए और अपन फसल बेच के जो है वो के समय पे हम पंच अदायगी जब कर दी थे तो अपन जो अतिरिक्त जो पैसा जाते है वो बहुत कम जाते है।
0: और देखो अगर हम सबका जानकारी रहा था ना तो यू खेती कर्म बहुत आसान हो जाता है। तो जान लीन जाए आज के खबरें।
2: उत्तर प्रदेश में किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य कृषि विकास योजना के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति ने कुल 286 करोड़ 46 लाख रुपए की कृषि परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की नई परियोजनाओं के लिए 185 करोड़ 33 लाख रुपए, जबकि पहले से चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 101 करोड़ 13 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं के तहत सरकारी कृषि केंद्रों का आधुनिकीकरण, उन्नत कृषि यंत्र, सिंचाई नलकूप और जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके अलावा मृदा परीक्षण और एकीकृत कीट प्रबंधन प्रयोगशालाओं को मजबूत करने, कृषि यंत्रीकरण और प्रशिक्षण, औद्यानिक विकास, मत्स्य बीज उत्पादन और बीज भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। मुख्य सचिव SP गोयल ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने, गुणवत्ता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और स्वीकृत धनराशि का 100% उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य इन परियोजनाओं के जरिए कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना और किसानों तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुँचाना है।
1: सरला बहनी,
0: हाँ रेज भैया,
1: देखो ये जो अपन खरीफ की फसलें चल रही हैं तो इमा हम पंच मक्का का भी खेती कर रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल कर रहे हैं भैया, और हाँ। देखभाल भी बहुत जरूरी है।
1: तो कहे ना आज की बातें सुन ली।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ खरीफ मक्का आपके खेत में है तो इस समय सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं फसल वैज्ञानिक डॉक्टर अमरीत सिंह यादव साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां खरीफ मक्के की फसल खेत में है तो इस समय सामयिक देखभाल में क्या कुछ करें किसान भाई बहन।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जो खेत में आपकी फसल खड़ी हुई है तो जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक हुई है और जिसके कारण से जल भरा हुआ है तो सर्वप्रथम वहां पर जो अतिरिक्त जल है उसको निकाल दिया जाए। इसके अलावा यदि समय से बोई गई फसल है तो वहां पर खड़ी फसल में उर्वरक का प्रयोग करना है, जिसमें एक एकड़ में लगभग 33 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए 33 किलोग्राम यूरिया एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। यदि आपके पास नैनो यूरिया उपलब्ध है तो उसके लिए एक बोतल 250 ml की एक एकड़ के लिए पर्याप्त है, उसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, जहां देर से मक्के की फसल बोई गई है तो वहां पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन।
4: अगर घुटने तक उसकी हाइट हो रही है तो वहां पर नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा लगभग 33 किलोग्राम नाइट्रोजन पर्याप्त है एक एकड़ के लिए। यदि उनकी लंबी अवधि की फसल है, कम अवधि की फसल है तो वहां पर वो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, क्या सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता है?
4: अगर खेत की तैयारी के समय जिंक का उपयोग कर दिया गया है बेसल डिस के रूप में तो आवश्यकता नहीं है। अगर कमी है और उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं कत्थई रंग के धब्बे पौधों पर तो उसके लिए जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं, जिसके लिए 2.5% का घोल बना करके छिड़क उतनी मात्रा में आप भुजा हुआ चूना ले लें और दोनों को मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। जनरली 150 लीटर से लेकर के 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
3: डॉक्टर साहब, बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं तो खरपतवारों का प्रबंधन कैसे हो खरीफ मक्के में?
4: इसके लिए चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवार दोनों ही होते हैं, तो यदि आपने उस समय खेत की बुआई के बाद आपने अगर पेंडी मेथिलीन का प्रयोग कर दिया है और समय से बुआई की हुई है तो अब जो अवस्था है उस अवस्था में आप एक निराई गुड़ाई ही कर सकते हैं
3: जी।
4: और यदि आपने देर से बोया है तो उस अवस्था में मतलब अगर 25 से 30 दिन की आपकी फसल है तो वहाँ पर टोपरा मेजोन या टेम्बोट्राइन जो रसायन है इसका भी उपयोग किया जा सकता है खरपतवार को नियंत्रण के लिए।
3: और इसका प्रयोग 20 से 30 दिन की अवस्था पर ही

0: कर सकते जी। डॉक्टर साहब, क्या मिट्टी चढ़ाना भी फायदेमंद होगा?
1: जी हाँ बिल्कुल, मिट्टी चढ़ाने से आपके जो वर्षा का पानी है वो जड़ों में नहीं लगता है, और हवा तेज चलती है उससे गिरने से बचाव के लिए भी मिट्टी चढ़ाना बहुत ही लाभदायक रहेगा, और उसके लिए मिट्टी पड़ने वाले हल से जो है आप जुताई करके उसको, तो उसमें मिट्टी चढ़ जाएगी फसल के ऊपर।
0: डॉक्टर साहब, इस समय फसल सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई तरह के हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रकोप इस समय हो रहा है।
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर साहब, बीमारियां कौन कौन सी हैं?
1: मक्का में प्रमुख रूप से तुलसीता रोग, गुलाबी उखटा रोग और पत्तियों का झुलसा रोग प्रमुख है। इससे सावधानी के लिए सर्वप्रथम तो आप जब प्रयोग कर रहे थे बीज का, तो हमको उन प्रजातियों का चयन करना चाहिए जो रोग प्रतिरोधी हों। यदि किसी के कारण से नहीं कर पाए हैं, बीजों की उपलब्धता नहीं हुई है, तो इस अवस्था में अगर आपका फसल पर रोग का प्रकोप दिख रहा है तो

0: नहीं हुई है, तो इस अवस्था में अगर आपका फसल पर रोग का प्रकोप दिख रहा है तो डाइथेन Z78 या जिनेब की 2.5 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके और 8 से 10 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करें। यदि बीमारी का प्रकोप हर वर्ष हो रहा है तो इसके लिए प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। गुलाबी उकटा के लिए बावेस्टिन या कैप्टन के अलावा जैसे वैलिडीमाइसिन जो दवा है 2.5 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए।
1: अच्छा, वैलिडीमाइसिन।
0: जी हाँ।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ पत्तियों का झुलसा रोग आता है वहाँ
0: ब्लीचिंग पाउडर आता है 33% का, उसका प्रति एकड़ के घोल बना करके मृदा को उपचारित करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जो हानिकारक कीट हैं उनमें ज्यादातर आजकल फाल आर्मी वर्म का प्रकोप हो रहा है, कहीं कहीं तना छेदक कीट का भी प्रकोप हो रहा है।
0: जी हाँ, इसके लिए जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन दो विधियां हैं। तो सर्वप्रथम हमको जैविक प्रबंधन करना चाहिए कि जब कीट दिखाई दे उसकी संख्या के हिसाब से हमको पहले जैविक प्रबंधन करना है। तो बुआई के 15 दिन बाद 1 एकड़ क्षेत्रफल में 3 ट्रैकोकार्ड रख दें और उसकी निगरानी करते रहें फसल,
1: यानी उसको काट करके जगह जगह लगा दें
0: पत्तियों में स्टेपल कर दें उसको,
1: ट्रैकोकार्ड।
0: जी। अगर फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप आपको दिख रहा है तो उसके लिए 5% नीम का तेल आता है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। 5 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा ट्राइकोग्रामा है या टेलिनोमस रेमस है, इसकी 50,000 से 10,000 की संख्या का जैविक कार्ड आता है, उसको पत्तियों में इसको लगा देना चाहिए
1: प्रति एकड़।
0: जी हाँ।
1: ट्राइको कार्ड या टेलिनोमस रेमोस,
0: जी
1: ये भी एक तरह का कार्ड होगा
0: जैविक प्रबंधन के लिए।
1: अगर नुकसान का स्तर अधिक है जहाँ फॉल आर्मी वर्म का, वहाँ
0: पर रसायन का संचित की जाती है, इसके लिए स्पाइनोटोरम 11.7%, इसकी 0.5 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें।
1: यानी स्पाइनोटोरम आधा ml दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें।
0: जी।
1: इसके अलावा
0: लैम्डा साई हरलोथिन 9.5% की 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर की पानी में घोल के छिड़काव करें, अथवा थाई मेथॉक्साम 12.5% की दवा का भी हम चयन कर सकते हैं।
1: और इसकी कॉम्बिनेशन में भी दवा आती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ तना छेदक प्ररोह मक्खी या पत्ती लपेटक कीट की समस्या है वहाँ,
0: इस अवस्था पे जैसे दीमक एक प्रमुख कीट है, जहाँ हल्की मृदा होती है तो वहाँ पर
1: बलुई दोमट,
0: तो उसके लिए बेवेरिया बैसियाना 2 से 3 किलोग्राम पाउडर को 100 से 200 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिला करके इसको 1 एकड़ में छिड़काव कर दें। या अगर आपके खड़ी फसल में दिख रहा है और आपके पास जैविक उपचार नहीं संभव है तो आप रसायन में जा सकते हैं, तो क्लोरपाइरीफास दवा सिंचाई पानी के साथ में आप मिला सकते हैं इसको 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ की दर से।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 7007840421 7007840421 7784021।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: सर्वप्रथम खेत में जल का जमाव ना होने दें, आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें और कीटनाशक रसायनों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आर्थिक छत स्तर से ऊपर निकल जाए और कीटनाशक रसायनों को नंगे हाथों से ना छुएं व शरीर पे ना लगने दें। इसके अलावा किसान भाइयों को यह ध्यान रखना है कि 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 प्रति एकड़ की दर से जो है पक्षियों के बैठने के अड्डे बना दें, जिससे कि वो कीट जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो पक्षी जो है चिड़िया है वो आएंगे और हानिकारक कीटों को वो खा लेंगे।
1: डॉक्टर अमरीत सिंह यादव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ। पार्टी भी तंदुरुस्त।

0: और लोग। पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच
0: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: रियाज भैया।
4: हाँ सरला भैया।
3: मेहनत जब कर रहा था तब से जरूरी है मनोरंजन, है अपन जो शरीर है मन है वो आनंद से भर जाता है।
4: बिल्कुल, कहे से कि जब कोनो संगीत सुना जाते है तो जो हम पंच काम करत रही थे वो और मन लागत है और अपन काम जो है और बढ़िया ढंग से हुआ चला जाता है।
3: तो काहे ना भैया, सुन लीजा यू खमटा गीत, शंकर यादव और साथी के स्वर में है तो सुना जाए।

0: सरला बहनी।
1: हाँ भैया।
0: देखो अपने एक कार्यक्रम में हम पंच कुछ ऐसे किसानन के बुलाई थे कि जोन अपनी खेती पाती में बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, तो कहे ना आज के किसान में जोन अपने किसान भाई आए हैं उनके बात सुन ली जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक ऐसे युवा किसान है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज ब्लॉक के गौरा गांव के शुभम द्विवेदी भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आप शिमला मिर्च की खेती, सीडलेस खीरा की खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहां तक हुई, इस तरह की खेती से जुड़ा हुआ कब से?
3: मेरी जो पढ़ाई है वो हम इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से कंप्लीट की है, जिसमें हमने शुरू से ही कृषि बोर्ड और स्नातक परास्नातक में बीएससी एग्रीकल्चर और एमबीए एग्री बिजनेस किया, जो कि शुरू से मेरा उद्देश्य था कि जो हमने शिक्षा ग्रहण की है अपने ही गांव में जाके इसी शिक्षा से रिलेटेड कुछ उद्योग किया जाए। शुरू से पहले मैंने पाली हाउस लगवाया जो कि मेरा आधे एकड़ का है, उसमें हम लाल रंगीन शिमला मिर्च की खेती करते हैं और खुले में 2 एकड़ में हरी शिमला मिर्च की खेती करते हैं और 1 एकड़ में सीडलेस खीरा जिसको बोलते हैं उसकी खेती करते हैं।
2: तो आपने कहा कि आधा एकड़ का पाली हाउस है, आपके पास नेट हाउस भी है?
3: नेट हाउस है जिसमें हम खीरे की खेती करते हैं 1 एकड़,
2: यानी सीडलेस खीरा।
3: सीडलेस खीरा।
2: तो इस समय कौन कौन सी फसल आपके पाली हाउस में है?
3: हमारे पास पाली हाउस में लाल पीली शिमला मिर्च की रोपाई का समय चल रहा है, जो कि हमने अगस्त में मैंने रोपाई की हुई है। अब ये पौध हमारी लगभग 60 दिन के बाद फूल और फल की वृद्धि में बदलेगा, फिर वही 90 दिन में हमारा रंगीन शिमला मिर्च का माल निकलना चालू होगा।
2: आपने क्या नर्सरी खुद तैयार की, जो कैसे नर्सरी लेकर के रोपाई की?
3: नर्सरी हम खरीद मतलब लेके रोपाई करते हैं, उनको बीज देते हैं नर्सरी वाले जहाँ पे उनका स्ट्रक्चर लगा होता है, तो वो बीज से करके हमको पौधा देते हैं तो हम रोपाई करते हैं।
2: तो कोई खास वैरायटी रंगीन शिमला मिर्च की है?
3: इसकी अलग वैरायटी आती है जिसमें पीले में जो है हमारा डब स्टेप नाम से आता है और लाल हमारा जो आता है वो हमारा बचाटा के नाम से आता है।
2: इसकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं आप?
3: इस वैरायटी में जो फल की आकृति है वो बहुत अच्छा बनता है, कलर अच्छा आता है और पैदावार बहुत अच्छी होती है इस वैरायटी में।
2: और जो खुले में 2 एकड़ आप हरी शिमला मिर्च करते हैं उसकी कौन सी वैरायटी चुनते हैं?
3: उसकी हरी शिमला मिर्च की वो अलग वैरायटी है, जो कि अभी हमने जो लगाई हुई वो आशा वैरायटी है, इंदिरा वैरायटी है, ये हम लगाते हैं।
2: तो उसकी रोपाई कब तक करेंगे?
3: रोपाई उसके हम 15 सितंबर में करेंगे।
2: खड़ी फसल में कौन कौन सी देखभाल करते हैं, जहां पाली हाउस में है और जहां खुले में है, दोनों में?
3: पौधा रोपण करने के बाद मेन जो उसमें खेती में देखना होता है कि पौधे में कोई भी कीड़ा कोई भी कीट जो ना हो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हैं, पौधे में नमी उसके साथ में क्या क्या उसको खाद देनी है। जब छोटा पौधा लगाते हैं तो उसको 15 दिन हमारी जो प्रैक्टिस होती है पर पौधे में ही खाद पानी उस पे ही हम लोग मशीन से देते हैं,
2: यानी फर्टिगेशन
3: बोल सकते हैं उसको। और फिर जब पौधा में जड़ विकसित हो जाता है, तना विकसित हो जाता है, पौधा 20 से 25 दिन का मजबूत हो जाता है, तब उसको हम लोग ड्रिप के थ्रू उसमें फर्टिगेशन करते हैं।
2: और रोग दोख और कीड़ा से बचाव के लिए?
3: रोग दोख कीड़ा से बचाव के लिए समय समय पे स्प्रे कराना होता है, वो हम चाहे वो हमारा उसमें कीट का लगा हो या कोई फंगस लगा होता है उसको हमको प्रॉपर देख रेख करनी होती है सुबह शाम।
2: और जहां खुले में आप शिमला मिर्च करते हैं तो वहां तो आपको विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती है?
3: उसमें विशेष सावधानी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि खुले में है और खुले के तापमान में थोड़ा कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, तो उसमें ज्यादा ध्यान देना होता है।
2: और अंतरण क्या रखते हैं उसका?
3: पौधे का पौधा जो दूरी होती है हरी शिमले की वो आती है 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर और जो दूसरा पौधा का दूरी होती है लाइन से लाइन की जो दूरी होगी वो हमारी 1 फीट आती है 30 सेंटीमीटर।
2: और जो पाली हाउस में करते हैं उसका अंतरण?
3: उसमें जो दूरी होती है वो पौधे की पौधे दूरी 45 सेंटीमीटर होती है और जो पौधे की जो लाइन से पौधे की दूरी होती है वो 35 सेंटीमीटर होती है।
2: खड़ी फसल में जो खुले में आप शिमला मिर्च करते हैं तो फसल की भूख मिटाने के लिए प्रति एकड़ कितनी खाद की मात्रा देते हैं, उर्वरक की मात्रा देते हैं?
3: 30 दिन के बाद जैसे फर्टिगेशन चालू करते हैं ग्रेड के

0: से फल के हिसाब से हमको उसमें देनी पड़ती है।
1: तो ये काम तो आप पाली हाउस में करते हैं?
0: सेम पाली हाउस में और खुले हरी शिमला मिर्च में, दोनों में ही करना होता है क्योंकि पेड़ वही है, बस उसमें वैरायटी का अलग है, पैदावार उससे भी लेना है, पैदावार उससे भी लेना है। ड्रिप पे टपक विधि के थ्रू सिंचाई है, करने का तरीका वही है, सेम मशीन सेम खाद हम उसी से पूरा चलाते हैं, पाली हाउस नेट हाउस और ओपन में।
1: पहली फलत कब तक मिलने की संभावना है पाली हाउस में?
0: पाली हाउस में पहली फलत जो हमारी आती है, जैसे मैंने 10 अगस्त को इस सीजन का रोपाई किया है, तो हम यहाँ से 80 दिन का जोड़ के चलेंगे, तो हमारा वही 10-15 से 10 नवंबर, वही मिड नवंबर जिसको बोलते हैं मध्य नवंबर, उसी में हमारा माल निकलना चालू होगा।
1: उस समय आपको भाव अच्छा मिलेगा?
0: सहला चल रही होती है और भाव भी अच्छा रेट रहेगा उस टाइम।
1: और जो खुले में शिमला मिर्च है?
0: खुले की शिमला मिर्च की जो उसकी पैदावार की जो तोड़ाई है वो हमारी आती है 65 से 70 दिन की, उसकी थोड़ा सा 15 दिन पहले आती है,
1: यानी अक्टूबर के लास्ट।
0: अक्टूबर के लास्ट में।
1: एकड़ पीछे आंकड़ा देखें, जो खुले में आप हरी शिमला मिर्च कर रहे हैं उसकी एकड़ में क्या लागत गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं और आपका मुनाफा कितना होता है? साथ में जो आधा एकड़ की संरक्षित खेती है रंगीन शिमला मिर्च की, उसमें एक साल की लागत क्या गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: संरचित खेती का जो हमारा पूरा एक एवरेज रेट निकलता है, क्योंकि देखिए निकलता माल स्टार्ट होता है तो 70 रुपए से लेकर 200-300 भी जाता है, लेकिन साल का आता है हमारा 80 रुपए का एवरेज, और 10 टन लगभग मेरा माल पूरी कोशिश रहती है निकाल लें, जिससे हमारा
1: 100 क्विंटल
0: लगभग
1: पाली हाउस
0: से।
1: और खुले में?
0: खुले में हमारा वो निकल जाता है जितने निकलना चाहिए, तो 50 टन, लेकिन हर साल अभी 2-3 साल से 35 से 40 टन निकलता है,
1: यानी 400 क्विंटल
0: 400 क्विंटल
1: साल में। तो खर्चा
0: संरक्षित खेती का जो हमारा आता है वो उसको 6, क्योंकि वो फसल अगस्त से चल के मई तक चलती है, तो वो 8-9 महीने की फसल है, तो उसके सारे खर्चे हमारे जो आते हैं वो 3 से 3.5 लाख रुपए आते हैं, और जो कि हमने बताया 10 टन 80 रुपए का एक एवरेज पकड़ते हैं, तो हमारा बड़े आराम से 8.5 से 9 टन का माल निकल जाता है, इससे 3.5 लाख रुपए हम लागत भी हटा देते हैं, तो पाली हाउस से बड़े आराम से बचत हमारा 5-5.5 लाख का हो जाता है।
1: और खुले में जो शिमला मिर्च,
0: खुले का जो एकड़ का है वो कम से कम शुरुआत किसे में और आखिरी, वो भी लंबी फसल है क्योंकि सितंबर से लग के मई तक चलती है, 8 से 9 महीने की 7 महीने की फसल है, तो उसमें भी एकड़ का 2 लाख का खर्चा आता है, और उसकी जो एवरेज रेट होती है वो कम होती है, एवरेज रेट 20 का हम लेके चलते हैं, और हम 40 टन भी निकालते हैं, और 2.5 से 3 लाख खर्चा उसमें भी आता है, तो बड़े आराम से एकड़ पे 4 लाख बच जाता है,
1: यानी 4×2=8 लाख 2 एकड़ में आपको बच जाता है।
0: जी जी।
1: और 5-6 लाख रुपया संरक्षित खेती से।
0: जी जी।
1: तो आप संतुष्ट हैं?
0: हाँ, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहिए?
0: किसान भाइयों बहनों को ये सलाह है कि आज के टाइम जो संरचित खेती में जो आधुनिकता आ रही है उसको अपनाएं, खेती हमेशा ड्रिप और मल्चिंग के थ्रू किया जाए, जो बहुत से किसान आज भी अनभिज्ञ हैं, वो बेडों पे पानी सीधा जो भर के करते हैं उसमें पैदावार भी कम मिलती है, फसल भी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिसलिए उनकी आय और उनका पैसा निकल नहीं पाता है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 80-90-88-72-82 8090-88-7282।
1: शुभम द्विवेदी भैया, आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: सरला बहनी, देखो अपन जो खेती पाती है वो मौसम पर आधारित रहता है, और अगर हम पंच का मौसम की जानकारी रहता है तो उसके प्रबंधन जो है हम पंच नीके तीन से कर लिए थे।
6: भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार आज यानी 8 तारीख से लेके 12 तारीख

0: तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभाग में कुछ स्थान पर गरज चमक के साथ बरसात होने की संभावना है। और भैया पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी हर जगह लगभग बरसात होने की संभावना है और कहूँ कहूँ भैया भारी से भारी बरसात होने की संभावना है।
1: अपन कार्यक्रम किस लागत है इसके बारे में चिट्ठी पाती के माध्यम से अवगत जरूर करावे तो उसके लिए पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड है 226001। इसके अलावा अपने पंच ईमेल के माध्यम से भी चिट्ठी पाती भेज सकते हैं तो उसके लिए पता है farmandhomeairlko@gmail.com। यही के साथ माँ घड़ी इशारा कर रही है कि अपने बैठकी के समय हो रहा है समाप्त तो पंचन चलिन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 12,000 रुपये और सहायिकाओं का 6,000 रुपये प्रतिमाह करने का किया ऐलान। 5,00,000 रुपये तक कैशलेस इलाज की भी मिलेगी सुविधा। लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ। 5,196 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के किए गए एमओयू। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल वाराणसी में करेंगी 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आयोजित यूपी स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, बदलते भारत में स्टार्टअप आज के समय की जरूरत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में राज्य स्तरीय समारोह में नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर श्री योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 8,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये और सहायिकाओं का 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं और उनके

0: परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने का ऐलान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि आज प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट हो चुके हैं और इनमें काम करने वाली महिलाएं सम्मानजनक मानदेय प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बचपन अगर सुरक्षित रहेगा तो स्वस्थ और समर्थ भारत के संकल्प को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र विकसित भारत की संकल्पना का आधार बनेंगे।
1: बचपन अगर सुरक्षित रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो यही स्वस्थ बचपन एक समर्थ और स्वस्थ भारत की संकल्पना को पूरा करेगा और स्वस्थ और समर्थ भारत ही प्रधानमंत्री जी की संकल्पनाओं को पूरा करेगा जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत होगा। उसका आधार कोई बनने वाला है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र बनने वाले हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक वस्त्रोद्योग केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल पहचान आज की नहीं बल्कि हजारों वर्षों की समृद्ध विरासत है। उन्होंने कहा कि यूपी टेक्सटाइल 2026 प्रदेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नई दिशा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी का मतलब है अनलिमिटेड पोटेंशियल। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पास विरासत है, हुनर है, मानव संसाधन है और दुनिया का सबसे यंग वर्कफोर्स भी हमारे पास मौजूद है। इसी ताकत के सहारे उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना है। श्री योगी ने कहा कि विगत 9 वर्षों में सरकार ने उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत को आधुनिक टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट से जोड़कर एक नई इंडस्ट्रियल स्टोरी लिखी है।
1: कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार का सृजन करने वाला कोई सेक्टर है तो वह ये वस्त्र उद्योग का सेक्टर है। पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी समृद्ध विरासत को आधुनिक टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़कर एक नई इंडस्ट्रियल स्टोरी लिखने की व्यवस्था भी यूपी के अंदर हम लोगों ने तैयार की है।
0: इस दौरान उन्होंने यूपी टेक मित्र पोर्टल लॉन्च करने के साथ हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में टेक्सटाइल सेक्टर में 5,196 करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों के एमओयू साइन किए गए। इसके साथ ही 163 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ कंफर्ट और 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी का वितरण किया गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से कल वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी अभियान की शुरुआत करेंगी। पेश एक रिपोर्ट।
2: वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन, दीप प्रज्वलन, लाभार्थियों के अनुभवों पर आधारित वीडियो प्रदर्शन तथा केंद्रीय मंत्री और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पोषण मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। यह अभियान पूरे सितम्बर माह में देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, पंचायतों और घरों में सामुदायिक भागीदारी के साथ संचालित किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण और प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी से मनीष सिंह के साथ समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में यूपी स्टार्टअप संवाद 3.0 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम विचार से अवसर तक, नवाचार से निवेश तक और प्रतिभा से उपलब्धि तक की यात्रा को गति देने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि आज का भारत बदल रहा है और स्टार्टअप आज के समय की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि इनोवेशन को केवल टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में भी इनोवेशन की आवश्यकता।

0: आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा रहा है। पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य रहे मोहसिन रजा को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। इसके साथ ही 8 सदस्य भी नामित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आज इस संबंध में पत्र जारी किया गया। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहसिन रजा और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। प्रदेश भर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जौनपुर, हमीरपुर, गौतमबुद्ध नगर सहित कई जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर देहात में जिला जज रविन्द्र सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नूपुर श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहनों को रवाना किया। प्राधिकरण की सचिव नूपुर श्रीवास्तव ने लोगों से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचकर अपने वादों का निस्तारण कराने की अपील की।
1: लोक अदालत में ऐसे वाद जैसे वैवाहिक वाद होते हैं, बैंक वसूली ऋण वाले मुकदमे होते हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल और किसी भी तरीके के सिविल वाद या शमनीय वाद जो होते हैं, जो सुलह समझौते से निपट सकते हैं, उसके लिए बिना किसी अधिवक्ता शुल्क, बिना न्याय शुल्क के जनता सुबह 10 बजे से 5 बजे तक न्यायालय आ सकती है।
0: राजधानी लखनऊ सहित आज प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रदेश में 26 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अब तक 6,83,000 से अधिक लंच पैकेट और 1,11,000 से ज्यादा बाढ़ राहत किट जरूरतमंदों तक पहुंचाए जा चुके हैं। वहीं 19,496 प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बदायूं और बलिया में गंगा नदी, शाहजहांपुर में रामगंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी, अयोध्या तथा तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फर्रुखाबाद में गंगा के बढ़े जलस्तर के चलते कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
2: कल रात को भी कुछ कटान हुआ है, टोटल 38 जो घर हैं गांव में कटे हैं, तो उसी के संदर्भ में कुछ लोगों को यहां से बाढ़ डालने में मोबिलाइज किया गया है और जो दूसरे मजरे में है उनको राहत किट का वितरण किया गया और मेडिकल कैंप भी लगवाया गया है वहां पर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 12,000 रुपये और सहायिकाओं का 6,000 रुपये प्रतिमाह करने का किया ऐलान। 5,00,000 रुपये तक कैशलेस इलाज की भी मिलेगी सुविधा। लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ। 5,196 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के किए गए एमओयू। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल वाराणसी में करेंगी 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आयोजित यूपी स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, बदलते भारत में स्टार्टअप आज के समय की जरूरत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: बड़ी बहू, ये तुम्हारे ना।
4: इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
4: और ये मेरी गुड़िया की ना।
5: पर दादी, हाँ, आपके नाम?
6: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो। क्या
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
9: श्रोताओं, भी आप सुने थे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। आपको याद दिला दें कि आज रात 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हमारे स्टूडियो से गीत गुंजन। रात 9:15 का वक्त होगा समाचारों के बाद महफिल गजल का और 9:30 से होगा आपका

संदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। दिलचस्प बातों के साथ जुड़िएगा अपनी पसंद का नगमा सुनने के लिए 7376804090 नंबर पर। आइए, आकाशवाणी अयोध्या का ये केंद्र है जिसे आप न्यूज ऑन एयर ऐप और वेब्स ओटीटी ऐप पर सुन रहे हैं। akashvani.gov.in पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। आपको जुड़ते हैं अपने मुंबई केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को अब से लेकर 8:15 तक।

फौजी भाइयों को अब हम सुनवा रहे हैं किशोर कुमार का गाया प्यार का मौसम फिल्म का गीत। आर डी बर्मन के संगीतबद्ध किए इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: के?
1: आ, आ, आ, ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
0: गा के? अच्छा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रस्तुत कार्यक्रम पॉप एक्सप्रेस। तनिष बागची के संगीत निर्देशन में सुनिए अदनान सामी का गाया गीत बोल शान यादव के।

इस समय आप सुन रहे हैं पॉप एक्सप्रेस। अब सुनिए फहीम अब्दुल्ला, हुजैफ नजर और राथर हाशिम का गाया, लिखा और संगीत बद्ध किया ये पॉप गीत।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान का गाया, विशाल ददलानी का लिखा और विशाल शेखर का संगीत बद्ध किया गीत।

0: लाइन के बच्चे हम पर अफसर दिखलाता।
1: अरे राजेश तू यहाँ
0: लोग चांद पर पहुँच जाते हैं, हमने यहाँ आकर कौन सी अनोखी बात पैदा कर दी।
2: आदत नहीं गई
0: कुत्ते की तुम जो ठहरी।
2: हाँ तो श्रीमान जी कब आए, क्यों आए और कब तक पधारेंगे? और
0: हुजूर श्रीमान जी को आए हुए तो करीबन 30 साल हो गए। क्यों आए? शायद दादी को एक अदद वारिस की दरकार रही हो। कब पधारूंगा भैया?
3: एक्सक्यूज मी सर।
2: यस रोजी।
3: सर आपको ये फाइल मांगता था?
2: हाँ ठीक है, तुम यहाँ रख दो, मैं बाद में देख लूंगा।
3: वेरी वेल सर।
0: यार तकदीर वाले हो, क्या बात?
2: आपकी दुआ है।
0: काश हमारी दुआओं जैसा असर तुम्हारी दुआओं में भी होता।
2: लेकिन हम तो दुआएं देते ही कहाँ हैं।
0: यार नितिन तेरा ऑफिस एक गुलदस्ता है रे, गुलदस्ता। ताजे चुने हुए महकते हुए रंग बिरंगे फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता है।
2: अच्छा।
0: हाँ और हमारा एक ऑफिस है भाई, बबूल के भोंडे, बदसूरत कांटों से छिदा पिनकुशन।
2: भाईजान किसी ने क्या खूब कहा है, गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते।
0: अरे थाम लेते हैं, दामन चीर देते हैं, बरकुरदार छलनी कर देते हैं।
2: अच्छा चीर देते हैं, छलनी कर देते हैं। अरे मियां जब दामन ही घटिया हो तो उससे कुछ और उम्मीद करना नादानी है।
0: अच्छा।
2: परले सिरे की बेवकूफी है, नहायत निचले दर्जे के नालायक है वो, माकल के पीछे लठ लेकर दौड़ने वाली मिसाल है।
0: बस और... बस, बस, बस, बस, बस। आपकी भाषण प्रतिभा का तो मैं बहुत पहले से कायल हूँ जी।
2: अरे अच्छे अच्छे कायल हो चुके हैं, आज भी हो रहे हैं।
0: क्यों नहीं साहब, आज भी कायल हो रहे हैं। देखिए ना बैठे हैं भूखे प्यासे आपके लेक्चर के आसरे हैं।
2: भूखे प्यासे?
0: जी हाँ।
2: एनीवे नो फॉर्मेलिटी यार, अगर सचमुच भूख लगी हो तो यही कुछ मंगवाऊं, वरना आधे घंटे बाद तो लंच को तो चलेंगे ही।
0: ठीक है आधा घंटा और सही, हम भी बैठे हैं तुम्हारी इंद्रपुरी में।
2: दैट्स लाइक अ गुड बॉय। मैं जरा ये अर्जेंट काम निपटा लेता हूँ, तब तक तुम जरा ये मैगजीन देखो,
0: ये
2: तस्वीरें देखो।
0: ये तस्वीरें मैगजीन है? जीती जागती तस्वीरें छोड़कर मैं इन्हें देखूं। अब यहाँ क्यों दिखाता है? अच्छा ये तस्वीरें देख रही है, क्या लिखा है? घेराव, लड़कियों द्वारा कॉलेज के प्रिंसिपल का घेराव, बेचारे 6 घंटे तक कमरे से बाहर ना निकल सके। या नितिन माफ करें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर इस तस्वीर को देखकर आप बीती ख्याल आ ही गया।
2: अरे यार भूमिका छोड़, जल्दी से फुट।
0: भैया एक बार हम भी फंस गए थे अपने चीफ के साथ घेराव के चक्कर में, कंस्ट्रक्शन साइट पर एक से एक अक्खड़ खूंसट खुर्रांट वर्कर नारे लगाते और भी भयंकर लग रहे थे।
2: अच्छा फिर
0: क्या? सोचता हूँ अगर तुम्हारे ऑफिस का हसीन स्टाफ मेरा घेराव करे। सच कहता हूँ यार, उम्र भर उस घेराव में घिरा रहूंगा, बैठा रहूंगा।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे अब काम करने देगा या नहीं?
0: सच यार, अब उन भयानक शक्लों से तबीयत उब गई।
2: हो सकता है वक्त की मार से भयानक लगने वाले चेहरे मन में कितनी सुंदरता संजोए हों, पर तुम्हारे ये सुंदर लगने वाले चेहरे।
0: सीरियस माता, समझ गया। यानी आपका मकसद है सौंदर्य की कसौटी मन में है, अंतर में है, चेहरा नहीं, ऊपरी रूप छलावा है, धोखा है इत्यादि।
2: Exactly.
0: अरे ओ फिलोसफर की औलाद, हम अपनी भूख को भूलने की कोशिश कर रहे हैं और आप है कि अपनी फिलात भी झाड़ रहे हैं।
2: अरे चल भूखे चल, तू मुझे काम करने थोड़ी देगा।
0: हाँ ये बात हुई ना, भगवान तू बड़ा दयालु है।
2: बस जरा एक मिनट न, मैं अपने कलीग से कह दूं।
0: हाँ,
2: गनीमत है आज चीफ टूर पर है। एक मिनट आया।
0: एक्सक्यूज मी, मैं जरा बाहर हॉल में खड़ा हो जाऊं।
2: बाहर
0: वो हॉल में?
2: नहीं
0: एक चांस नहीं।
2: ऐसा अच्छा। गजब मत करना, तू यहीं बैठ, मैं अभी आया। लीजिए जनाब आ गए हम, चलिए
0: चले।
2: बिल्कुल
0: पक्का।
2: लेट्स गो। चल फाउंटेन चलिए।
4: हाँ यार व्हाट अ प्लेजर यार,
2: परसों के बाद पुराने साथियों से मिलना। कई बार पुराने एल्बम कॉलेज के ग्रुप फोटोज देखता हूँ तो सारी मस्तियां शरारतें एडवेंचर्स आंखों के सामने आ जाती है। अरे अपना वो रमेश पांडे, ज्ञान, महादेव टंडन, बहरोता, यार क्या ग्रुप।
0: अरे वो यार वो अपना रमेश पांडे एक बार अचानक लखनऊ में मिल गया था, प्रोफेसरी कर रहा है बच्चू देहरादून में।
2: अच्छा। अरे हाँ वो ठाकुर रामबली सिंह थे ना अपने, वो तो रिटायर हो चुके होंगे ना।
0: अच्छा वो रामबली है भाई, रामबली गेम्स प्यून।
2: अरे नहीं गेम्स सुपरिंटेंडेंट।
0: अरे वाह भैया, अंग्रेजी का फर्राटे से बोलता था। द प्रिंसिपल, द कॉलेज, द गोइंग एंड द टीम मैच।

0: Fantastic. ये ऑफिस है इंद्रपुरी, एक से एक रंभा, उत्तम अति उत्तम, वाह वाह वाह. एक्सक्यूज मी मिस्टर मिथुन कहां बैठे हैं?
1: जी वो सामने कैबिन में.
0: थैंक यू. एक्सक्यूज मी वेयर आर कैन फाइंड मिस्टर मिथुन प्लीज?
1: अ लिटिल अहेड प्लीज इन दैट केबिन.
0: जी थैंक यू वेरी मच. एक्सक्यूज मी
1: मिस्टर नितिन.
0: ओ जी वो अच्छा वो सामने वाला क्या है?
1: यस
0: थैंक यू वेरी मच. हुजूर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
2: प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल.
0: अरे ओ

0: Salen yan.
1: मजाक है यार।
0: अब मैं भी क्या खाक काम करूंगा भाई, इतना खिला दिया तुमने।
1: अरे यार, जब मैं तेरी उम्र का था।
0: हाँ जी हाँ, तब आप 5 किलो पूड़ियाँ, 10 किलो मिठाइयाँ, 15 किलो फल वगैरह खाते थे, जैसे कि आपकी उम्र एक पूरी शताब्दी है। तुम भी यार
1: मजाक छोड़। अच्छा तू ये बता, तू 4 बजे तक पहुंच रहा है ना मेरे ऑफिस में?
0: काश मैं इस गैप को और भी कम कर पाता यार, पर काम तो करना ही पड़ेगा ना।
1: ठीक है, 4:30 पहुंच जाऊंगा।
0: 4:30
1: चलेगा?
0: 4:30
1: ओके, डन।
0: ओके बाय।
1: ओके, सी यू देन।
0: बंदा हाजिर है जिल्ले लाही में आई कमे।
1: अरे तुम आ गए इतनी जल्दी?
0: जल्दी? अबे 4:30 बज रहे हैं। 4:30
1: बस यार, जरा रुक जाओ, बस अभी चलते हैं।
0: लीजिए जनाब, रुक गए।
2: सर, लेटर टाइप हो गया सर।
0: सो सून? वेरी गुड, वेरी गुड। आई वाज वेटिंग फॉर दिस ओनली। गिव मी रेफरेंस योर लेटर। उफ, रोजी, आर यू इन योर सेंसेस टुडे?
2: सर,
0: आज ये तीसरा लेटर है जिसमें तुमने ब्लंडर किया है। ऑफिस आते वक्त दिल और दिमाग को फियांसी या बॉयफ्रेंड के पास मत छोड़कर आया करो। कंपनी पेज यू फॉर योर वर्क, नॉट फॉर योर फिजिकल प्रेजेंस ओनली। जाइए, जाकर दोबारा टाइप करके लाइए लेटर।
1: अबे ये क्या कर दिया, जरा समझा कर कह देता।
0: ठीक है ठीक है, तुम चुप रहो। अब जाओ, खड़ी क्यों हो तुम?
3: क्या हुआ रोजी?
1: रोजी रोता है।
3: अरे क्या हुआ?
1: अरे रोजी क्या हुआ? रोजी क्या हुआ? तुमको निपटा कुछ बोला क्या? अरे चलो चलो, आज भाई के पास चलते हैं, वही निपटारा करेंगे। नहीं चलो चलो, सब लोग चलो बाबा चलो।
4: ठीक है मिस रोजी, आप चिंता ना करें, चीफ आज यहाँ नहीं है, वरना सीधा उन्हीं के पास जाता। खैर नितिन साहब को ही देखता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
0: आइए आइए बैठिए।
4: जी मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ,
0: रोजी की वकालत करने आए हैं।
4: वकालत न्यायाधीश के सम्मुख होती है। आप तो?
0: मैं मुजरिम हूँ, यही ना?
4: जी हाँ, आपने स्टाफ को, वो भी एक महिला को अपशब्द कहने का आपको क्या अधिकार है?
0: उस महिला को गलत काम करने का अधिकार है।
4: गलती इंसान से होती है।
0: मुझे सही काम करने की तनख्वाह मिलती है।
4: आप हाँ हाँ बात बढ़ा रहे हैं, देखिए।
0: मैंने बात खत्म कर दी, बात बढ़ाने तो आप आए।
4: देखिए नतीजा अच्छा नहीं होगा।
0: मुझे धमकी देने आया हो लीडर बनकर? जाओ, जो जी में आए करो, हड़ताल करो, अनशन करो।
4: अनशन? अनशन तो आपको करना होगा। देखते हैं आप इस चैम्बर से बाहर कैसे जाते हैं।
0: व्हाट?
5: तानाशाही का नाश हो।
4: स्टाफ यूनियन
5: जिंदाबाद,
4: स्टाफ यूनियन
5: जिंदाबाद,
4: स्टाफ यूनियन
5: जिंदाबाद।
4: तो मैंने तय किया है, हमारे चीफ के आने तक हम लोग मिस्टर नितिन का घेराव करेंगे, उन्हें उनके चैम्बर से बाहर न निकलने देंगे।
0: यार ये तुम्हारा गॉड भी कभी कभी गलत प्रार्थना स्वीकार कर लेता है। रोज लॉटरी के पहले नाम की दुआ मांगता था, पर आज तक ससुरी निकली नहीं, और आज मजाक में घेराव की तमन्ना की तो वो पूरी कर दी।
1: तो तू क्यों फिक्र करता है? तू जा, तुझे थोड़ी कोई रोकेगा। मुझे भुगतना है, मैं भुगत।
0: नहीं नहीं नहीं, इन खूबसूरत पलाओं के बीच में मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ।
1: हेलो स्पीकिंग, क्या अस्पताल ले जा रही हो? एकाएक सीरियस हो गई है, ब्लड प्रेशर। लेकिन मैं तो अच्छा, ठीक है मैं सीधा अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: और किसका फोन है? हुआ क्या?
1: यार वाइफ का फोन है, मदर को हॉस्पिटल ले जा रही है, एकाएक सीरियस हो गई वो।
0: देखो मैं तुम्हें लीडर से बात करता हूँ, है चिंता मत करो।
4: दोस्तों प्लीज वेट। ठीक है, हम आपकी जमानत पर?
0: जी हाँ मैं पूरा जिम्मा लेता हूँ। जब तक नितिन वापस नहीं आ जाता, मैं यहीं बैठकर आपके घेराव को कामयाब बनाऊंगा। देखिए ना, उनकी मदर सीरियस है।
4: ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ही तो हम आपकी बात मान रहे हैं, वरना तो।
0: थैंक यू वेरी मच। अच्छा नितिन तुम जाओ, मैं यहीं बैठूंगा, और हाँ पहुंचकर फोन जरूर करना।
1: जरूर करूंगा। थैंक यू मिस्टर अजय, एवरीबॉडी थैंक यू प्लीज।
2: गुड लक टू यू मिस्टर नितिन।
1: थैंक यू रोजी, थैंक यू।
4: मेरा ख्याल है यू लेडीज कैन गो नाउ।
0: मर गए, सब जा रहे हैं, ये कैसा घेराव है, सब जा ही रहे हैं। सोचा था एक नया तजुर्बा होगा, वो भी खिसक गया। अरे अब क्या, अकेला बैठ

0: हेलो हेलो नितिन, अरे भाई मदर कैसी है? हैं? अरे ए, ए, ए, ए, अरे हंस क्यों रहा है?
1: अरे यहाँ जान आफत में फंसी है।
0: मजा? अरे कैसा मजा? अरे वो तो सब गई। अरे ये क्या मजाक है साले, हंसा ही जा रहा तू। और में गई मेरी जमानत, मैं जा रहा हूँ अपने होटल, जा रहा हूँ मैं। अरे अरे नितिन अस्पताल से इतनी जल्दी आ गया?
2: अरे गया ही कौन था?
0: क्या? और फिर वो टेलीफोन, वो मदर,
2: वो साइड वाले चैम्बर से किया था। खैर मेरे पुराने दोस्त, तुम्हें नया तजुर्बा दिलाने वाले मेरे इन साथियों से मिलो। मिस्टर अजय, हमारे ड्रामेटिक क्लब के सेक्रेटरी।
3: हेलो
4: हेलो।
2: और ये सब है हमारे ड्रामेटिक क्लब के कलाकार।
5: हेलो
6: हेलो
4: हेलो हेलो। लेकिन वो सिस्कियां, वो
2: ये वो सब ड्रामा था।
7: नया तजुर्बा। हवा महल में आज आपने हरीश दीक्षित की लिखी हुई ये छलकी सुनी। निर्देशिका अनुराधा शर्मा। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से FM 101.9 MHz पर यह आकाशवाणी अयोध्या है। कार्यक्रम को आप न्यूज ऑन एयर ऐप और वेब्स OTT ऐप के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए akashvani.gov.in पर भी सुन रहे हैं। रात के 8:15 हो चुके हैं। वक्त है फिल्मी गीतों के प्रोग्राम गीत गुंजन का।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: कार्यक्रम गीत गुंजन सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत करता है आपका रेडियो दोस्त आरजे सदक। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी रिश्तों की नाव किनारे तक पहुंचने से पहले ही डगमगाने लगती है, और जब अपने ही साथ छोड़ दें तो सफर और भी मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन एक चीज इसमें होती है कि डूबती नाव भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: एक बार फिर आपका स्वागत है गीत गुंजन में। दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। जब किसी की मौजूदगी आपकी धड़कनों में बस जाए और हर सांस उसी के नाम हो जाए, तो मोहब्बत की कहानी कुछ ऐसी होती है।

आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

जी हाँ, आप ट्यून्ड इन है अयोध्या की धड़कन आकाशवाणी अयोध्या से, और चल रहा है प्यारा सा प्रोग्राम जो आपकी धड़कनों के साथ ताल में ताल मिला रहा है, गीत गुंजन। दोस्तों, मोहब्बत में इंसान सिर्फ प्यार नहीं करता, कभी कभी अपने महबूब के लिए पूरी तरह मर मिटने को भी तैयार हो जाता है। इश्क की यही दीवानगी जहां अपनी खुशी से ज्यादा किसी और की खुशी मायने रखती है।

कुछ मोहब्बतें मौसम की तरह नहीं होती जो बदल जाएं, कुछ इश्क तो उस खुशबू की तरह होता है जो एक बार दिल में उतर जाए तो उम्र भर साथ रहता है। जब कोई शख्स जरूरत से ज्यादा अपना हो जाए तो फिर मोहब्बत की कोई हद नहीं रहती। हर धड़कन में उसका जिक्र, हर खामोशी में उसका एहसास और हर दुआ में बस वही शामिल होता है।

0: Hello.
1: Suno telephone number.
2: My number is
3: 7376804090।
4: लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
5: दोस्तों, कुछ सफर ऐसे होते हैं जहां कदम आगे बढ़ते हैं लेकिन दिल पीछे छूट जाता है। एक सैनिक भी जब सरहद की ओर बढ़ता है तो पीछे छूट जाती है उसकी मोहब्बत, अपनों की यादें और आंखों में ठहरी हुई नमी, मगर सीने में सबसे बड़ा प्यार होता है, मातृभूमि का।

तो प्यारे श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ हमें भी दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम गीत गुंजन से। और आपको बता दें कि 9:15 पर लेकर हाजिर होंगे महफिल गजल। 9:30 का वक्त होगा आपके पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या का। नंबर होगा 73-76-80-90। अपनी दिलचस्प बातों के साथ आज इस आधे घंटे के प्रोग्राम में जरूर जुड़े आप। अभी दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम गीत गुंजन। ये आकाशवाणी अयोध्या 101.9 FM पर। प्रोग्राम्स को आप न्यूज ऑन एयर ऐप और वेब्स OTT ऐप पर भी सुन रहे हैं। रात के 8:45 होने जा रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार संध्या और ठीक 9 बजे News@9।
1: समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है।

0: इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
0: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
0: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
0: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
0: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
0: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा

0: मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
1: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
3: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
4: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो 4 लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
0: बम्बई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू

कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों

समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Sensex declined 555 points to close at 74,578, while the Nifty shed 144 points to settle at 23,635. India bagged 5 medals, including 2 gold, 2 silver and 1 bronze on the penultimate day of the Stage 3 of the World Archery Para Series in Ahmedabad today, with the men's teams winning the top honours. Reigning world champion Toman Kumar and Shyam Sundar Swamy clinched the gold medal in the men's compound team event with a dominant win over Iraq's Abbas Kadim and Anwar Al-Daoud, 152-139. Men's duo of double Paralympic medalist Harvinder Singh and Vijay Sundi overcame Slovakia's David Ivan and Dennis Ivan 6-2 to bag the yellow medal in the recurve team title. The women's recurve team of Bhavna and Pooja settled for silver after going down 0-6 to Chinese pair in the final. Swati and Adil Muhammad Nazir Ansari finished runners-up in the mixed team W1 recurve compound event, taking silver. Swati then claimed bronze in the individual W1 category, defeating Russia's Elena Krutova 6-2. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's fintech journey takes new heights with innovation and inclusion at its core, inaugurates Global Fintech Fest in Mumbai. Prime Minister dedicates to nation projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat, says from chips to ships, India is now building a new manufacturing future. Defence Minister Rajnath Singh arrives in Colombo on a 3-day visit to Sri Lanka to boost bilateral defence and maritime cooperation. Russia backs India's peace efforts to end Ukraine conflict, says Moscow aligns with New Delhi's position on the issue. Heavy rainfall likely over Bihar, Gangetic, West Bengal, Jharkhand, Odisha and northeastern states tomorrow. And India win 5 medals, including 2 gold at the World Para Archery Series in Ahmedabad. And that is all in the news at 9. Good night.
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी अयोध्या है, 101.9 FM पर कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप और वेव्स ओटीटी ऐप पर भी सुन रहे हैं। 9:15 में पेश है महफिल गजल।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
7: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
6: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
7: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
6: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
1: प्रोग्राम महफिल गजल सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को इस्तकबाल आदाब। लीजिए सुनिए पहली गजल चंदन दास की आवाज में।

0: माँ ये मोटा चश्मा कब उतरेगा?
1: अरे शुगर ने तो मेरी आँख का पर्दा ही खराब कर दिया है।
2: मुझे तो मोतियाबिंद हो गया है।
3: अब आपके सुनैन आई हॉस्पिटल में हर उम्र की आँखों की हर समस्या का समाधान, मोटे चश्मे से छुटकारा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी और तुरंत छुट्टी, शुगर से खराब हुए आँखों के पर्दे का इलाज, नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल, सुनैन आई हॉस्पिटल, निकट वीवार्ड, नियावा, फैजाबाद। कॉल करें 9838100840।
4: प्रोग्राम महफिल गजल में अगली गजल है गुलाम अली की आवाज में।

अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल, आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय, पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91 16 76 47 46।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिल गजल एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। लीजिए सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या। आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
0: प्रोग्राम हेलो अयोध्या सुनने वाले आप सभी प्यारे श्रोताओं को बहुत बहुत स्वागत, आपका नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आरजे सदक आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में, जो सिर्फ आधे घंटे का है, आज 10 बजे तक चलेगा। हमारे पहले श्रोता जुड़ेंगे 7376 80 40 90 डायल करके। हेलो
2: सर, नमस्कार, रूपेश बात कर रहे हैं।
0: नमस्कार रूपेश जी, हमारे पहले श्रोता के रूप में आज के प्रोग्राम में कौन सा गाना सुनेंगे पहले बता दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन आपसे बात नहीं हो
2: पाई। सैनिक मूवी का गाना सुना दीजिए सर, जाम वो है जो भर के छलकता है।
0: सैनिक मूवी में
2: जी जी जी,
0: जाम वो है जो भर के छलकता, कुमार सानू की आवाज में, जरूर सुनवाएंगे आपको। तो और क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम में रूपेश जी, बताइए।
2: सर जी, उन लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे ना जिनके माध्यम से ये

0: विक्रम देश दुनिया तक पहुंचता है, मतलब इंजीनियर का धन्यवाद करना चाहेंगे।
1: क्या बात है,
0: क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि पर्दे के पीछे लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, तब जाके कार्यक्रम ऑन एयर देश दुनिया तक पहुंचता है।
1: बिल्कुल ठीक बात। और देखिए, आज ये मजे की बात है, जब आपने उठाई दी है तो आज आपकी जो कॉल थी ना, जो रिसीव की गई थी, मैंने तो रिसीव किया नहीं था, मैं तो डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ। इंजीनियर्स
0: तो मेरी डायरेक्ट बात,
1: हमारे जो तकनीकी सहयोगी हैं इंजीनियर सर, उन्होंने ही आपकी कॉल उठाई और हमसे कहा कि कोई श्रोता लाइन पर हैं, तो आपने उनको धन्यवाद दिया, तो बहुत अच्छा किया।
0: उनका हमने बहुत बहुत आभार भी किया था कि आप लोगों के माध्यम से चीजें पहुंचती हैं देश दुनिया तक। कुछ लोगों का ध्यान नहीं आता है पर्दे के पीछे, लेकिन पर्दे के पीछे कितना बड़ा टीम वर्क होता है।
1: बिल्कुल सही,
0: आप उसको जानते हैं सर, क्योंकि आप दूरदर्शन में भी कार्य कर चुके हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी टीम लगती है, पर्दे पर कोई एक दिख रहा होता है लेकिन उसके पीछे बैकअप एंड में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे आज राजकुमार जी हम लोग को, राजकुमार जी हमको असिस्ट कर रहे हैं टेक्निकली, और इस कार्यक्रम के जो हमारे प्रस्तुतकर्ता हैं आशीष चतुर्वेदी जी हैं, है ना, तो इन सब लोगों की एक भूमिका होती है जब ये प्रोग्राम आप तक पहुँचता है।
0: और सर जी, मुझको आश्चर्य हुआ कि आकाशवाणी के इंजीनियर लोग भी मुझको जानते हैं। कुछ लोग तो आवाज से आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
1: क्या बात है, तो आप इससे ये समझिए ना कि हमारा मतलब ये बाहर के लोग ही नहीं, हमारा आकाशवाणी परिवार भी रेडियो सुनता है, और जब आप रेडियो पर सुनाई पड़ेंगे तो लोग तो आपको जानेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अपनी चीजें तो लोग जहाँ स्ट्रगल करते हैं या संघर्ष करते हैं या अपने मेहनत से कुछ बनाते हैं, तो उसको तो जरूर उसका रिस्पॉन्स भी देखना चाहते हैं ना, और ये जो रिस्पॉन्स होता है ये आप लोगों के लिए बूस्टर का काम करता है।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए रुपेश भाई, बड़ी अच्छी बातें होंगी, आज प्रोग्राम का वक्त कम है।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत आभार
1: आपका, गाना पहुंचा
0: बातचीत आज हुई।
1: चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत
1: आपका भी बहुत शुक्रिया।

0: भाई आइए अपने अगले श्रोता से हम बात करेंगे। हेलो
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन सर बोल रहे हैं, नाम बताएं अपना।
1: सर मेरा नाम विजय वर्मा, गांव ग्राम पोस्ट गोपालपुर अयोध्या से बोल रहा हूँ।
0: विजय वर्मा जी गोपालपुर अयोध्या से हमसे जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है विजय जी। क्या करते हैं आप सर?
1: सर अपना छोटा मोटा दुकान है समोसा।

0: चाय टिकिया चाउमीन बर्गर यही सब लगाते हैं।
1: अरे वाह, अरे वाह,
0: चौराहे पे
1: भाई क्या बात है, शाम के टाइम आपने तो मतलब मुंह में पानी आ गया। तो इस वक्त दुकान आपकी बंद हो जाती है क्या रात में?
0: हाँ सर, ग्रामीण क्षेत्र में है तो 9 तक लास्ट टाइम।
1: क्या बात है। तो जब आपकी दुकान चल रही होती तो क्या रेडियो चल रहा होता है वहाँ पे?
0: जी बिल्कुल, मैं बड़ा सा होम थिएटर टावर वाला लेके आया हूँ, FM सुनता रहता हूँ, काम में भी अपना बिजी रहता हूँ।
1: बहुत अच्छा,
0: सारा दिन बजता रहता है।
1: यही तो खासियत है हमारे रेडियो की कि आपके काम करते हुए एक दोस्त की तरह वो आपको एंटरटेन करता रहता है, कि नहीं?
0: जी तकरीबन मैं 16-17 साल से सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम आकाशवाणी अध्याय, और ज्यादा हो गया
1: जी। तो आज कौन सा गाना सुनवा रहे हैं सबको आप?
0: सर फिल्म का नाम संजय दत्त वाला, और गाना का बोल तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा।
1: वाह वाह, क्या बात है, मेरे दिल के बहुत करीब है विजय जी ये गाना, और बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहता हूँ आपको इस गाने के लिए, क्योंकि जब मैं हॉस्टल जाता था ना तो मेरे बड़े भैया ये गाना मेरे लिए गाते थे।
0: जी सर, हम भी बहुत सुना करते रहते
1: हैं। हाँ, तो ये दो भाइयों का गाना है, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये, है ना?
0: सर इससे पहले सर हमारा 16 अगस्त को फोन लगा था, AG अमर जी सर से बात हुआ था।
1: अच्छा अच्छा,
0: शायद हाँ हमें लग रहा है कि शायद आपसे पहली बार बात हो रही है हमारी।
1: जी बहुत शुक्रिया विजय जी, आपका गाना पहुंचाते हैं क्योंकि वक्त कम है, आज बहुत लोगों को मौका देना है, थोड़े और लोगों को। शुक्रिया
0: सर, नमस्कार सर।
1: नमस्कार।

0: भाई इस प्यारे से गीत के बीच एक छोटा सा अंतराल ले रहे हैं कमर्शियल ब्रेक, और उसके ठीक बाद हम गोंडा की अपनी कॉलर से जुड़ेंगे।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267 98 8901।
0: आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो
2: हेलो, नमस्ते सर, मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ गोंडा से।
0: हाँ नमस्ते अनु जी, आप अपना नाम ना भी बताएं ना तो हमारे बहुत सारे श्रोता आपको पहचान जाएंगे, जैसे रुपेश जी हैं, जैसे आप हैं, बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनकी आवाजें हमें श्रोता भी

0: पहचानने लगे हैं।
1: जी सर।
0: तो गाना आज आप तड़प का गाना सुन रही हैं, वो मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है? गाना आपका मैंने लगा दिया, अब बताइए क्या कह रही हैं आप, बताइए।
1: सर, मैं भी आपको आवाज से पहचान लेती हूँ।
0: अरे क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: आज की बात नहीं है, जवाब शुरुआत में आए तो सबसे पहचान लेती हूँ।
0: बहुत शुक्रिया। और बताइए आज के प्रोग्राम में क्या कुछ खास दिलचस्प बात आप कहेंगी सुनने वालों को?
1: सर, आज के कार्यक्रम में तो अभी जो गीत गुजर नाम में क्या वो अच्छा लगा, रिश्तों पे बात की अभी जो मतलब बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से आपने विस्तार से समझाया, ये बात हमको बहुत अच्छी लगी।
0: चलिए बहुत शुक्रिया। तो बातें तो आपसे होती रहती है अनु, गाना सुनवाते हैं आपकी पसंद का फिर, ठीक है?
1: अरे सर, मैं तो बातें करने के लिए आती हूँ, गाना तो सुनाते ही रहते हैं।
0: अच्छा, तो जल्दी से जो बात करनी है वो बताओ, जो सुनना है सब।
1: मैं सुनती हूँ, बात करूंगी, अभी इंतजार कर रही थी चलो सर आएंगे तभी कॉल लगाऊंगी। हाँ। और अभी आज आप आए तो मैं ट्राई करूँ, मेरी कॉल नहीं लग रही, मैं सोचती हूँ मेरी कॉल लगेगी, मैं सबसे पहले लड़ाई करूंगी फिर बाद में बात करूंगी।
0: अरे क्या बात है भाई, चलिए हमारे श्रोताओं को पूरा अधिकार है, जब उनकी हम लोग कई बार कहते हैं ना कि आप अभी जल्दी जल्दी मत करिए तो वहाँ झगड़ा थोड़ा सा होता है ना। चलिए,
1: मैं उस बात के लिए नहीं झगड़ा कर रही हूँ, मैं उसे जल्दी कॉल करती भी हूँ और कभी कभार कर देती हूँ सर, तो उसके लिए तो माफी चाहती हूँ। और एक बात, मैं रिचार्ज ना आकाशवाणी के लिए ही कराती हूँ, फोन आकाशवाणी के लिए चलाती हूँ, तो अगर कॉल ना करूँ तो मेरा लॉस हो जाएगा।
0: ओ क्या बात है, क्या बात है। चलिए
1: एक रिचार्ज में 3-4 बार तो बात कर ही लूँ,
0: ये तो ठीक बात है। चलिए
1: और एक बात सर, ये आप लोगों से मोहब्बत मुझको इतनी ज्यादा है ना, कॉल लगा ही देती हूँ।
0: चलिए, इस आपकी मोहब्बत आकाशवाणी से, आकाशवाणी परिवार से ऐसी बनी रहे, ठीक है अनु? बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: ओके सर, बाय
0: बाय।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम हेलो अयोध्या में, जिसमें आप डायल कर रहे हैं 7376804090 नंबर, जुड़ रहे हैं अपनी पसंद का नगमा सुनने के लिए। हमारी एक श्रोता इस बीच जुड़ी जिनकी कल ही कॉल लगी थी, उनसे हमने माफी चाही कि नहीं भाई थोड़ा सा रुक कर और लोगों को मौका दिया जाए। देखिए मौका दिया तो हमारे अगले श्रोता जुड़ गए। हेलो
1: जी,
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
1: मैं

0: श्याम जी शर्मा बोल रहे हैं नाका हनुमानगढ़ से।
1: नाका से श्याम जी बोल रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कौन सा गाना सुनवा रहे हैं सबको आज? ये धरती चांद
0: किनारे।
1: वाह भाई वाह। तो ये गाना, ये फिल्म देखी होगी आपने जरूर?
0: जी जी देखी
1: है ना
0: जी।
1: तो क्या अच्छा लगा था इस फिल्म में, सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा था आपको इस पिक्चर में?
0: अरे सर, पिक्चर भी अच्छी है, गाने सब अच्छे थे, स्टोरी अच्छी थी।
1: नहीं, जैसे फिल्में क्या होती ना, केवल हमारा मनोरंजन तो करती है शर्मा जी, साथ ही साथ कुछ सीख भी दे जाती है फिल्म कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग की फिल्में अक्सर सत्यमेव जयते पर आधारित रहती हैं, है ना। बुराई का अंत होता है, अच्छाई जीत जाती है, ये सारी चीजें दिखाई जाती है फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में। तो इसलिए मैं पूछता हूँ कि उस फिल्म में क्या कुछ आपने देखा। और बताइए, घर का हालचाल सब ठीक है? क्या करते हैं आप?
0: सिलाई की दुकान है, एपी टेलर नाम से।
1: अच्छा, टेलरिंग की दुकान है, सिलाई की?
0: जी सर।
1: तो किस तरह के हाँ बिल्कुल, किस तरह के कपड़े सिलते हैं आप, जेंट्स या लेडीज?
0: जी सर, लेडीज जेंट्स दोनों है, हमारी पत्नी है वो राधा।
1: अच्छा
0: जी, वो लेडीज चलती है और हम जेंट्स।
1: वाह भाई वाह, पति पत्नी दोनों लोग है ना एक ही बिजनेस में, तो बड़ा अच्छा है भाई। चलिए बहुत शुक्रिया, अगली बार जब कॉल करिएगा तो आप भी नियमित श्रोता हमारे बन रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त लेकर जरूर कॉल करें, ठीक है?
0: जी जी,
1: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

0: इसी दिल दिया और मेरा दिल ले लिया के बीच में हमारे अगले श्रोता आएंगे इस प्रोग्राम के दिल में। हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर?
1: रिजवान बोल रहे हैं, नाका से।
0: रिजवान भाई, नाका से फोन लगाया आपने, क्या करते हैं वहाँ पर नाके पर?
1: लिम्का कंपनी में काम करते हैं।
0: लिम्का फैक्ट्री में, ओके, आपसे बात हुई है मेरी कभी ना एक बार जी। तो जी, आज कौन सा गाना सुनवा रहे हैं सबको आप?
1: कच्चे दायक गाना सुना रहे सर जी,
0: एक जवानी तेरी।
1: जी जी।
0: चलिए बिल्कुल सुना रहे हैं आपको ये गाना
1: सर
0: जी, बताइए।
1: दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं?
0: ले लीजिए ले लीजिए।
1: एक मेरा दोस्त बहुत खास है, अजय करिया।
0: अजय करिया, ओके। और
1: एक पतंजर है, संजय है, कुमार है, अनिल है।
0: अच्छा, ये सब आपके साथ काम करते हैं वहाँ फैक्ट्री में?
1: जी जी जी।
0: सब
1: का मेरा खास दोस्त है, अजय करिया है,
0: वो भी काम करते हैं कि नहीं?
1: गाना सुनाना चाहता हूँ।
0: अजय अजय जी काम करते हैं कि नहीं वहाँ साथ में, कि ये दोस्त नहीं है केवल?
1: करते हैं।
0: चलिए बहुत बढ़िया, तो आप अपने सभी दोस्तों से ऐसे ही प्यार बना के रखिए और सबके लिए गाने से सुनवाते रहिए। उनसे भी कहिए कि वो भी फोन करें और वो आपको गाना सुनवाए।
1: वो कहते हैं मेरा लगता ही नहीं है सर जी।
0: हाँ, तो आपकी इतनी मेहनत नहीं कर पाते ना वो।
1: हमने जो दिल से मोहब्बत करे उसका लग जाएगा।
0: हाँ, और कोशिश करता रहेगा उसका लग जाएगा। जी बहुत शुक्रिया।
1: मोहब्बत है मेरा तुरंत लग जाता है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, अपना गाना सुने, शुक्रिया।

0: हेलो
1: जी सर, नमस्ते सर।
0: नमस्कार, हमारे प्रोग्राम के आखिरी कॉलर होंगे आप, आज 10 बजे तक के प्रोग्राम है। क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम भोला भारती है सर, सार्जन मुक्तिमपुर अयोध्या से बोल रहे हैं सर।
0: किस फिल्म का गाना सुनेंगे
1: सर? बॉर्डर फिल्म का गाना सुनेंगे।
0: जरूर, हम लगा दे रहे हैं आपके बॉर्डर फिल्म का गाना। क्या करते हैं आप भारती जी?
1: सर हम पढ़ाई करते हैं सर अभी।
0: कौन सी कक्षा में? अच्छा अच्छा, तो पढ़ने में मजा आ रहा है?
1: जी सर, पढ़ने में मजा आ रहा है सर। आप मुझे सर गाना सुनवा रहे हैं
0: इसलिए और मजा आ रहा है ना।
1: क्या आपके वास्तव में?
0: जी जी, बहुत शुक्रिया। तो पढ़ाई के अलावा और क्या पसंद है आपको? बोला जी
1: सर, अभी तो पढ़ाई करते हैं, बेसिक खेती बाड़ी करते हैं सर अभी।
0: अच्छा, खेती बाड़ी भी साथ में करते हैं, तो घर परिवार के लोगों के साथ मदद कर रहे हैं ना। क्या है इस वक्त, इस वक्त खेत में क्या है, जल्दी से बता दीजिए हमको। खेत मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: धान लगा हुआ है सर इसमें।
0: ओके, चलिए, तो एक प्यारा सा मिट्टी की बात हमने आपसे की, खेत की, और धान लगाते समय हमारे पैरों में मिट्टी लग जाती है ना जब उसको हम रोपते हैं, और ऐसे ही मिट्टी से प्यार करते हैं हमारे सैनिक। किसान और सैनिक दोनों का बड़ा महत्व है। जो गाना मैंने लगाया है वो भी ऐसे ही, हाँ ऐसे ही मिट्टी के बेटे पर ये गाना है। बॉर्डर नई वाली जो फिल्म आई है उसमें है, सुनिए। नमस्कार।

श्रोताओं आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें टेक्निकल सपोर्ट दिया राजकुमार मौर्य जी ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री आशीष चतुर्वेदी जी। अब अपने रेडियो दोस्त सदक को दीजिए अनुमति कार्यक्रम हेलो अयोध्या से, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या FM बैंड पर आकाशवाणी अयोध्या है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप और वेब सुटीटी ऐप पर भी सुन रहे हैं। रात के 10 बजने जा रहे हैं। आइए हमारे लखनऊ केंद्र से सुनते हैं राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं अभय कांत तिवारी स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में। आज के अंक में हम बात करेंगे क्याकिंग और कैनोइंग की उभरती हुई खिलाड़ी आंचल और भूमि सोनकर से, और हम सुनेंगे इस सप्ताह के खेल समाचार। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दो उभरती हुई खिलाड़ी क्याकिंग और कैनोइंग में, जिन्होंने प्रयागराज और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है और भविष्य में इनकी योजना है कि पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करने की। तो आइए स्वागत करते हैं आंचल और भूमि का। आंचल, भूमि, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर।
1: आंचल, आप बताइए आपको क्याकिंग और कैनोइंग में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे शुरुआत हुई इस खेल में जाने की?
2: सर, अभी हम बचपन से स्विमिंग करते थे तो हमारा लॉकडाउन हुआ था, तो इसकी वजह से स्विमिंग हमारा बंद हो गया था। तो फिर से हम स्विमिंग स्टार्ट कर रहे थे, तो फिर हम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे थे उस टाइम स्विमिंग की, तो
1: यूनिवर्सिटी गेम्स की।
2: हाँ, तो फिर सर उसके बाद जब हम स्विमिंग कर रहे थे तो वहाँ पे देखा तो कुछ नाव चल रही थी, क्योंकि वो पहली बार देखा था, ऐसा कभी गेम सुना भी नहीं और पहली बार देखा था। तो फिर वो गेम देख के लगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम स्विमिंग पूरे 12 महीने नहीं कर सकते, ठंड आ जाती है। फिर हाँ हुआ कि ये गेम करना अच्छा लग रहा था देखने में। फिर गए, बगल में ही था जस्ट बोट क्लब प्रयागराज है कीड़गंज के पास, तो वहाँ पर गए हम। वहाँ कोच थे धवन सर, तो उनसे मुलाकात हुई हमारी, तो उनसे हमने बात की, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है नेक्स्ट डे से आना, तो फिर हमने वहाँ पे ज्वाइन किया।
1: वहाँ से आपकी शुरुआत हुई?
2: जी सर।
1: तो जैसा कि आंचल ने बताया कि शुरुआत आप लोगों ने स्विमिंग से की थी, तो स्विमिंग कहाँ आप करती थी भूमि? स्विमिंग की शुरुआत कैसे हुई, क्या शौक से करती थी या सीखने के लिए करती थी, तो कौन लेके गया आपको स्विमिंग के लिए?
4: मेरे फादर का नाम मिस्टर राजा बाबू सोनकर है, वो हमें शुरू से ही मतलब गेम में डालना चाहते थे, क्योंकि गेम में जितना हम लोग जाएंगे उतना ही खुल के रहेंगे। तो उन्होंने हम लोगों को पहले टैकांडो सिखाया था, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें उसे छोड़ना पड़ा। हम जब 5 साल के थे और ये 7 साल की थी तब हमने टैकांडो किया था, तो फिर येलो बेल्ट करके हमने छोड़ दिया था। फिर 1 साल तक घर पे बैठे थे, कोई गेम नहीं, बस पढ़ाई कर रहे थे। फिर पापा मेरे रोज गंगा जी जाते हैं नहाते, तो उन्होंने देखा था कि हाँ वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उन्होंने एक सोचा कि हम लोगों को कराते, तो एक दिन वो लेकर के गए, बस दिखा करके आ गए। फिर उस दिन संडे था, उस दिन ऑफ था, हमें कुछ पता नहीं था। फिर अगले दिन हम खुद से गए, ये लगा था कि शौक के लिए कर रहे हैं। फिर स्कूल में गए तो पता चला कि हाँ एक कॉम्पिटिशन वगैरह होता है। फिर स्कूल स्टेट खेला, उसमें अच्छे रिजल्ट आए, मतलब पहली बार गए तो मेडल आए अच्छे खासे। फिर दूसरी बार 10th में गए, उसमें भी मेडल आए, लेकिन जब 11th में खेलने की बारी आई तो लॉकडाउन लग गया, तो वहीं पे सब चीज रुक गई।
1: लॉकडाउन की बात, आप लोग
4: 2 साल एकदम रुक गया था।
1: दो साल

0: कुछ नहीं किया?
1: कुछ नहीं, घर पे ही थे,
0: पढ़ाई की है।
1: हाँ, फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारा ट्वेल्थ कंप्लीट हुआ। ट्वेल्थ के बाद हम कॉलेज में एडमिशन भी लेना था, ये था कि स्विमिंग से अपना करेंगे आगे का, लेकिन स्विमिंग का ना यहाँ कोई फैसिलिटीज थी, कोई स्विमिंग पूल नहीं था, स्विमिंग का कोई अच्छा कोच नहीं था, बहुत उसमें प्रॉब्लम थी। तो फिर बस हमने कयाकिंग कैनोइंग ज्वाइन किया।
0: अच्छा, और भूमि आप दोनों सगी बहने हैं, तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? क्या कोई परिवार में पहले से स्पोर्ट्स में था, या फिर आप लोग ही पहले शख्स हैं जो इस फील्ड में जा रहे हैं?
1: सर, अभी तक मेरे परिवार में कोई भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स अनएजुकेटेड है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, और जहाँ से सर हम बिलोंग करते हैं वहाँ से ऑलमोस्ट कोई भी नहीं पढ़ा होगा, वहाँ पे बस्ती है।
0: आपके पिताजी क्या करते हैं?
1: हमारे पापा अभी चाय की दुकान है।
0: आपके पिताजी की चाय की दुकान है, वो अशिक्षित हैं, फिर भी उन्होंने ये योजना बनाई, ये प्लान किया और ये प्रेरणा दी आप लोगों को कि आप लोग आगे बढ़िए, स्पोर्ट्स में आगे बढ़िए, पढ़ाई लिखाई भी, लेकिन खेलकूद में आगे बढ़ने का अवसर दिया। आपको स्विमिंग के लिए ले गए गंगा जी में, जहाँ पे आपको किसी ने सिखाया और आपने उस समय शौक के लिए ही स्विमिंग सीखनी शुरू की, और कोविड के बाद आप लोग कयाकिंग और कैनोइंग में आए। तो वहाँ पे आपके कोच कौन थे, कैसे आप लोगों ने सीखना शुरू किया, और शुरुआत में क्या क्या मुश्किलें आई आप लोगों को?
1: पहले तो हम स्विमिंग में स्कूल स्टेट खेले थे, तो इतना कुछ जानते नहीं थे। कयाकिंग कैनोइंग में जब आए तो हर चीज एकदम नया था, मतलब वो ऐसा गेम था कि आज तक न देखा था और न ही तो सुना था। पहली बार देखा भी था, पहली बार सुना भी था, बस वो भी लग रहा था कि ऐसे शौक से होगा, ठंडी में छुट्टी होगी, लेकिन ये गेम में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ असल में अब हम गेम में आए हैं। वो तो स्कूल स्टेट था इसलिए उतना कुछ लगा नहीं, फिर इधर जब आए तब गेम का अहमियत पता चली कि गेम क्या होता है। एक खिलाड़ी हम अगर बने तो कयाकिंग कैनोइंग से बने, एक एथलीट हम अपने गेम से ही बने, बस स्विमिंग एक जरिया था हम लोगों को इस गेम तक पहुंचाने के लिए।
0: स्विमिंग माध्यम था जो आपको लेके गया कयाकिंग और कैनोइंग में। तो आंचल ये बताइए कि जब आप लोगों ने कयाकिंग और कैनोइंग शुरू की तो उसमें केवन होता है जिसमें एक ही प्लेयर पैडल करता है, और केटू होता है जिसमें दो होते हैं, तो आप लोग क्या शुरुआत में ही साथ में किया करते थे, केटू ही किया करते थे, कि शुरुआत में केवन और उसके बाद में फिर आपने टीम बनाई दो लोग मिलके केटू?
2: नहीं सर, हम जब ये गेम ज्वाइन किए थे तो इसमें बोट में क्या होता है कि हमें पहले बैलेंस बनाना पड़ता है, उस टेक्निक की प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
0: तो वो अकेले करते थे?
2: हाँ, तो कोई भी बच्चा होगा वो उस गेम में जो भी जाएगा तो उसमें उसको अकेले प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब उसकी बोट बैलेंस हो जाएगी, बोट चलने लगेगी, तब वो डबल और फोर पे बैठ के पैडल चलाता है।
0: तो आप लोग केवन में भी करती हैं, केटू में भी करती हैं, तो पहली ऐसी कौन सी प्रतियोगिता थी जिसमें जाके आप लोगों ने कोई मेडल जीता हो या कुछ ऐसा सीखा हो जो आप लोगों को लगा हो कि नहीं हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं?
1: हम लोग ने अगस्त 2022 में गेम ज्वाइन किया था, तो और फिर नया नया गेम था, उस समय खिलाड़ी की तरह शरीर में इम्यूनिटी भी नहीं थी, तो बीच में ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी। फिर दिसंबर 2022 में हमने अपना पहला नेशनल खेला था जो कि भोपाल में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि हम पांच लड़कियां थी, तो मैं अकेले गई थी, K1 से खेला था हमने और इन्होंने K4 से खेला था। उस समय खेलो इंडिया हुआ था, तो हम गए थे K1 से खेलने, मेरी 200 मीटर की रेस थी तो उसमें पलट गए थे। तो पलटने के बाद उसमें काफी लोगों ने ऐसा कमेंट पास किया, तो फिर वो चीजें बहुत ज्यादा हो गया कि हम उस समय मेरी बोट इन चारों से थोड़ी सही चल रही थी, लेकिन फिर भी हम पलट गए थे, तो उस चीज को लगा कि ये चीज गलत है, तो अब गेम पे ध्यान देंगे।
0: वहां से आपको जो सीखने को मिला, सबक मिला, उसके बाद आपने मेहनत और ज्यादा करनी शुरू की और इसको ज्यादा सीरियसली, ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया। तो आंचल, आपको कब लगा कि भूमि तो अच्छा कर रही है, भूमि तो अब ज्यादा सीरियसली, ज्यादा गंभीरता से ले रही है, तो क्या आपने भी तभी से गंभीरता से लिया या आपने उस समय शौक से ही लिया?
2: सर, उस टाइम तो हमारी वो जब खेलो इंडिया हुआ था तो उस टाइम हमारा बैलेंस था, हम ढंग से पैडल भी नहीं मार पाते थे, तो फिर उसके बाद खेलो इंडिया खेल के आए, यूपी को फाइनल में पहुंचाया था, उसके बाद हमने रिप्रेजेंट किया फाइनल में यूपी को, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हुआ, स्टेट हुआ, उसमें फिर गोल्ड आने चालू हुए। मेरा बैलेंस बहुत लेट से बना था बोर्ड पर, उसमें सबसे मुश्किल वर्क होता है बैलेंस बनाना।
0: जैसा कि भूमि ने बताया कि वो उस प्रतियोगिता में अच्छा तो खेल नहीं थी, लेकिन अचानक से उनकी बोट पलट गई, यानी कि बैलेंस आपका गड़बड़ हो गया। तो आप लोग बहनें जब साथ में करती हैं, मैं जानना चाहता हूँ केटू में, जब केटू में आप लोग साथ में पेडल करती हैं, तो क्या आपस में थोड़ा सा लड़ाई होती है कि तुम ठीक से नहीं चला रही हो, तुम ठीक से नहीं चला रही हो?
1: हाँ सर, होती है बहुत हद तक। सर शुरुआत में तो बहुत ज्यादा हुई थी, क्योंकि जो अपना केटू पार्टनर होता है या भी कोई भी अगर अपना पार्टनर होता है तो हम लोगों का माइंडसेट एक होना चाहिए एकदम एक की, अगर एक आगे वाला क्या सोच रहा है पीछे वालों को बिना बताए पता चल जाए, इतना ज्यादा माइंडसेट एक होना चाहिए। तो एक बार की तो ये चीज हुई नहीं सर, फिर हम K1 करते थे सर, K2 बस हमने ऐसे

0: चलाना शुरू किया, लेकिन हमारा ऐसा कुछ था नहीं कि हम साथ में केटू चलाएंगे। बस ऐसे उतारा एक दिन केटू, वो सही चलने लगी, सही चलते चलते कॉम्पिटिशन करते करते एक एक्सपीरियंस मिलने लगा, और सर हमारा 3 साल के बाद मेडल पढ़ना शुरू हुआ था।
1: पहला मेडल कब मिला आपको?
0: दिसंबर 2025 में
2: नेशनल में आया था,
0: खेलो इंडिया में।
1: खेलो इंडिया में उसमें आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला 200 मीटर में।
0: जी सर।
1: तो जैसा कि आपने बताया, केटू में सबसे जरूरी है कि आपस में कोऑर्डिनेशन, आपस में समन्वय बना के रखना, क्योंकि घर में भी आप लोग साथ रहती हैं तो घर में भी एक समन्वय बना के रखना पड़ता है, और खेल में भी आप लोग साथ हैं तो इससे आपको एक सहयोग मिल जाता होगा, एक एडवांटेज मिल जाता होगा साथ में खेलने का, क्योंकि कोई और खिलाड़ी बाहर से आता, किसी और डिस्ट्रिक्ट से आता, तो आप समन्वय बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता क्योंकि आप लोग साथ रहती हैं। अब मैं भूमि आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि कयाकिंग और कैनोइंग ये इस खेल के बारे में लोग कम जानते हैं, और इस खेल में जो प्रशिक्षण के अवसर भी हैं प्रयागराज में कम है, बहुत कम खिलाड़ी ही होंगे, गिनती के खिलाड़ी होंगे जो आप लोगों के साथ प्रशिक्षण ले रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तो यहाँ कहाँ पे सीखती हैं, आपके कोच कौन है, और कितनी सुविधाएं हैं, कैसा लगता है आप लोगों को वहाँ पे?
0: यहाँ पे हमारा बोट क्लब है प्रयागराज, जो ये
1: चौखंडी
0: पे अपना सर, वहाँ पे हमने जब ज्वाइन किया था। हमारे बोट में क्या होती है, जो यहाँ पे बोटे हैं वो कार्गो है,
1: कार्गो,
0: और जिससे हमारा कंपटीशन होता है वो नैलो है। और सर हमारा गेम बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, हमारी केवल पैडल ही 50,000 से 60,000 की आती है, और बोट तो और ही ज्यादा आती है, नैलो अपनी आती है लैक्स 2 लैक्स में, तो सर अपने पास नहीं है वो। सर हम 3 साल से यहाँ पे इसीलिए पीछे थे क्योंकि सर अपन यहाँ पे कार्गो चलाते थे, और वहाँ जाके नैलो एक बार की इतनी अच्छी नहीं चलती जितना अपना कार्गो चल जाता है, इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाते थे। और सर यहाँ पे पैडल भी है लेकिन कम है, बच्चे अगर 50 है तो पैडल 10 है, तो सर अपने पास फैसिलिटीज भी कम थी, बस बच्चे मेहनत करते थे, मेहनत से भी थोड़ा थोड़ा हम लोग पीछे हो जाते थे क्योंकि अपने गेम में डाइट भी बहुत ज्यादा रहता था, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो बच्चे घर पे रह के गेम करते हैं सर वो उतना अच्छा डाइट तो ले सकते हैं सर, लेकिन जहाँ तक रिकवरी नहीं ले सकते सर, इसलिए गेम में थोड़ा सा अपने को रिकवरी भी चाहिए और डाइट भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए सर, फैसिलिटीज भी चाहिए।
1: तो आप लोगों को अभी डाइट रिकवरी या फिर जो प्रशिक्षण है वो कहाँ आप कर रही अभी फिलहाल?
0: सर अभी तो हम भोपाल में कर रहे हैं, हमको 1 साल हो गया, और सर भोपाल में ये हमारे कैकिंग कैनोइंग का एक तरीके से हब है।
1: अच्छा।
0: वहाँ के ऑल इंडिया के प्लेयर जो अपने स्टेट में नहीं कर पाते अच्छा, वो हमारे क्लब पे आते हैं, मतलब भोपाल पे आके प्रैक्टिस करते हैं।
1: तो अभी आप लोग वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं।
0: जी सर।
1: और जैसे आपने बताया कि यहाँ पैडल्स कम थे, आपको कार्गो बोट्स मिलती थी, वहाँ पे अलग बोट्स होती थी,
0: नैलो बोट्स,
1: तो वहाँ पे वो बोट्स मिल रही हैं।
0: हाँ जी सर।
1: वहाँ पे आपको कोचेस भी अच्छे मिल रहे होंगे। हाँ। सारी सुविधाएं मिल रही, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे होंगे।
0: वहाँ पे खुद का एसोसिएशन है।
1: अच्छा, ये एसोसिएशन है, तो आप लोग एसोसिएशन ज्वाइन की होंगी तो वो आपको ये ट्रेनिंग दे रहे होंगे। तो आंचल, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप पहली बार भोपाल में गई होंगी, आप लोग यहाँ से वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या अंतर महसूस हुआ कि जो यहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहा था वहाँ आपको मिल रहा है, तो आपको क्या लगा कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ और ज्यादा मेडल्स अचीव कर सकती हूँ?
2: सर एक प्लेयर के लिए सबसे बड़ा चीज होना चाहिए एनवायरमेंट, क्योंकि हम जहाँ पे अभी प्रयागराज में गेम करते हैं सर केवल हम ही बच्चे हैं, सर बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो 50, लेकिन जहाँ सर हम भोपाल में आज प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे सर कम से कम 500 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कुछ जॉब वाली टीम है जैसे कि सर्विसेस है, SSB है, CRPF है, BSF है, और इंटरनेशनल प्लेयर भी वहीं प्रैक्टिस करते हैं, और भोपाल में इंटरनेशनल कोचेस भी हमें प्रैक्टिस कराते हैं।
1: वहाँ आपको सुविधाएं भी ज्यादा मिलती हैं और कंपटीशन भी अच्छा मिलता है, क्योंकि आप प्रोफेशनल लोगों के साथ खेलेंगे तो आपके खेल में और निखार आएगा। खेल से अलग हम बात करते हैं, अब आंचल पढ़ाई में आपका क्या है, अभी आपको कौन सा विषय पसंद है, अभी आप क्या कर रहे हैं?
2: सर अभी तो हम BA कर रहे हैं, अभी हमारा BA फर्स्ट ईयर चल रहा है इसलिए सर, लेकिन आगे हमें BPED करना है।
1: BPED करना है, और पढ़ाई में कौन सा विषय ऐसा है जो आपको ज्यादा पसंद है?
2: हिंदी
1: साहित्य।
2: जी सर।
1: तो भूमि, आप दोनों लोग प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं कयाकिंग और कैनोइंग के, आप लोग इसी में अपना करियर बनाना चाहती हैं, इसके अलावा आप पढ़ाई में आप लोगों कितना समय दे पाती हैं, और ऐसा तो नहीं होता कि आप जब प्रशिक्षण लेके आती तो आप लोग बहुत थक जाते होंगे तो पढ़ाई में उतना समय नहीं दे पाते होंगे, तो पढ़ाई के साथ कितना जस्टिस कर पाते हैं आप लोग?
0: सर हम सुबह उठते हैं 5 बजे, वर्कआउट जाते हैं, फिर रूम पर आते आते 10 बज जाते हैं, फिर सर ब्रेकफास्ट बना के अपना करते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर सर 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, तो फिर सर प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है, फिर रात को आते हैं 7 बजे 8 बजे तक।
1: जब वापस आते हैं तो बहुत थके होते होंगे?
0: बहुत ज्यादा सर, क्योंकि वर्कआउट कंटिन्यू चलता रहता है।
1: इसके बावजूद

0: पढ़ाई के लिए आप लोग समय निकाल लेते हैं, पढ़ाई जो भी करते हैं मन से करते हैं, तो आगे आप लोगों की क्या योजनाएं हैं, नियर फ्यूचर में कौन से कंपटीशन है जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हैं?
1: सर अभी तो हमारा नेशनल गेम है, 2 से 3 महीने में हमारा नेशनल गेम आने वाला है सर। उस बार हम 1 सेकंड से चूक गए थे, तो इस बार नहीं सर, नेशनल गेम क्वालिफाई करने से।
0: अच्छा।
1: तो सर वो चीजें इस बार रिपीट नहीं करना है, इस बार नेशनल गेम में जाना और मेडल भी लेना है उसमें सर। बाकी अपने आगे का तो इंटरनेशनल है, अपनी केटू को और बेस्ट करना है और इंटरनेशनल खेलना है।
0: तो अभी जैसे आप लोग ने कई कंपटीशन में, जैसे मैं देख रहा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 उदयपुर में 200 मीटर में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप फरवरी 2026 ब्रॉन्ज मेडल 200 मीटर में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 सांगली महाराष्ट्र में जो हुआ था उसमें 3 सिल्वर K4 में आपने जीता, और इसके अलावा अस्मिता जोनल नेशनल में 2 गोल्ड 1 सिल्वर K2 में और K4 में जो छत्तीसगढ़ में हुआ था आपने जीता था, और अस्मिता नेशनल चैंपियनशिप भोपाल में 2 ब्रॉन्ज मेडल आपने K2 में जीता था। तो इन सब प्रतियोगिताओं में कौन सी ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें आपको लगा कि इसमें ज्यादा मुश्किल हुई, ज्यादा आपको संघर्ष करना पड़ा जीतने के लिए, सबसे मुश्किल जो लगा हो?
1: सर हमारा सीनियर नेशनल चैंपियनशिप था सर, इसमें हमारा 2 इवेंट था, एक 5 किलोमीटर का और एक 200 मीटर का। 5 किलोमीटर में सर हमारी एक दिन पहले थी, तो सर उसमें हमारे साथ BSF की टीम थी, MP की टीम थी, सर्विसेज की टीम थी, तो हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए गए सर। हम मेडल पे ही चल रहे थे, सेकंड थर्ड पे चल रहे थे, स्टार्टिंग में हम फर्स्ट पे चल रहे थे, फिर सर हम सेकंड पे हो गए थे। 2 किलोमीटर की रेस होने वाली थी, तब तक सर हम कैप्साइज हो गए, तो सर उस दिन तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया था कि अब आज कुछ नहीं हुआ तो कल भी कुछ नहीं होगा, सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्या करना है, इतनी मेहनत
0: मेडल की रेस में थी, अचानक से ही आपकी बोट कैप्साइज
1: हो गई सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम क्या होगा, सब चीज हिम्मत टूट गई थी कि जब हमारा मेन इवेंट था, हमने इतनी मेहनत करी उसमें नहीं हुआ, 200 मीटर में क्या ही होगा। लेकिन सर रात तक तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, उस चीज से निकल नहीं पा रहे थे, फिर उस समय फैमिली का भी बहुत सपोर्ट मिला सर, और हमारे सर का भी, क्योंकि सर हमारा कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया था कि हम अगली रेस के लिए प्रिपेयर भी नहीं थे, लग रहा था कुछ नहीं होगा। फिर घर वालों का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा था, घर वालों का भी बार बार फोन आ रहा था, सर भी बार बार फोन कर रहे हैं कि ठीक है जो हुआ ठीक है, कल का ध्यान दो, अगर आज का दिन तुम्हारा नहीं है तो क्या पता कल का दिन तुम्हारा हो सर। फिर अगले दिन हमारी पहली ही रेस थी 2 बजे, फिर सर हम उसमें उतरे थे, उसमें उड़ीसा की टीम थी, MP थी और SSB थी, इंडिया पुलिस थी, बहुत सारी टीम थी, तो सर हमारा उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया था
0: 200 मीटर में, K2 में आपने जीता था उसमें।
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छा था, क्योंकि एक बार गिरने के बाद फिर उठ के चल लेना, फिर उसमें मेडल लाना, वो बड़ी चीज है, क्योंकि आपकी बोट कैप्साइज होना आप लोगों के लिए बहुत ही हतोत्साहित करने वाली घटना थी,
1: बहुत ज्यादा सर,
0: क्योंकि जो दबाव था तो उससे निकल के आप लोग अगले दिन बढ़े और न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि आपने मेडल जीता। तो आंचल और भूमि, जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में ही बताया था कि आप लोगों को खेल के क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरणा आपके पिताजी से मिली, पिताजी ने आपको सबसे पहले स्विमिंग के लिए प्रेरित किया, उन्होंने एडमिशन कराया, आप लोग सीखने लगे गंगा जी के तट पे, वहां पे तैराकी में, उसके बाद आप लोग कैकिंग और कैनोइंग में थे, तो और कहां से आपको सबसे ज्यादा सहयोग मिला इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, कहां से प्रेरणा मिली?
1: सर हमारे पिताजी के बाद तो हमारे अभिषेक सर हैं, उन्होंने हमारा सब चीज किया, क्योंकि सर अभी मैंने बताया कि हमारा गेम बहुत ज्यादा कॉस्टली है और सर हम इतने कैपेबल नहीं है उसको करने के लिए, तो अभिषेक सर ने ही पूरा पूरा साथ दिया था, और सर पेरेंट्स ने तो बस एक परमिशन दी है, बाकी पूरा गेम का हर चीज अभिषेक सर देख रहे हैं।
0: अभिषेक जी से मुलाकात आप लोग कैसे, कहां उन्होंने देखा आपको खेलते हुए?
1: सर उन्हें खेलते हुए नहीं देखा था सर, वो स्कूल में हमारे आए थे हम लोगों को कुछ बताने के लिए, फिर उनसे हम लोग कनेक्ट हुए कंप्यूटर क्लास के थ्रू, तो कंप्यूटर क्लास करते करते सर को हमने एक दिन ये सारी चीजें बताई कि हम स्विमिंग करते थे पहले, सर ने सुना, फिर पूरी बात जानी, हमारे सर्टिफिकेट देखे, मेडल देखे, फिर सर ने बोला कि ठीक है बच्चे गेम करेंगे, तो उन्होंने बहुत ही दिन तक हमारे बारे में कोई गेम सोचा, बहुत से लोगों से राय ली कि बच्चों के लिए इंडिविजुअली कौन सा गेम अच्छा होगा, क्योंकि टीम में अगर सब अच्छे हैं तभी, लेकिन इंडिविजुअली खुद के ऊपर होता है, तो सर ने बहुत दिन तक सोचा, फिर हमने भी ये गेम देखा समझा सर को बताया, तो सर को ये गेम सही लगा, फिर हमने ये गेम ज्वाइन किया।
0: अभिषेक सर ने ही आप लोगों को खेल को चुनने के लिए प्रेरित किया और सहयोग कर रहे हैं, आपको प्रेरित करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, जैसा कि आपने बताया जब आपकी बोट कैप्साइज हो गई थी तो शाम को भी उन्होंने फोन करके बोला था कि कोई बात नहीं अगले दिन फिर से आप प्रयास कर सकते हैं, अगला दिन आपका होगा।
1: जिस दिन हम कैप्साइज हुए थे सर उसी समय वहाँ पे मौजूद थे।
0: अच्छा, अभिषेक जी साथ में थे आपके?
1: हाँ, फिर उनकी उसी दिन ट्रेन थी, अगले इवेंट में वो हमारे साथ नहीं थे, तो वो हर थोड़ी थोड़ी देर में कॉल कर रहे कि तुम लोग

0: आज खराब गया, कल अच्छा होगा, तुम लोग कर लोगे कर लोगे, फिर हम लोग ने अगले दिन किया।
1: आंचल और भूमि, आप लोगों ने इस खेल में अभी तक काफी कुछ अचीव किया है, काफी उपलब्धियां रही हैं आपकी जो हमने अभी तक चर्चा की, लेकिन आगे भी आपको बढ़ना है। आपको न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है। लेकिन इस खेल में प्रयागराज से ही और कई छोटे शहरों से कई नए खिलाड़ी भी आ रहे होंगे, कई नए खिलाड़ी हैं जो आपको सुन रहे हैं, चाहते होंगे कि आपकी तरह वो भी इस खेल में आगे बढ़े, तो उनके लिए आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: सर बस एक तो यही मैसेज जाएगा कि एक लड़की के लिए गेम करना बहुत टफ होता है, बट उसको करना चाहिए। जैसे कि वो घर में रह के लड़ती है अपने आप से, उसको बाहर दुनिया से लड़ना चाहिए ताकि वो एक अच्छी नारी बन सके। और आज तो लड़कियां चांद पे पहुंच रही हैं, प्लेन चला रही हैं, देश के लिए लड़ रही हैं, तो फिर हम तो अभी एक एथलीट है, तो हम देश का मान बढ़ा सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात कही आंचल आपने, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स में, खासकर क्योकिंग और कैनोइंग जैसे खेल में, जैसा कि आपने बताया भी कि काफी महंगे खेल हैं, इसमें इस पृष्ठभूमि के लोग, कमतर जो मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनके लिए अवसर कम उपलब्ध हैं, और खासकर लड़कियां जिनको माना जाता है कि वो अभी काफी पीछे हैं इस क्षेत्र में, वो आगे बढ़े, वो आप लोग देख के प्रेरित हों और अपना नाम रोशन करें, तो अभाव का बहाना नहीं रह जाता। तो भूमि आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
2: सबका अपना अलग अलग पैशन होता है, हमारा गेम है, किसी का कुछ और होगा, किसी का डांस होगा, किसी का सिंगिंग होगा, किसी का कुकिंग होगा, कुछ भी, हर चीज स्किल बेस्ट होती है अपनी अपनी जगह। बस एक ही चीज है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आप किसी भी फील्ड में रहो, कोई भी चीज करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन बस मेहनत करो, क्योंकि फील्ड चुनने से ही कुछ नहीं होता, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं रहेगी तो फिर वो स्किल भी किसी काम की नहीं रहेगी।
1: मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और रास्ता अपने आप बनता चले जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, आंचल और भूमि, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से निकल के आप लोग यहाँ तक पहुँची हैं, हम यही चाहते हैं कि आप न सिर्फ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, बल्कि देश का नाम रोशन करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम बनाएं। आप लोग हमारे स्टूडियो में आई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं इस सप्ताह के खेल समाचार। फुटबॉल में भारत ने ताशकंद में खेले गए क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश पर 3-0 से जीत हासिल कर 20 वर्षों में पहली बार AFC अंडर 20 एशियाई कप के मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप बी के अपने आखिरी क्वालिफायर मैच में डेनेई मेतेई लैशाम ने पहला गोल, विशाल यादव ने दूसरा गोल तथा सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मोहम्मद अरबाश ने तीसरा गोल किया। AFC अंडर 20 एशियन कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में आयोजित किया जाएगा। बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स में पुरुष युगल का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को 11-21, 21-23 और 21-27 से हराकर चाइना मास्टर्स में भारत का पहला खिताब हासिल किया। दुबई में खेले जा रहे महिला T20 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान की टीम 18.1 ओवर में मात्र 55 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से युवा स्पिनर श्री चरनी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 8.4 ओवर में निर्धारित लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शूटिंग स्पर्धा में भारतीय टीम जापान में इस महीने के अंत में शुरू होने वाले एशियाई खेलों 2026 से पहले भोपाल स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी में प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रही है। इस दल में मनु भाकर, ईशा सिंह और ऐश्वर्य प्रताप सिंह जैसे शीर्ष निशानेबाज शामिल हैं। मेघालय में 2026 की हाफ मैराथन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 11,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। 5वीं सोहरा इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2026 का आयोजन मेघालय राज्य ओलंपिक संघ द्वारा किया गया। पिकलबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन 30 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक वियतनाम के दान

0: मांगने हुआ। आईसीसी ने महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के नए मेजबान के रूप में भारत को मंजूरी दे दी है। 6 टीमों का यह टूर्नामेंट 14 से 28 फरवरी 2027 तक मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिससे अर्जेंटीना के लिए उनके 20 साल के कैरियर का अंत हो गया। उनके कैरियर में 1 विश्व कप जीत, 2 कोपा अमेरिका खिताब और देश के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेलना शामिल है। 39 वर्षीय मेसी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने इस फैसले की जानकारी दी। मेसी ने कहा, यह फैसला उनके लिए बेहद मुश्किल था, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पूरे करियर में राष्ट्रीय टीम और अर्जेंटीना के समर्थकों के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य दक्षिण अफ्रीकी संघ के नेताओं के साथ किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 6th नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में आयोजित एशिया कप के पूल मैच में दक्षिण कोरिया को 7-3 के अंतर से हराया। क्रिकेट में दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रनों का विशाल स्कोर बनाया है। ईस्ट जोन की ओर से कप्तान ईशान किशन ने 270 रन तथा कुमार कुशाग्र ने 101 रन बनाए। यूएस ओपन में एलेना रायबाकिना ने पूर्व यूएस ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका को 6-1 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। टेनिस में भारत के करण सिंह ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित पुरुष विश्व टूर M15 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। यह करण का चौथा और उनका 2026 सीजन का तीसरा खिताब है। हरियाणा के करनाल में रहने वाले चौथी वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में न्यूजीलैंड के 5वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इसाक ब्रेकऑफ को 7-5 7-6 से हराकर खिताब अपने नाम किया। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज, जिसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया जा रहा है, शीतल देवी ने आज तीसरे चरण के तीसरे दिन महिला कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया। भारतीय खिलाड़ियों के बीच हुए सेमीफाइनल में जम्मू की तीरंदाज ने सरिता को 145 143 से हराकर स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में उनका मुकाबला कजाकिस्तान की आईजादा सिदान से होगा। सरिता के पास कांस्य पदक के मैच में चीन की वांग हुईटिंग से भिड़ने पर भारत के पदक तालिका में पदक जोड़ने का एक और अवसर होगा। इस प्रकार महिला के कंपाउंड इवेंट में भारत को एक पक्का पदक मिल गया और एक अन्य पदक अभी भी दौड़ में है, जिसमें विश्व नंबर 1 शीतल शीर्ष स्थान पर नजर रखे हुए। आज के अंक में इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दर्पण। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण, प्रस्तुति हमारे प्रयागराज केंद्र की थी।

0: नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेल दर्पण कार्यक्रम, हमारे लखनऊ केंद्र से आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। रात के 10:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से।

0: ढलती जाए रात, ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों के अंतर्गत हमारे मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। रात के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्राओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही है।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
3: कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
2: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2000
1: UPI को फिनटेक क्षेत्र
3: भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
2: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7

0: विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai this evening.
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in the last month. He said Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said, world has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities. The 4-day Global Fintech Fest 2026 is being held in Mumbai from today till 11th September. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Colombo today on a 3-day visit to Sri Lanka aimed at deepening bilateral defence and maritime cooperation. Mr. Singh was warmly welcomed at Bandaranaike International Airport by Sri Lankan Deputy Minister of Defence Aruna Jayasekara and Indian High Commissioner to Sri Lanka Santosh Jha. During his visit, the Defence Minister will hold talks with the Sri Lanka's leadership on various issues to further strengthen bilateral ties in mutually beneficial areas, including a strong maritime and defence partnership. Russia today said that it welcomes any peace efforts by India to end the Ukraine conflict, noting that Moscow's strategy aligns closely with New Delhi's position for a resolution through dialogue and diplomacy. Kremlin spokesman Dmitry Peskov made the remarks while addressing media at a virtual briefing in New Delhi this afternoon ahead of the BRICS summit. Mr. Peskov said they know the position of India on the Ukrainian conflict and to a great extent it corresponds with their own position because they do want the solution to the Ukraine conflict by peaceful means and Russia is open for this process. He said Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin will hold bilateral talks on the sidelines of BRICS summit later this week. The government has approved strategic investment plans with an aggregate project outlay of over 735 crore rupees for ITI clusters in Rajasthan, Uttar Pradesh and Telangana. It includes 241 crore rupees investment plan for Rajasthan, over 240 crore rupees for Uttar Pradesh and 254 crore rupees investment plan for Telangana. It was approved during the 5th National Steering Committee NSC meeting of the Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation